0: चिंतन तो मनुष्य एकांत में मन के गहरे पर्दे में छिपकर ही करता है, किंतु उसका प्रकाश स्वयं चारों ओर फैल जाता है। वातावरण मनुष्य के विचारों का दर्पण है। जिस तरह एक एक बिंदु से तालाब भरता है, उसी तरह एक एक विचार से मनुष्य जीवन का भविष्य बनता है। विचारों का जैसा चुनाव करेंगे, भविष्य वैसा ही बन जाएगा। अच्छे दिनों की प्रतीक्षा में समय मत गवाइए। जिस क्षण आप विचारों में उच्चता लाने का संकल्प करेंगे, वही क्षण आपके जीवन का महत्वपूर्ण क्षण बन जाएगा। किसी भी रचनात्मक विचार सारणी का चुनाव कर लीजिए। उसके बीजों का वपन आपके अंतःस्थल की गहराई में शुरू हो जाएगा। विचारों में ही जीने का अभ्यास कीजिए, आपका जीवन विचारमय हो जाएगा। इस मानसिक क्रिया का प्रभाव स्वयं ही आपके दैनिक चेष्टाओं में प्रकट होने लगेगा। विचार कभी प्रभाव शून्य नहीं रहते, प्रभाव प्रकट होने में देर भले ही हो जाए।
1: शुभ प्रभात, नमस्कार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है, जिसका प्रसारण किया जा रहा है अरुण FM 103.1 MHz पर। हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:55 हो रहे हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज के पहली प्रसारण सभा। इस सभा को सुनने वाले आप सभी प्यारे श्रोताओं का मैं आपका रेडियो दोस्त कारगर रुबा आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सन 2026 के अक्टूबर महीने के आज 9 तारीख है और दिन है शुक्रवार। आज की हमारी पहली प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हैं स्टूडियो तथा HPT में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पी डोले तथा तकनीकी अभियंता मार्दो जिर्दो। हर रोज की तरह आज भी हम इस सभा में आपके लिए पेश करेंगे ढेरों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ साथ देश और दुनिया के ताजा तरीन खबरें। तो आइए सभा को आगे बढ़ाने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हमारे पहली प्रसारण सभा में प्रसारित होने जा रहे कार्यक्रमों के रूपरेखा से। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6 आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में बारी बारी में समाचार। 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भक्ति गीत। 6:40 पर प्रसारित होगा गालो श्रोताओं का समाचार। 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे।

7:10 पर आप सुनेंगे आपातानी श्रोताओं का समाचार। 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट। सात बजकर 35 मिनट पर आप सुनेंगे तागिन श्रोताओं का समाचार। 7:40

मिनट पर प्रसारित होगा कार्यक्रम सदा बहार। और इन सब के अलावा आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज तथा शिलांग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज आप सुनेंगे 8:30 पर।

आठ बजकर 40 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो ईटानगर। 9 बजे प्रसारित होगा आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। 9 बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के जनसेवा के उपलक्ष्य में जनसेवा से देश सेवा का अगला श्रृंखला। 9 बजकर 45 मिनट पर आप सुनेंगे हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। 10 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

10:10 पर आप सुनेंगे आपके पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड। 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में बारी बारी में समाचार। तो प्यारे श्रोताओं, ये था आज के हमारे पहली प्रसारण सभा में प्रसारित होने जा रहे कार्यक्रमों के रूपरेखा। आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। आपसे थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला तथा बाल विकास विभाग के दो दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। इसमें सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किए जा रहे विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में ये दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों, पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ये सम्मेलन कल शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी परिषद के सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कहा है कि भारत एक संपूर्ण दूरसंचार मूल्य श्रृंखला की ओर अग्रसर है और नियमों, उपकरणों तथा नवाचार को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान उच्च स्तरीय सीईओ गोलमेज सम्मेलन में श्री सिंधिया ने देश के विस्तारित डिजिटल तंत्र और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, उभरती प्रौद्योगिकियों, नवाचार और आर्थिक विकास में दूरसंचार की बढ़ती भूमिका की चर्चा की। सरकार ने गैर अनुसूचित कैंसर की दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लगाए जाने वाले लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने आशा व्यक्त की है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी, जिससे कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा।

0: मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। योग्य उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसरशिप या PhD के लिए वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA को अप्रैल से सितंबर के बीच भारत के जैविक संसाधनों का उपयोग करने वालों से 9,68,00,000 रुपए मिल सकते हैं। ये राशि पहुंच और लाभ साझाकरण यानी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त हुई है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि कुल प्राप्त राशि में से 9,56,00,000 रुपए विभिन्न क्षेत्रों में जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए प्राप्त हुए हैं। भारत ने पिछले कुछ दिनों में आभा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले में कई नागरिकों की मौत हुई है तथा कई घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के पुणे स्थित उनके फार्म हाउस नानाची वाडी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशिष्ट योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। खेलों में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। उधर पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi, approved a series of measures to ease compliance for taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold for prosecution from 1 crore to 5 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement while addressing the media in national capital. The punishment, whether a fine, imprisonment or both, will be left to judicial discretion in each case. A taxpayer who files a return late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery proceedings, interest and proportionate penalty. The finance minister said no changes has been made to GST rates at the meeting and that the rate structure is settled. She said the GST council has recommended common standards for notices and proceedings. Prime Minister Narendra Modi has welcomed the new round of GST reforms approved by the GST Council yesterday. In a social media post, the Prime Minister said that the Council's recommendations on removal of arrest provisions, greater decriminalization and simpler procedures will have a very positive impact. Mr. Modi said that the focus is on faster decisions, lower compliance costs, automated refunds, and trust-based administration. He added, these reforms are in line with constant efforts of the government to make GST more efficient, transparent, and citizen-friendly. Prime Minister Narendra Modi will participate in the valedictory session of Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi today. The two-day departmental summit, which began yesterday, is witnessing participation of political leadership and officials dealing with the women and child development sector from all states. It is the second in the series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen cooperative federalism, foster collective ownership of national priorities and accelerate outcomes through closer center-state collaboration. Government has approved a cap on the margins charged for the supply and sale of non-scheduled anti-cancer drugs, limiting them to 30% of the maximum retail price, that is MRP. The Ministry

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 MHz और मैं हूं आपका अपना RJ कारगर। लेकर आया हूं प्रेम, शांति और विश्वास से भरा हुआ आपका अपना आध्यात्मिक कार्यक्रम भक्ति गीत। श्रोताओं, आज का ये पावन सफर समर्पित है प्रभु यीशु मसीह को, जो प्रेम, दया, क्षमा और मानवता के संदेश के प्रतीक हैं। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें दूसरों के लिए करुणा हो, जरूरतमंदों के लिए सहायता का भाव हो और हर इंसान के प्रति सम्मान हो। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखें, क्योंकि ईश्वर पर भरोसा रखने वालों के जीवन में हमेशा आशा की एक नई किरण बनी रहती है। श्रोता, प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि हमारे दिल और परमेश्वर के बीच का एक पवित्र संबंध है। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो मन को शांति और आत्मा को नई शक्ति मिलती है। और आज के इस विशेष भक्ति संगीत कार्यक्रम में हम सुनने जा रहे हैं क्रिश्चियन भक्ति गीत तेलियंग जोस, हवोंग जोशवा और साथियों की आवाजों में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम भक्ति गीत। आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं क्रिश्चियन भक्ति गीत।

0: श्रोता, इसी के साथ आज के भक्ति गीत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे गालो श्रोताओं का समाचार।
1: ईटानगर तनक दम्रोगम जाब पुरा पोलगा अलो केंगाना नारसोगो नुनुक तालिरो नम गालो मेंकिनांग मेंजिदु मेंकेन मेंजिना सि कोई जिरदो मरो यूनियन मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट अफेयर्स किरण रिजिजू बु अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पासीघाट लो 150 नान बंदे मात्रम गदियम लोदुम तागलो दुल दुला ब सगोमेनला गदि लोक अगामागम नरुम जिदुला कैंपस अरासोगो Poripota okanaguna aba development teaching learning okanaguna development aba alberia ya kunam laga ba 106 acre goba kodiam lake kamba de do amla menken dula bu bande matram gudi loka dinchina gumam bu japkin sila do to sogo sogo bu university sogo yedigo development agar risaka dudi akana ijego ba rijib kuma ba donam go karam ओके रेगुर नाम लगाबे यदि गोर लारद तोगसितो ओके वोइगे मोको अरुणाचल प्रदेश सिगचिन एक भारत सरस्ता भारत पेले लोकल लदम अल्ब सिद्धुना के अमला लोदुम सिगो प मेंकिन दातो तावंग डिस्ट्रिक्ट लोके स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर एम रिरोको के बकुदा स्पेशल ड्राइव गो Amen epen kunam oka ijaga aliba enrollment eluksi kunam loka epen kunam go kanam lagaba sok lagaba special drive am rigatu Padmasri awardi lama top 10 punsok founder director of Manjusri Vidyapad Tawang loka bu riksi dukula lodum sogo mompab agom jamdaga damada gruba dalengala agaram garga gekuba amla minkenjitu oka Sekena lodum sogo akengo chin Lepang maba aga constitution right amne Yob rila chin padaba rigila jika amla lodum sogo mentu Oka electoral registration officer Oka vote level officer gaddamne Nono publicam yadigo Rigur mengur se kadu de agam rut laka oka akengo chin Amenam epen kaya oka naruam aga Botam jilanyi dukuba naruam akinakinam electoral role lo yobri lachin elukto laka amla dinchi jab mentu. Maro arokom chiba tabe kunam ektor nana patikar bu buka goa loka nam lo lom nam jab sinyuka bu acham kanagola nyengwa nye toku buka sinyu nam sige country sok lagaba majab madir nam gobrika oka maroga siloga lo sigam ne maharashtra government state lok funeral ba amla lobak do ba amla menkintu president Draupadi Murmu vice president CP Radhakrishna akka prime minister Narendra Modi bullachin bu ka lom da bange nyu kunam sokka ma jiba duk agomam jiluk dukula bu hindi okka marathi film lok kai rubak alya rubak actor ba rilla to amla mendula buka yes ya lom rakien ba ranam laga ba kumlu jolukam rijitu tanga de minkina gumam dan akaswani itanagar lok tapadu maro geological survey of maro geological survey of india arunachal pradesh regional

0: सेंटर है, सैनिटेशन वर्कर, ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आईएमसी लोका आईसीआर मोक से गमसा पादरक बका किंता इन दो अकुनम सोक लगा ब अरुणाचल प्रदेश रीजनल सेंटर ऑफिसर इंचार्ज एंड साइंटिस्ट ई डॉक्टर एस डी गुरुमायम ब वर्कर गदम ने बुक ऑफिस चैम्बर लो फेलिसिटेशन अमीनम जितो ओके संब अमीन जिनम सिगे स्वच्छवा स्वच्छता ही सेवा केम फाइन अरालोक अमीनम जितो अमला मैं जितो मरो जे एन सी पासीघाट लो प्रोफेसर लेक्चर सीरीज गो लोदुम गतो सिगिम ने सेंट्रल हिंदी डायरेक्टोरेट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम हिंदी पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑक इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल जे एन सी पासीघाट रिगतो सग लेक्चर सेल रिदागलो स्टूडेंट रिसर्च स्कॉलर फैकल्टी गद्दम ने इला ऑक सग अगम जबका सिनम अलियाब रिकुनम लगाब सकनम लोदुम गतो अमला मेंकिन जितु का सिर्ग गलो मेंकिन अगमा अगर
1: गोम ये हिक लोक दो बाम ते बाम हिक लोक ओक तारु पीक लोक एच आई वी हिगी न्योंग मादो नक
2: एच आई वी टेस्ट इका हिला येरु तोला का हेंगोर बोलो नोम ने मोकलासिन इलादो नोक गुनाम हुनाम एमसिन अल्लु ब ग्रुप हिपिलासिन इलादो
1: एच आई वी हिगुम बोसियो का अल्लु बदन हेन लाजुका टेस्ट कोट का ओक एच आई वी गन नाम ने अरिक माप जुका हिगी अरिक सा कामा
2: एच आई वी ग लग लगा हिगिम ने अल्लु ब हेन नाम लगा ब नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 नंबर होगो कॉल रू तोलाका
1: हक ना दिन्स ना आवाही गुम गुमिन होइन लगाब अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नहार लगन पेले लोक जिलेंतु
3: ये मेरा छोटा भाई है ना बड़ा शरारती है कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है पूछा तो बोलता है भैया सब ऊपर वाले की दया है सोलर पैनल है ना मैंने कहा ओ ये सही है बेटा
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in
5: हर घर सूर्य घर
6: श्रोताओं आप सुन रहे थे गालो श्रोताओं का समाचार आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर दोस्तों हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम सुबह सवेरे के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद
7: दिल तक बात पहुंची मिलते मिलते सनम ओ
8: गीत संगीत
9: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
8: प्यार भरे अल्फाजों में
9: दिल से दिल की बात
8: बस आपके नाम
9: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz

सुबह की सुनहरी किरणें, चिड़ियों की चहचहाहट, ठंडी ठंडी हवाएं और एक नई उम्मीद के साथ आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा मॉर्निंग प्रोग्राम सुबह सवेरे में। दोस्तों, कहते हैं अगर सुबह की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन खुशनुमा बन जाता है, और जब बात सेहत की हो तो सुबह का समय अपने शरीर और मन को थोड़ा सा समय देने के लिए बेहद खास होता है। इसलिए दोस्तों, आज के इस खूबसूरत सुबह में हम फिर हाजिर हैं आपके लिए सेहत से जुड़े कुछ जरूरी बातें लेकर। जी हाँ, हमारे इस कार्यक्रम में होगी योग की बात और अच्छी सेहत के साथ खुशहाल जिंदगी की जीने की बात। तो बने रहिए अरुण FM 103.1 MHz पर। दोस्तों, आज के योग सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं कंधे के दर्द और फ्रोजन शोल्डर।

के लिए कुछ आसान योगासन वे एक्सरसाइज। तो चलिए आज सीखते हैं कुछ आसान और उपयोगी योग आधारित मूवमेंट्स, जिन्हें सही तरीके से करने पर कंधे की जकड़न कम करने, लचीलापन बढ़ाने और रोजमर्रा के कामों को आसान बनाने में मदद मिल सकती है। सबसे पहला है पेंडुलम एक्सरसाइज। कंधे को धीरे धीरे ढीला करने का ये अभ्यास है। दोस्तों सबसे पहले करते हैं बहुत ही सरल अभ्यास, जिसे पेंडुलम एक्सरसाइज कहा जाता है। इसे करने का तरीका है, किसी मजबूत मेज या कुर्सी का सहारा लेकर थोड़ा आगे की ओर झुकिए। जिस हाथ में दर्द है उसे बिल्कुल ढीला छोड़कर नीचे लटकने दीजिए। अब शरीर को बहुत हल्के से आगे पीछे हिलाइए ताकि हाथ अपने आप थोड़ा आगे पीछे झूले। इसके बाद हाथ को छोटे छोटे गोलाकार घुमाव में हिलाए, हाथ से जबरदस्त गोल चक्कर ना बनाए। शुरुआत में 20 से 30 सेकंड तक कीजिए। आराम लगे तो धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं। इसके फायदे, कंधे को बिना ज्यादा जोर लगाए हल्की गति मिलती है, जकड़न कम करने में मदद मिल सकती है और आगे के अभ्यासों के लिए कंधे को तैयार किया जा सकता है।

अगला है दीवार पर उंगलियां चलाना, वॉल फिंगर वॉक। यह अभ्यास उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है जिन्हें हाथ ऊपर उठाने में परेशानी होती है। इसे करने का तरीका है, दीवार के सामने आराम से खड़े हो जाए, दर्द वाले हाथ की उंगलियां दीवार पर रखिए। अब उंगलियों को धीरे धीरे ऊपर की ओर चलाएं, जैसे उंगलियां दीवार पर सीढ़ियां चल रही हो। जहां तक बिना तेज दर्द के हाथ जा सके वहीं रुकिए। 3 से 5 सेकंड रुककर उंगलियों को धीरे धीरे नीचे आए। शुरुआत में 5 बार कीजिए, आराम और क्षमता के अनुसार धीरे धीरे बढ़ाइए। इसके फायदे हैं, हाथ ऊपर उठाने की क्षमता और कंधे की मूवमेंट को धीरे धीरे बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। रोजमर्रा के काम जैसे बालों में खंगी करना या हल्की ऊंचाई पर रखी चीज तक पहुंचना आसान हो सकते हैं।

अगला है टेबल स्लाइड, मेज पर हाथ आगे सरकाना। दोस्तों ये अभ्यास खास तौर पर उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है जिन्हें हाथ हवा में उठाने पर दर्द महसूस होता है। इसमें मेज हाथ को सहारा देती है। इसे करने का तरीका है, कुर्सी पर बैठकर दर्द वाले हाथ को तौलियों के ऊपर मेज पर रखिए। हाथ को आरामदायक स्थिति में रखते हुए तौलियों को धीरे धीरे आगे सरकाइए। शरीर को थोड़ा आगे झुकने दीजिए, लेकिन कंधे को जबरदस्ती आगे मत खींचिए। जहां हल्का खिंचाव महसूस हो और दर्द ना बढ़े, वही 3 से 5 सेकंड रुकिए, फिर धीरे धीरे वापस आ जाए। शुरुआत में 5 से 10 बार पर्याप्त है। इसके फायदे हैं, कंधे और हाथ के आगे की ओर गति को बेहतर करने तथा जकड़न कम करने में मदद मिल सकती है।

कंधे की ब्लेड को पीछे खींचना, शोल्डर ब्लेड सेटिंग। ये एक छोटा सा अभ्यास है लेकिन सही पोस्चर बनाए रखने में मदद कर सकता है। इसे करने का तरीका है, कुर्सी पर सीधे बैठिए या आराम से खड़े हो जाइए, गर्दन को सीधा और कंधे को ढीला रखिए, दोनों कंधों के ब्लेड को धीरे

से पीछे और थोड़ा नीचे की ओर ले जाइए। ध्यान रहे, कंधों को कानों की तरफ ना उठाइए और कमर को जरूरत से ज्यादा ना मोड़े। 3 से 5 सेकंड तक रुकिए और फिर सामान्य स्थिति में लौटाइए। इसे 5 से 10 बार दोहराइए। इसके फायदे हैं, कंधे और गर्दन की स्थिति के प्रति जागरूकता बढ़ाने, झुककर बैठने की आदत सुधारने और कंधे की ब्लड को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियों को सक्रिय करने में मदद मिल सकती है। अगला है घड़ी की मदद से कंधे को बाहर की ओर घुमाना। दोस्तों, ये अभ्यास कंधे की घुमाव वाली गति को सुधारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसे बहुत धीरे और सावधानी से करना जरूरी है। इसे करने का तरीका है, एक हल्की छड़ी या सीधी छतरी को दोनों हाथों से पकड़िए, दोनों कोहनियों को मोड़कर शरीर के पास रखिए। दर्द वाले हाथ की कोहनी को शरीर से सटा कर रखिए। दूसरे हाथ की मदद से छड़ी को धीरे धीरे इस तरह धकिए कि दर्द वाला हाथ बाहर की ओर थोड़ा घूमे। केवल आरामदायक सीमा तक ले जाइए, हाथ को जोर से ना खींचे। 3 से 5 सेकंड रुककर वापस आइए और शुरुआत में 5 बार दोहराइए। इसके फायदे हैं, कंधे की बाहर की ओर घूमने वाली गति को बनाए रखने या धीरे धीरे सुधरने में मदद मिल सकती है। यह अभ्यास हर व्यक्ति के लिए एक जैसा उपयुक्त नहीं होता, इसलिए तेज दर्द या हाल ही के चोट होने वाले फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह जरूर लें। दोस्तों, इन अभ्यासों को करने का सही तरीका क्या है? समय शुरुआत में 5 से 10 मिनट का हल्का अभ्यास करें। दोहराव हर अभ्यास 5 बार से शुरू करें। गर्म सिखाए, यदि आराम मिलता है तो थोलियों में लपेट कर गर्म फेंक अधिकतम 15 से 20 मिनट तक लगा सकते हैं। सबसे जरूरी नियम है, हल्का खिंचाव ठीक हो सकता है, लेकिन तेज दर्द, बढ़ता हुआ दर्द या नई परेशानी होने पर तुरंत रोके। तो दोस्तों, आज के सुबह सवेरे के योग सेगमेंट में हमने सीखा कि कंधे के दर्द और जकड़न में जल्दबाजी नहीं बल्कि धैर्य और सही तरीके से की गई हल्की मूवमेंट बहुत जरूरी है। याद रखिए, शरीर हमें हर दिन संकेत देता है कि दर्द को अनदेखा मत कीजिए, लेकिन दर्द के कारण शरीर को पूरी तरह निष्क्रिय भी मत कीजिए। अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़िए और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह जरूर लीजिए। तो दोस्तों, आज के योग सेगमेंट में बस इतना ही। चलिए कार्यक्रम में सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत।

दोस्तों, इस वक्त आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर कार्यक्रम सुबह सवेरे में। बढ़ते हैं हेल्थ सेगमेंट की ओर। दोस्तों, आज का हेल्थ सेगमेंट, सुबह उठते ही पानी पीना कितना फायदेमंद और कितना जरूरी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये एक अच्छा विषय है क्योंकि बहुत से लोग सुबह उठते ही पानी पीते हैं, लेकिन कई लोगों के मन में सवाल होता है, क्या खाली पेट पानी पीना सच में जरूरी है? कितना पानी पीना चाहिए? क्या गुनगुना पानी वजन घटाता है? आइए इन सवालों के जवाब आसान भाषा में जानते हैं। हमारे शरीर के लिए पानी क्यों जरूरी है? दोस्तों, हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित रखने, पाचन में मदद करने, पोषक तत्वों को

शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में पानी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब शरीर में पानी की कमी होने लगती है तो प्यास लगना, मुंह सूखना, सिर दर्द, थकान और पेशाब का गहरा पीला होना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए दिन भर पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। सिर्फ सुबह एक गिलास पानी से पी लेना ही पर्याप्त नहीं है, हमें पूरे दिन अपने जरूरत के अनुसार पानी पीते रहना चाहिए। क्या सुबह खाली पेट पानी पीना फायदेमंद है? जी हाँ दोस्तों, सुबह उठने के बाद पानी पीना शरीर में तरल पदार्थों की कमी पूरी करने में मदद कर सकता है। रात भर सोने के दौरान हम पानी नहीं पीते, इसलिए सुबह प्यास लगना स्वाभाविक है। लेकिन यह एक जरूरी बात समझिए, वैज्ञानिक प्रमाण यह नहीं बताते कि खाली पेट पानी पीना हर व्यक्ति के लिए किसी विशेष तरीके से शरीर को डिटॉक्स करता है या सामान्य पानी की तुलना में अपने आप अधिक वजन घटाता है। हमारे शरीर में लिवर और किडनी जैसे अंग अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं। पानी इन अंगों के सामान्य कामकाज में मदद करता है। इसलिए सुबह पानी पीने की अच्छी आदत अपनाएं, लेकिन इसे कोई चमत्कारी इलाज मत समझिए। क्या गुनगुना पानी वजन कम करता है? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है। दोस्तों, गुनगुना पानी पीना कुछ लोगों को अच्छा लगता है और इससे गले को आराम भी महसूस हो सकता है, लेकिन केवल गर्म या गुनगुना पानी पीने से शरीर की चर्बी अपने आप नहीं पिघलती। वजन को स्वस्थ तरीके से नियंत्रित करने के लिए संतुलित भोजन, नियमित शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद और लंबे समय तक अच्छी आदतें बनाए रखना जरूरी है। दिन भर कितना पानी पीना चाहिए? दोस्तों, हर व्यक्ति की पानी की जरूरत एक जैसी नहीं होती। ये उम्र, शारीरिक गतिविधि, मौसम, खान पान और स्वास्थ्य की स्थिति पर निर्भर करती है। सुबह की शुरुआत कैसे करें? तो दोस्तों, अपनी सुबह को बेहतर बनाने के लिए कुछ आसान आदतें अपनाएं। पहली बात, उठने के बाद प्यास लगे तो एक गिलास सादा पानी पी सकते हैं। दूसरी बात, बहुत गर्म पानी पीने से बचें, क्योंकि इससे मुंह और गले में जलन हो सकती है। तीसरी बात, दिन की शुरुआत कुछ हल्की स्ट्रेचिंग या क्षमता के अनुसार थोड़ी पेडल से शेयर कीजिए। चौथी बात, नाश्ता संतुलित रखें और पूरे दिन पानी पीने की आदत बनाए रखें। तो दोस्तों, आज के सेहत की बात से हमें यही सीख मिलती है कि पानी हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है। सुबह पानी पीना एक अच्छी आदत हो सकती है, लेकिन असली फायदा तब मिलता है जब हम पूरे दिन पर्याप्त पानी पीते हैं और अपनी जीवन शैली को भी स्वस्थ रखते हैं। तो दोस्तों, आज के सुबह सवेरे में बस इतना ही। चलिए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का सुबह सवेरे कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आपातानी श्रोताओं का समाचार।

Sí, acaso tanago, sí, tanupuila, bushami, mulimbuli, solo no capiopa, tanupumi, tapakendo, solo pumi, lucojinsi, dainovin. Prime Minister Narendra Modi, Royane, India Mobile Congress Programmi, New Delhi ka Yasubumi ho, Buyo inaugurate Mukobila Mutu, Osaka program Mukko ho, India ganda ka telecommunication la digital connectivity ho ka, ano ayapaka development hatachala, linumi, alolope hemi, kakingala, mukindo, Osanyanka IMC 2026 ka temmi, scale without boundaries hela, atila Mutu, ho Prime Minister Modi, Sisi, Mun ganda ka Koniyabi district atahho 5G network connectivity hu doku hela ho sisi lakh yango hela jangoi pale 5G base station atahu ganda mala ho solla dolatar lukola mute Union Minister Kiran Rijiju Arunachal Pradesh University Pasighat ho ka Vande Mataram at 150 program mika mukko ho bujo sobohala mute और रिजुजू अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पासीघाट हो मॉडर्न टीचिंग लर्निंग फैसिलिटीज मी मलिदोपा लिकिंदो हेला हो लंगे हेला खे एकर्स कैंपस मलामी पेरो येदोपा मुदोपा लिकिंदो लाते लोला मुते हो रिजुजू यूनिवर्सिटी मी आया डेवलपमेंट हाता चा दोपा का लिम्बो पास्को हो मोक दली होक लातेर कालंकादा बिदोपा मुचक हेला लुकोला मुते हो बंदे मातरम बुशी हु इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट मुझ म्यो दुहो बूथ म्यू अतामी अनो चिखो हारो गला लीग ने लाते रिजुजु लुकोला मुते तवांग गंदा हो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर मी मुजाकोला सिसी हरापा केगो केलो तोला दोनला इलेक्ट्रल रोल हो का अनंग केज जा पका केली कोसाने अतामी केगो मापा केली को किंदुपा स्पेशल ड्राइव मी मुगला दोहला हो मंजूश्री विद्यापीठ का पांडा डायरेक्टर पद्मश्री एवार्ड लान बेन लामा तुपतेन पंगसुक तेरे मुंपा अगुंपा तवांग का बूथ म्यू अतामी सका स्पेशल इनरोलमेंट ड्राइव मुको हो पखी मापा केलिकोला मुदोपा लुकोला मुदो हो इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ला बूथ लेवल ऑफिसर्स अतामी तेर बूथ म्यू अतामी अनो आयापा लुको लुदरला मुदो पतर लोला मुते हला लुकोला मुदो एक तो नाना पाटेकर न्यांग कम खंगे हेला दान न्यांगो हेमी सका कदी आपनी सो साला दुते हेला बुजो मो का ग्वा उदे हो सुदोकू हेला लुकोला मदो हो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अतांदाली होकतेर हिरपुई मी बिलिंगला मदो हो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हे एक तो नाना पाटेकर मी स्टेट फ्यूनरल मी बिदोपा लुइसला मतिला तर लुकोला मदो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अरुणाचल प्रदेश रीजनल सेंटर है स्वच्छता ही सेवा कैंपेन

0: प्रोग्राम में का मुख्य हो ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन IMC का सैनिटेशन वर्कर्स अतामी ईटानगर कैपिटल रीजन में का दरी प्यावा दो किंदु पाका अनो आया काम जी को हो पा APRC का ऑफिसर इंचार्ज साइंटिस्ट ई डॉक्टर SD गुरुमायुम मो का ऑफिस चंबार हो अमें कौनसामी बिला मुत्ते हला लुकोला मुदो जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पसीघाट हो बुजो कंटेम्पोररी हिंदी पोइट्री का प्रोफेसर लेक्चर सीरीज प्रोग्राम कोने मी मुगला मुते होसे का प्रोग्राम मी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट ला JNC का पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी डिपार्टमेंट ला इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल नी मुहिंसला मुगला मुते मनुष साला दिया चिताले नी बेजिंग चाइना हो का WTT ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस हेकासला मुको हो इंडिया हो पा सेमी फाइनल ले पका चातुजा चान बो मिक्स डबल प्लेयर पा जिदो लाते लुकोला मुदो सरो का पुलु को सने हम कने सी आकाशवाणी
1: सीनो ने मिटाग से ने पुलु कोली मलारो आया पा कल्या तला HIV का पुगो मीटिंग तला दुने मलाजा पाया दो
2: HIV आई हो कहीं से में दू ये मिलो को इमी दो बस को बेजी ने ने मी वा कमी ने लला मी वा कमी हिरन ने नां को इंची दू ओ अन HIV गुदो को दा नंगामी अन्य असिंग को त्रो इंची दू
1: ओ जलो हैंडल गुदो दो बस को अलग अलग से को पो बस लियो दो बात आम सुली हो तारु असु जलो हुको कु इंची मधु
2: HIV मी टेस्ट मुको केंदो म्यो दू तो रंपा चिंपा दो पा और ट्रीटमेंट मुदो पा और सांगो आया सांडो पा
1: HIV में बुसोमा पा लुकस केंदो टेस्ट मुको केंदो एन हेमाला बुकीमा सिमे आयपा कचिना वो नेशनल एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 हो कॉल मकिनो सिकपुगोमी पब्लिक इंटरेस्ट हो अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नार लगा नोकर मुदिबुदो
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: श्रोता अभी आप सुन रहे थे आपातानी श्रोताओं का समाचार। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम मॉर्निंग इंफोटेनमेंट के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नई सुबह की ताजगी, सुनहरी किरणों और ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन अरुण FM 103.1 MHz पर, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। मैं हूँ आपका अपना आरजे कारगर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट। दोस्तों, हर नई सुबह अपने साथ लेकर आती है नई उम्मीदें, नए अवसर और नई जानकारियाँ। इसलिए हम भी हर दिन की तरह आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की ताजा और भरोसेमंद खबरें, अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय दैनिक समाचार और दिन भर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। आइए सबसे पहले देखते हैं आज के राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर। जीएसटी नियमों में बदलाव, कारोबारियों को राहत। जीएसटी परिषद ने 8 अक्टूबर को कर संबंधी नियमों में बदलावों को मंजूरी दी। नई व्यवस्था के तहत जीएसटी अपराधों में अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति हटाने, अभियोजन की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ करने और सामान्य जुर्माने को 25,000 से घटाकर 10,000 करने का निर्णय बताया गया है। जीएसटी दरों में इस बैठक में बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में वरिष्ठ पदों के लिए नया

लागू। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम 2024 की व्यवस्थाएं 8 अक्टूबर से लागू हो गई हैं। इसके तहत महानिरीक्षक स्तर के 50% पद अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के कम से कम 67% पद और महानिदेशक तथा विशेष महानिदेशक स्तर के सभी पद आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से भरे जाने का प्रावधान है। भारत का 6G टेक्निक में वैश्विक हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेमा सानी ने कहा कि भारत का लक्ष्य है 6G पैटर्न और मानकों में 10% हिस्सेदारी हासिल करना है। उन्होंने बताया कि देश के सभी जिलों में 5G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है और लगभग 5.6 लाख बेस ट्रांसीवर स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। बैंकिंग भर्ती घोटाले का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिल्ली, बिहार, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में सक्रिय कथित बैंकिंग भर्ती धोखाधड़ी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। रिपोर्ट के अनुसार 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक सीजीएसटी निरीक्षक भी शामिल है। असम और पुडुचेरी उपचुनावों के नतीजे आज। असम और पुडुचेरी के उपचुनावों के मतगणना 9 अक्टूबर को निर्धारित है। इन नतीजों पर राजनीतिक दलों और मतदाताओं की नजर रहेगी। कोचिन शिपयार्ड को 40 से अधिक जहाज बनाने की ऑर्डर। केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के अनुसार कोचिन शिपयार्ड को अमेरिका, जर्मनी और नॉर्वे सहित विभिन्न देशों से 40 से अधिक जहाजों के निर्माण के ऑर्डर मिले हैं। भारत में एआई नियमन पर परामर्श पत्र जल्द। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार सरकार अगले एक महीने के भीतर कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के नियमन पर परामर्श पत्र जारी करेगी। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। सऊदी अरब के राजधानी रियाद में मिसाइल हमले का दावा, उड़ाने प्रभावित। यमन के हूती विद्रोहियों ने रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाने का दावा किया। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि राजधानी की ओर आ रही दो मिसाइलों को रोक लिया गया। गिरते मलबे से एक किंडरगार्टन और चिकित्सा परिसर को नुकसान पहुंचने की खबर है। दक्षिण कोरिया ने अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली का प्रशिक्षण किया। दक्षिण कोरिया ने 8 अक्टूबर को अपने देश में विकसित हाइपरसोनिक हथियार का उड़ान परीक्षण किया। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर जताई नोबेल शांति पुरस्कार की उम्मीद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा से पहले फिर दावा किया कि उन्होंने कई युद्धों को समाप्त करने में भूमिका निभाई है। उनकी टिप्पणियां पुरस्कार की घोषणा से पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनी हुई है। दोस्तों, रुक करते हैं राजधानी ईटानगर से प्रकाशित अरुणाचल टाइम्स अखबार की मुख्य सुर्खियों पर एक नजर। अर्ली रिनोवेशन ऑफ रेलवे ब्रिज डिमांडेड। सियांग वैली के लोगों और पड़ोसी असम के जोनाई के निवासियों ने चिंता जताई है कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे सीमेंट सपोरी के गिरे हुए रेलवे पुल की मरम्मत पर ध्यान नहीं दे रहा है। मिस अरुणाचल कंटेस्टेंट एलिजिबिलिटी टर्मिनेटेड। मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन ने मिस अरुणाचल कंटेस्ट 2026 की एक कंटेस्टेंट की पात्रता रद्द कर दी है। यह फैसला उसके कथित तौर पर एक से ज्यादा लोगों के साथ रिश्ते को लेकर हुए विवाद के बाद लिया गया है। अपंग क्वेश्चन SUMP PFR डिमांड्स विड्रॉल ऑफ आर्म पुलिस। सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए PFR सर्वे की तैयारी के मकसद से सरकार द्वारा कथित तौर पर जबरदस्ती उठाए जा रहे कदमों की वजह से हाल ही में पैदा हुई हिंसक स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और समाज सेवी गेवोंग अपांग ने कहा कि PFR सर्वे की तैयारी शुरू होने से पहले ही सरकारी अधिकारियों ने अपर सियांग के रुईगा, कोमकर, गेकू और यिंकियोंग इलाके के किसानों के साथ धोखाधड़ी की है। KTR एडॉप्ट स्कूल टू इम्फर्थ वाइल्ड लाइफ एजुकेशन। लोहित जिले में कामलांग टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने युवा पीढ़ी में वन्य जीवों और प्रकृति के प्रति गहरी समझ विकसित करने के मकसद से
अपनी तरह की

पहली पहल के तहत क्लासरूम इन द वाइल्ड नाम के एक व्यवस्थित प्रकृति शिक्षा कार्यक्रम के लिए दो स्कूलों को गोद लिया है। आरपीसी एडॉप्ट गाइडलाइंस ऑन बंद कॉल्स एंड मीडिया कंडक्ट। रागा फ्रेश क्लब ड्यूरिंग मीटिंग हेल्ड इन किचो इन कमले डिस्ट्रिक्ट ऑन वेडनेसडे डिस्कस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द मीडिया एंड प्रोफेशनल कंडक्ट। बुधवार को कमले जिले के किचो में हुई एक बैठक में रागा फ्रेश क्लब ने मीडिया के कामकाज और पेशेवर आचरण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। मीटिंग हेल्ड अहेड ऑफ सेक्रेड रिलिक्स एक्सपोजन। हाल ही में यहां इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन और नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली के एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग टीम के साथ एक बैठक हुई। यह बैठक भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी के सिलसिले में थी जो 14 से 20 नवंबर तक यहां गोल्डन पगोरा में आयोजित होने वाली है। तो दोस्तों आज के न्यूज सेगमेंट में बस इतना ही। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आनंद लेते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत सोनू निगम की आवाज में।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मॉर्निंग इंफोटेनमेंट आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। आइए इस कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का मॉर्निंग एंटरटेनमेंट कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे तागिन श्रोताओं का समाचार।

सो लगतन लग दुखो वाला पा दुखो सो स्पेशल ड्राइव सो पद्मश्री एवार्डी लामा बेम तुपतेन पुनसोक गे आमेन गाखा लगता लगते दुखने ला फालिन दुखो सो तवांग लो मंजूश्री विद्यापीठ के फाउंडर डायरेक्टर गुब का रिकुनाम केला में फालेंदो को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश लो रीजनल सेंटर गा मयो ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आईएमसी गा आमेन गो जिलिनला रिगनी खुबला में फादो को सोंग ईटानगर कैपिटल रीजन आईसीआर एपी आरसी ऑफिसर इंचार्ज ओके स्पेशल स्पेशल साइंटिफिस साइंटिस्ट बरे ने डॉक्टर एस डी गुरुमायम गर लाख बजिला रिकंजी खुबला मैं फालें दुखो शुरू गए तागिन गांव बिन्यू बितम संका है बो

0: Manang-manang nga si tegap si gamgo aku tepay. Si alamanelema aku HIV oi loka yonam chonam la. Ane loka kulo aduku alabimpalinduku. Abarito la, lako ba dung la achin ugumala donang tengnam loka so HIV si ni nga lagi duba chance maka ala bimpa linduku. Holaga ba benu so lema nga pamu maduba atuboga ayag nga alaba Nichiko Hospital lo check laka. Gam rodu ba mengbolo helpline number 1097 lo call laka. So gam si Arunachal Pradesh State AIDS Control Society DHS Nahalagan loka bimpa linduku.
1: श्रोता आपसे थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे तागिन श्रोताओं का समाचार। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम सदा बहार के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।
2: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार। दोस्तों, हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, और अगर उस सुबह की शुरुआत हो ताजा मौसम की जानकारी और मधुर संगीत के साथ तो पूरा दिन और भी खूबसूरत बन जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के मौसम के बिल्कुल ताजा हाल। आज ईटानगर के मौसम को लेकर मौसम विज्ञान विभाग और उपलब्ध ताजा पुनर्अनुमान के अनुसार आज आसमान पूरी तरह बादलों से छाए हुए हैं और इस वक्त बारिश हो रही है। दिन चढ़ने के साथ धूप निकलने की संभावना है, लेकिन दोपहर के आसपास गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। आज का अधिकतम तापमान लगभग 32.1 सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का IMD का पूर्व अनुमान है। सुबह 20 से 28 डिग्री सेल्सियस और दोपहर को 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच सकता है। दोस्तों, ईटानगर के मौसम का आज का अपडेट यही है कि सुबह बादलों और बारिश हो सकती है और दोपहर में तापमान बढ़ेगा और गरज के साथ बारिश

की संभावना है। तो दोस्तों, सदाबहार कार्यक्रम में आइए सुनते हैं आज का पहला सदाबहार गीत। फिल्म बॉर्डर से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में, संगीतकार हैं अनु मलिक।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सदाबहार। हम लौटेंगे इस छोटी सी अंतराल के बाद एक और सदाबहार गीत के साथ। बने रहिए अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pace Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
0: ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम सदाबहार में। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम के अंत में एक और सदाबहार गीत।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का सदाबहार कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज तथा शिलांग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज़।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% की गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए, भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास विभाग क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर हैं। क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान तलाशने और सुशासन तथा सेवा वितरण में सुधार के लिए समयबद्ध कार्रवाई पर सहमति बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद के अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। उन्होंने कहा कि ये सुधार जीएसटी रूप किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के देश सेवा मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये यात्रा निरंतर जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण की मिसाल के साथ आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। आज हम विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि कैसे त्रिपुरा में आकांक्षी जिलों और जीवंत गांवों की योजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कार्य रूप में परिवर्तित किया गया है।
2: नीति आयोग के आकांक्षी जिला अभियान के तहत त्रिपुरा के धलाई जिले में उल्लेखनीय बदलाव आया है। मातृ स्वास्थ्य सेवाओं, प्राथमिक शिक्षा, बच्चों के सीखने के स्तर, सूक्ष्म सिंचाई और ग्रामीण सड़कों की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान देने से जिले के सामाजिक और आर्थिक विकास में लगातार सुधार हुआ है। वास्तविक समय में प्रदर्शन की रैंकिंग और बेहतर काम के लिए प्रोत्साहन ने धलाई को देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल होने में सहायता की है। ये इस बात का उदाहरण है कि आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनाने और स्थानीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने से जनजातियों, पिछड़े क्षेत्रों में भी विकास को गति दी जा सकती है। बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा की 856 किलोमीटर लंबी सीमा पर आकांक्षी जिला अभियान सीमावर्ती गांवों की तस्वीर बदल रहा है। आधुनिक डिजिटल नेटवर्क, हर मौसम में उपयोग होने वाली सड़कें, पाइप से जलापूर्ति और सौर ऊर्जा जैसी सुविधाओं से बुनियादी ढांचे की

0: कमियां दूर हो रही हैं। स्थानीय हथकरघा, पर्यावरण, पर्यटन और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा मिलने से कारोबार के नए अवसर मिल रहे हैं और पलायन रोकने में सहायता मिल रही है। इससे सीमावर्ती समुदाय मजबूत हो रहे हैं। ऋषिमुख पंचायत समिति के अध्यक्ष हमें बताते हैं,
1: दूर दूराज गाँव में भी आज 4G 5G मोबाइल पूरी सेवा, हर मौसम में चलने के लिए पक्के सड़के, पीने का पानी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर, पक्के शौचालय, सौर विद्युत, गाँव के युवा लोगों के लिए स्किल इंडिया के माध्यम से प्रशिक्षण और गांव की महिला लोगों के लिए रसोई का गैस उपलब्ध कराने जैसा काम हो रहा है। मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय सीमांत पर्यटन और हैंडलूम आधारित समूहों को भी सहायता देने जैसा काम हो रहा है।
0: ये दोनों केंद्रीय योजनाएं मिलकर त्रिपुरा के दूरदराज के अंदरूनी इलाके और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की खाई को पाट रही हैं। एक ओर पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर सीमावर्ती गांवों में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दूरदराज के गांवों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों तक हर नागरिक राज्य की विकास यात्रा में भागीदार बने। अगरतला से आदित्य दत्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
2: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में गढ़ खटंगा में भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इनमें प्रशासनिक भवन, बिरसा मुंडा बहुउद्देशी हॉल, जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर और अगली पीढ़ी के जैव प्रजनन सुविधा केंद्र शामिल हैं। उन्होंने संस्थान में एक नए अतिथि गृह की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना पर 119 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: गालिम लोशन,
4: गालिम लोशन, गालिम लोशन, गालिम लोशन, वो है गालिम लोशन।
3: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग गालिम लोशन।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये सीमा अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। एक रिपोर्ट।
2: रसायन और उर्वरक मंत्रालय को आशा है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी और कैंसर रोगियों को साल 500 करोड़ रुपए की बचत होगी। ये नया निर्णय लाभ प्रतिशत सीमित करने, गैर अनुसूचित कैंसर दवाओं को भी मूल्य संरक्षण प्रदान करेगा। स्वास्थ्य सेवा महा बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। इससे पहले फरवरी 2019 में सरकार के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण ने 42 चुनिंदा गैर सूचीबद्ध कैंसर की दवाओं पर लाभ प्रतिशत सीमित किया था, जिससे उन दवाओं की MRP में 91% तक की कमी आई थी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। इनमें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर, तमिलनाडु की मधुरंतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीटों के साथ असम की नगांव लोकसभा सीट भी शामिल है। इन सीट पर मतदान मंगलवार को हुआ था। पुदुचेरी में थट्टन चावड़ी विधानसभा में डाक मतपत्रों की गिनती से मतगणना की शुरुआत हुई। इसके बाद सवेरे 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। शुरुआती रुझान सवेरे 9:30 बजे तक आने की संभावना है। उधर तमिलनाडु में मधुरंतकम विधानसभा क्षेत्र में 27 तथा धारापुरम विधानसभा सीट पर 30 उम्मीदवार मैदान में है। TVK के नेतृत्व वाली सरकार के लिए पहला उपचुनाव है। हुती विद्रोहियों ने कल सऊदी अरब पर मिसाइल हमले करने का दावा किया है। इन हमलों में रियाद का किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नजरान हवाई अड्डा और खमिस मुशैत स्थित एक एयरबेस निशाने पर थे। एक रिपोर्ट।
3: हुती विद्रोहियों ने कर्मचारियों को सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों से दूर रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने इन ठिकानों को संभावित निशाना बताया।

0: इसके जवाब में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। इन हमलों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा सहित कई विमानन कंपनियों ने रियाद के लिए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी हैं। संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मिस्र, कुवैत और बहरीन ने इन हमलों की निंदा की है। इस बीच रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर घरों के अंदर रहने की अपील की है। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हेल्पलाइन सेवा भी चालू है। इसका टोल फ्री नंबर है 800-247-1234। दुबई से मनीष शिवा झोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इनमें भारतीय कंपनियां इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एससीएल के अलावा कॉग्निजेंट, कैंप जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब शामिल हैं। अमेरिका के श्रम मंत्री कीथ सोडरलिंग ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ जारी संघीय जांच के बाद यह कदम उठाया गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका केवल असाधारण प्रतिभा वाले विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवर्जन कार्यक्रमों का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशी पेशेवरों के आवेदनों पर विचार करते समय आवर्जन अधिकारियों को 2 कसौटियों पर ध्यान देना होगा। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में रात करीब 11:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर पुणे हवाई अड्डे पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार ने श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार के दौरान फिल्म जगत की कई हस्तियां भी उपस्थित थीं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 12 श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु का सामना थाईलैंड की रत्चानोक इंतानोन से होगा। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में कल जापान की रीको गुंजी को हराया था। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। उत्तराखंड में आज देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की आशंका है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दिए गए वक्तव्य को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी का आह्वान, साइबर सुरक्षा पर साथ आएं, दुनिया के देश ठगी होने से पहले ही रोकने वाला तंत्र बनाएं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डीप फेक रोकने के लिए साथ आएं देश और कंपनियां। अमर उजाला के अनुसार मोदी बोले, 5 लाख करोड़ रुपए की गड़बड़ी रोकी तभी हो रहा मेरा विरोध। पंजाब केसरी के मुताबिक जिनकी मुफ्त की कमाई बंद हुई चीखते चिल्लाते रहे। दैनिक जागरण के अनुसार जीएसटी अधिकारियों से छिन गई गिरफ्तारी की शक्तियां, जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे कारोबारियों को राहत। अमर उजाला लिखता है, अब कोर्ट के आदेश पर ही गिरफ्तारी, 10,000 रुपए से कम के मामलों में नोटिस नहीं। वन नेशन वन टैक्स पर विचार, ऑनलाइन सामान महंगा, मांगना होगा सस्ता। जनसत्ता का शीर्षक है, सस्ती होगी कैंसर की दवाएं, व्यापारी 30% ले सकेंगे मुनाफा। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का असर, कैंसर दवाओं में मुनाफे की डकैती रुकेगी। लोकसत्य की सुर्खी है, यूपीआई शुल्क पर त्योहारों में राहत, जनवरी तक टल सकता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। दैनिक जागरण का शीर्षक है, सैटकॉम नीति पूरी तरह निष्पक्ष, भारत ने स्टारलिंक के प्रमुख एलन मस्क के आरोप किए खारिज, बैकफुट पर मस्क, कहा भारत के लिए बहुत मददगार साबित होगी स्टारलिंक।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय

0: शिलोंग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओ अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो ईटानगर, कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
1: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
2: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
1: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
2: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
1: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जाँच कराए, भेदभाव मिटाए।
2: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
3: हेलो ईटानगर।

नमस्कार दोस्तों, अरुण एफएम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो ईटानगर। दोस्तों, हम इस कार्यक्रम में आपको बताते हैं टुडे इन हिस्ट्री सेगमेंट और साथ ही कुछ जरूरी जानकारी और आनंद लेते हैं कुछ बेहतरीन गीतों को। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 9 अक्टूबर को घटित घटनाओं पर एक नजर। वर्ष 1949, प्रादेशिक सेना की स्थापना। 9 अक्टूबर 1949 को भारत के प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी का औपचारिक उद्घाटन किया गया। स्वतंत्र भारत में इस व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों को अपनी सामान्य नौकरी या पेशे के साथ देश की रक्षा में योगदान देने का अवसर देना था। यह नियमित सेना का आवश्यकता पड़ने पर सहयोग देती है, इसलिए 9 अक्टूबर प्रादेशिक सेना के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। वर्ष 1874, अंतर्राष्ट्रीय डाक व्यवस्था के इतिहास में महत्वपूर्ण तारीख। 9 अक्टूबर 1874 को स्विट्जरलैंड की राजधानी वर्न में जनरल पोस्टल यूनियन की स्थापना की गई। संधि पर हस्ताक्षर हुए। बाद में यही संस्था यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू के नाम से जानी गई। इसने विभिन्न देशों के बीच पत्र और डाक भेजने के नियमों को अधिक व्यवस्थित बनाने में अहम भूमिका निभाई। भारत में भी इस अंतर्राष्ट्रीय डाक व्यवस्था का हिस्सा है। इसी तारीख की याद में हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। नौ अक्टूबर के लिए उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों में प्रादेशिक सेना का उद्घाटन एक स्पष्ट रूप से दर्ज भारतीय घटना है। मैं केवल संख्या बढ़ाने के लिए किसी दूसरी तारीख की घटना को आज के इतिहास में शामिल किया है। और रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय इतिहास के मद्देनजर 1888 वाशिंगटन स्मारक आम जनता के लिए खुला। अमेरिका के राजधानी वाशिंगटन डीसी में स्थित प्रसिद्ध वाशिंगटन मॉन्यूमेंट को आज ही के दिन आम जनता के लिए खोल दिया गया। यह स्मारक अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के सम्मान में बनाया गया था। आज यह अमेरिका की राजधानी के सबसे पहचानने योग्य ऐतिहासिक संरचनाओं में से एक है। 1940, महान संगीतकार जॉन लेनन का जन्म। 9 अक्टूबर 1940 को इंग्लैंड के लिवरपूल में जॉन लेनन का जन्म हुआ। वे विश्व विख्यात संगीत समूह द बीटल्स के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। वर्ष 1967, क्रांतिकारी चे

यवरा की मृत्यु। 9 अक्टूबर 1967 को अर्जेंटीना में जन्मे मार्क्सवादी क्रांतिकारी छे गेवेरा को बोलीविया में पकड़ लिए जाने के बाद मार दिया गया। वे क्यूबा की क्रांति में पेदल कास्ट्रो के साथ प्रमुख भूमिका निभाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध थे। 2009 बराक ओबामा को नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा। 9 अक्टूबर 2009 को नोबेल समिति ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा को उस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की। समिति ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के उनके प्रयासों को इसका आधार बताया। उत्तर कोरिया का पहला परमाणु परीक्षण। आज के दिन वर्ष 2006 को उत्तर कोरिया ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इस घटना से पूर्वी एशिया की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ी और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों ने इसकी आलोचना की। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाने वाले कदम उठाए। यह घटना परमाणु अप्रसार पर क्षेत्रीय सुरक्षा की बहस में एक महत्वपूर्ण मोड़ बनी। वर्ष 2012 मलाला यूसुफ जाई पर हमला। 9 अक्टूबर 2012 को पाकिस्तान की छात्रा और लड़कियों की शिक्षा के समर्थक मलाला यूसुफ जाई पर स्कूल से लौटते समय तालिबान के एक बंदूकधारी ने हमला किया। वे गंभीर रूप से घायल हुए लेकिन बच गई और बाद में लड़कियों की शिक्षा के लिए दुनिया के प्रमुख आवाजों में शामिल हुई। वर्ष 2014 में उन्हें कैलाश सत्यार्थी के साथ नोबेल शांति पुरस्कार मिला। तो दोस्तों, आज के इतिहास के पन्नों में बस इतना ही। चलिए कार्यक्रम में सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत। आवाज है सोनू निगम और श्रेया घोषाल की।

0: अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम यानी कि ACWF अपना फर्स्ट एवर स्टेट लेवल सेमिनार आयोजित करने जा रहा है, जो होगा क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। इस सेमिनार के रिसोर्स पर्सन होंगे श्री जेम्स टेची तारा, प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कम प्रेसिडेंट NBCC, एवांजेलिस्ट गुमदे रिबा सोंगथिंग और एडवोकेट नाबम रामा गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर बेंच। अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम अरुणाचल प्रदेश के सभी विमेन हेड्स ऑफ डिनोमिनेशंस, हेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिनोमिनेशंस और विमेन लीडर्स को इस सेमिनार में सादर आमंत्रित करते हैं। याद रखें, जगह है क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। धन्यवाद।
1: श्रोताओ, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम हेलो ईटानगर में। तो बढ़ते हैं आज के विशेष दिवस के ऊपर। आज 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे यानी विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। इसकी तारीख वर्ष 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना से जुड़ी हुई है। 1969 में टोक्यो में आयोजित UPU कांग्रेस ने इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया। डाक सेवा केवल चिट्ठियां पहुंचने तक सीमित नहीं है, ये पार्सल व्यापार, वित्तीय सेवाओं और दूर दराज के समुदायों को जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 2024 की थीम है वन पोस्टल नेटवर्क इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, यानी एक डाक नेटवर्क अनंत सेवाएं। तो दोस्तों, ये थी 9 अक्टूबर के इतिहास के पन्नों में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। भारत की प्रादेशिक सेना के औपचारिक उद्घाटन से लेकर विश्व डाक दिवस की शुरुआत, जॉन लेनिन के जन्म, वे गेवेरा की मृत्यु और मलाला यूसुफजई पर हुए हमले तक आज की तारीख हमें इतिहास के कई अलग अलग पहलुओं से रूबरू कराती है। इतिहास हमें सिर्फ बीते हुए कल की जानकारी नहीं देता, बल्कि यह भी सिखाता है कि हमारे फैसले, हमारे विचार और हमारे प्रयास आने वाले कल को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं। इसी संदेश के साथ फिलहाल आज के इतिहास के इस सेगमेंट को यही विराम देते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस कार्यक्रम के अंत में आप सुनने जा रहे हैं ये बेहद सुकून भरे गीत सिर्फ अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही आज का हेलो ईटानगर कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार, और उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे जनसेवा से देश सेवा का अगला श्रृंखला। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके साथ ही बेहतर कार्य प्रणालियों को साझा करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान तलाशने और सुशासन तथा सेवा वितरण में सुधार के लिए समयबद्ध कार्रवाई पर सहमति बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद के अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी सिफारिशों को का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय को उम्मीद है कि इस कदम से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। इन सीटों पर मतदान मंगलवार को हुआ था। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कल विस्फोटक निष्क्रिय करते समय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 4 जवान घायल हो गए। एक रिपोर्ट।
2: सुकमा जिले के भेजी थाना क्षेत्र के एलआर मडगू कैंप के पास भोदराज पदर नाले के करीब एम्युनिशन टेक्नीशियन टीम और सीआरपीएफ जवान बारूदी सुरंगों को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय करने की प्रक्रिया में लगे हुए थे। इसी दौरान एक विस्फोटक का अंश पास में आकर गिरकर फट गया। हादसे में 4 जवान घायल हो गए, इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जाती है। सभी घायल जवानों को हैदराबाद रेफर किया गया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के पुणे के फार्म हाउस नानाजी वाड़ी में रात करीब 11:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। उत्तराखंड में आज देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने के आसार है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। देहरादून स्थित मौसम केंद्र के अनुसार राज्य के सभी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। 4,200 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आइए सुनते हैं स्पेशल सीरीज जनसेवा से देश सेवा की 22वीं कड़ी। ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 22वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा हर घर बेहतर जीवन। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य वीके पॉल और वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
1: नमस्कार और आज हमारे श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है जन सेवा से देश सेवा। आज हम चर्चा कर रहे हैं हर घर बेहतर जीवन के बारे में और जिन अलग अलग पहलों की आज हम बात करेंगे उनमें एक साझा कड़ी दिखाई देती है। इनके कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव शायद ऐसे हैं जो आंकड़ों में तुरंत दिखाई नहीं देते, चाहे वो पानी या ईंधन लाने में बचने वाला समय हो या फिर वो स्वच्छ ईंधन से होने वाले स्वास्थ्य के लाभ हो या फिर बिजली और बेहतर आवास से पैदा होने वाली आर्थिक गतिविधियां हो। आज की हमारी चर्चा इन सब विषयों पर है और आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वीके पॉल, फॉर्मर मेंबर नीति आयोग एंड पवन कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट। नमस्कार और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी स्टूडियोज में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बुनियादी सवाल से। जब भी कोई पॉलिसी अस्तित्व में आती है उसका मूल्यांकन कितने समय में किया जा सकता है? पहले हम आपसे शुरुआत करते हैं पवन जी।
2: नमस्कार, अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आके। देखिए, कुछ पॉलिसी आप 2 महीने में नाप सकते हैं, कुछ पॉलिसी आप 1 साल में नाप सकते हैं, कुछ 5 साल में, कुछ 10 साल में, पर जो आपका रिक्वायरमेंट है, जिस पॉलिसी के बारे में आप बात करना चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी इम्पैक्ट आपको, उसके लिए आपको लंबा वक्त देना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, इन्फ्लेशन नापने के लिए कोई पॉलिसी लेते हैं आप तो 1 महीने में नाप सकते हैं कम हुआ कि नहीं हुआ। FDI पे आपको बात करनी हो तो 1 साल का टाइम चाहिए, देखते हैं क्या हुआ, कितना आया, कहाँ से आया, कौन से सेक्टर में आया। अब जिस स्ट्रक्चरल पॉलिसीज की बात आप कर रहे हैं कि साहब जल जीवन मिशन का कितना फर्क पड़ा या जो दूसरी और गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसका कितना फर्क पड़ा, उसमें आपको मिनिमम कम से कम 5 साल का, जो मेरा इकोनॉमिक्स जितनी मुझे समझ में आती है उसके हिसाब से 5 साल का आपको एक होराइजन मान के चलना पड़ेगा। कुड बी 5 साल, कुड बी 10 ईयर्स ऑल्सो, बट 5 साल मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको देना पड़ेगा। तो पॉलिसी नापने के अपने मेजरमेंट के अपने तरीके हैं, वो है नहीं कि साहब कोई पॉलिसी सरकार ने कल को लॉन्च किया और आज उसका मूल्यांकन करें और उसके बाद आप कहें कि साहब काम हुआ या काम नहीं हुआ, वो सही तरीका पॉलिसी का नहीं है। आपको एक सर्टेन टाइम पॉलिसी को देना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ पॉलिसी दैट यू हैव लॉन्च्ड,
1: ताकि उसका प्रभाव नजर आए और बेहतर समझ में आए।
2: जी
1: डॉक्टर पॉल, आपसे मैं यही सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि आप नीति आयोग के सदस्य रह चुके हैं, आपका नजरिया शायद थोड़ा सा अलग होगा इस बारे में।
3: एक्चुअली अलग नहीं है पवन जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। ये पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका असर कब होगा, ये बात बिल्कुल सटीक है, लेकिन ये हम रख के चल सकते हैं कि अगर एक पॉलिसी ने एक्शन अचीव करना है, मान लीजिए कि एक बात हो गई कि हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाएंगे, तो फैसला हो गया कि हम कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर को अगले लेवल पे लेके जाएंगे। इसको बनाने का टाइम लगेगा,
1: बिल्कुल
3: 4-5 साल, 3 साल लगते हैं बनाने में। इंक्रीमेंटल रोल आउट होता है, फिर क्वालिटी एश्योरेंस होती है, फिर एक सैचुरेशन लेवल पे कवरेज, फिर क्वालिटी। तो कुछ चीजों में डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम, डिपेंडिंग ऑन द इनिशिएटिव, इट टेक्स डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम टू सी द इम्पैक्ट। लेकिन एट अ गुड बेंच मार्क इज आई एग्री विद सर दैट 5 years is a good benchmark for many of the initiatives that will and have changed the ease of living for our families.
1: Okay.
3: तो उस benchmark से आपसे आगे बात बढ़ाते हैं।
1: जी बिल्कुल, और क्योंकि आज का जो विषय है वो हर घर बेहतर जीवन के बारे में है, तो शुरुआत घर से करते हैं। अब जब हम घर को परिभाषित करते हैं या हम आवास की बात करते हैं, तो क्या आवास को

0: एक छत के रूप में देखना चाहिए या फिर परिवार की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के आधार के रूप में भी उसे देखना चाहिए?
1: घर की जब आप बात करते हैं तो उसमें आपको घर में पहुंच के अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आप 5 दिन कहीं बाहर रहे, आप घर में जाने लगे, घर से ज्यादा कहीं खुशी नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम जब घर बोलते हैं तो उसमें सब कुछ होना चाहिए, सारी सुविधाएं होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, उसमें बिजली होनी चाहिए, उसमें रहने की जगह होनी चाहिए, इसमें इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, इसमें घर में रह के आप, आपके बच्चे हैं, आपके जो परिवार हैं उसकी देखभाल करिए आप। तो आप मेरे लिए घर जो है, इवन सरकार की स्कीमों के हिसाब से घर जो है केवल छत दे दिया तो वो घर नहीं है,
0: एक
1: वो
0: होलिस्टिक
1: पूरी
0: डिफेंस।
1: पूरा पूरा एक होलिस्टिक आकार प्रकार है
0: जी
1: उसका। वो जब आपके पास है तो आप उसको घर बोल सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: मेरे ख्याल से शायद यही पूछना चाह रही थी आप।
0: जी बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रही थी और ये मैं प्रधानमंत्री आवास योजना को मद्देनजर रखते हुए पूछना चाह रही थी। डॉक्टर पॉल, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या आप पवन जी की बात से सहमत हैं, पहली बात तो, और दूसरी बात ये कि भारत में कई दशकों से गरीबों के लिए, गरीब परिवारों के लिए सरकारी आवास योजनाएं चलती आ रही हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ने किन चुनौतियों को भापा या किन कमियों को भापा जो वो पूरा करने की कोशिश कर रही है, या कौन से ऐसे गैप्स थे जिसे इस पॉलिसी ने आइडेंटिफाई किया?
1: पहले भी सरकार जो है वो आवास योजनाओं पे काम करती थी। इस सरकार ने क्या किया, इस सरकार ने उसको आगे बढ़ाया, ठीक है, इस सरकार ने उसको आगे बढ़ाया। साथ ही साथ जो सरकार एक ओवरऑल होलिस्टिक एटीट्यूड जो पहले था उसमें पूरा एक कल्चरल इमोशनल चेंज लाया, उसमें उसमें चेंज लाया, जिसमें बोला कि साहब ये आवास जो है, ये अब हमने कहा कि ये केवल एक स्केलेटन नहीं है, एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये उससे बढ़ के कुछ है। तो पहले भी हम लोग गांव में जाते थे, जैसे पत्रकार के तौर पे कहीं गए तो आपने कहा कि साहब घर बनाया क्या आपने, तो पता चला कि साहब उसका घर बना हुआ है और आधा बना हुआ है आधा नहीं बना हुआ है। आधा घर बना मतलब आप समझिए कि सीने तक की दीवार आई, उसके बाद दीवार नहीं है, पैसा खत्म हो गया था।
0: जी
1: इस सरकार ने आके थोड़ा सा उसमें बात को आगे बढ़ाया, उसको ज्यादा चेंज किया, और अक्रॉस दी स्टेट्स, आप मध्य प्रदेश जाए, बिहार जाए, आप यूपी जाए, किसी भी स्टेट में जाएंगे तो आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि एक रूपता मिलेगी आपको प्रोग्राम में। अब वो जो आवास योजना है वो उनके लिए केवल छत नहीं है, आवास योजना उनके लिए सुरक्षा है, उनके लिए डिग्निटी है, उनके लिए उनका रिकॉग्निशन है। अब सोचिए कि एक फैमिली के लिए ये सब कितना जरूरी होता है, क्योंकि पहले हम इसलिए निहारिका इस पे बात नहीं करते थे क्योंकि हमें पता ही नहीं होता था। अब हमें पता चला कि अच्छा सरकार ने रिकॉग्नाइज किया कि हम एग्जिस्ट करते हैं। कोई एक ऐसी सरकारी बॉडी है जो इस बात की चिंता कर रही है कि साहब हमारे बारिश हो रही है तो बारिश में हम केवल भीग नहीं रहे हैं, हमें रहने की जगह नहीं है। उसमें डॉक्टर साहब से आप मेडिकल पे ज्यादा बात करेंगे, जैसे फर्ज करेंगे कि हमारे पास घर नहीं है, घर नहीं होने से उसके हेल्थ कितना इम्पेक्ट होता था,
0: बिल्कुल
1: ये लोग उसके विद्वान है उस पर ज्यादा बात करेंगे। अब फर्ज करिए किसी का घर है, सांप काट लिया, आप कल्पना करते हैं कभी गांव में जिनके घर में मिट्टी के हैं, छप्पर हैं, घास फूस के हैं, डॉक्टर साहब वहां सांप बैठा हुआ है, दूसरे जानवर बैठे हुए हैं, बिच्छू है, जगह नहीं है, दो ईंटों के बीच में या दो मिट्टी के नली के बीच में।
0: जी
1: तो ऐसा नहीं, घर केवल उनके लिए अभी आज की तारीख में रिकग्निशन है, प्राइड है, गौरव का भाव है, उसके अलावा एक ओवरऑल मेंटल एंड फिजिकल एश्योरेंस एंड सिक्योरिटी, वो सब पूरा एक पूरा आस्पेक्ट है, वो पूरी चेन है। वो घर है इसलिए वो सबसे पहला तो उनको कि साहब अच्छा हमें घर मिला। अब जब घर देंगे अभी, क्योंकि आगे जब आप बात करेंगे, आगे बिजली की बात करिएगा, ये सब सरकार के अलग अलग मंत्रालय निहारिका हो सकते हैं, वो सरकार के लिए मंत्रालय अलग हो सकते हैं, वो सारी मंत्रालय के जो चेन्स हैं वो जाके सिंपल एक फैमिली और एक व्यक्ति उसके अपलिफ्टमेंट कैसे कर रहा है, वो अब से जो पहले होता था उसमें एक सी चेंज है। हम देखिए कोई सरकार कितना काम कर रही है इसका मूल्यांकन आपको एक समय के बाद करना पड़ेगा,
0: बिल्कुल
1: और किसी पॉलिसी की जब हम लोग बात करते हैं कि साहब अच्छा है बुरा है जो भी है, तो आपको एक वक्त उसको देना पड़ेगा, उसके बाद उसका असेसमेंट करेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि साहब कितना फर्क पड़ा है। एक फर्क ये पड़ गया कि लोग कहते थे कि अच्छा घर हमें क्यों नहीं मिला, जिनको नहीं मिला उनको इस बात की दिक्कत नहीं हम कैसे रह रहे हैं, उनको इस भरोसा है कि साहब ऐसा है कि देयर इज अ स्कीम अवेलेबल जिसमें हमारे बराबर के आर्थिक समानता वाले लोगों को मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। ये अवेयरनेस अपने आप में बताता है कि साहब इसका मतलब है कि थोड़ा सा सोच में एक बेहतरी आई है, ये एक अच्छी बात है। तो मैं ये कह रहा था आवास योजना उनके लिए केवल वो नहीं है, वो मेंटल एंड फिजिकल बोथ, वो उनके लिए अपलिफ्टमेंट का
0: यानी काफी
1: एक
0: लेयर्ड टर्म है जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, और जब हम आवास की बात करते हैं तो वो केवल दीवारें नहीं है, उसकी काफी सारी लेयर्स हैं। आपके विचार क्या है सर इस पे?
2: मैं ये कहना चाहूंगा कि हर आवास में दो जरूरतें पूरी हों तो वो आवास पूरा है। एक है कि उसमें पानी की सप्लाई होनी चाहिए, पीने लायक पानी टैप से घर में आए, तो प्रधानमंत्री जी ने उसका कार्यक्रम बनाया, जल जीवन मिशन बनाया, हर घर नल जल।

0: हमारी परिकल्पना करें। दूसरा है, और शायद उससे पहले आता है, कि टॉयलेट हो, घर में टॉयलेट हो, ये फंडामेंटल नीड है, एक ह्यूमन राइट वाली बात है ये। और हम इतना बड़ा काम हुआ है, सिर्फ दीवार बनाने और टॉयलेट ही भूल जाना, या फंक्शनल टॉयलेट ही भूल जाना, या उस तक का इस्तेमाल ना बता पाना उस हाउस होल्ड को, तो अधूरी बात है। तो अगर हम ये दो चीजें देखें, तो प्रधानमंत्री जी ने आपके कार्यक्रम में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत गाँव में 12 करोड़ टॉयलेट बनाने का संकल्प लिया और उसको सिद्ध करके दिखाया। उसके कितनी डायमेंशंस है, ईज ऑफ लिविंग है पहले, एक सिक्योरिटी है, और हमारी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, खासकर जो उनकी लाइफ इम्प्रूव होती है, आप उसके बारे में सोचिए। तो जो घर में जो बदलाव आया है, ये एक मुद्दे को अगर देखें, तो ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है, जो काम पूरा नहीं हुआ था। और अगर मैं इसको स्वास्थ्य से जोड़ू, तो पब्लिक हेल्थ का जो हाइएस्ट प्रिंसिपल है वो साफ पानी है, और एक एनवायरमेंट है जो कि सफाई वाला, हाइजीनिक एनवायरमेंट है, और टॉयलेट आती है आसपास गांव में, सारा ओपन डिफिकेशन फ्री होता है कि बाहर शौच कोई नहीं जा रहा है, तो जो जीवाणु है वो मुंह के रास्ते से, गंदगी से मुंह के रास्ते से आके बीमारी नहीं पैदा करते। दस्त नहीं की बीमारी होगी, हेपेटाइटिस नहीं होगा, टाइफाइड नहीं होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसको स्वास्थ्य से जोड़िए। यहाँ की हम पढ़ते थे बहुत जमाने पहले कि हर बच्चे को 3 एपिसोड जो है वो डायरिया के होते हैं बचपन में, अब सब बदल गया है, नेग्लिजिबल हो गया है। और इसके फॉर्मल एस्टिमेट हमारे पास हैं कि जब ये सैचुरेट हुआ काम रूरल इंडिया में, तो 70,000 बच्चों की डेथ हर साल कम हुई है, क्योंकि डायरिया कम हुआ, इन्फेक्शन डिजीज कम हुई, ओरोफिकल रूट टूटा, और इसके अलावा न्यूट्रिशन बढ़ी, और ये सब होने के साथ साथ खाफ एनवायरमेंट से, सिर्फ ये एक सेंटिमेंट की बात नहीं है, एक नपीतुली बात है कि लाइव्स बच रही हैं और उनको नहीं दौड़ना पड़ रहा है, अपना पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ रहा है कि डायरिया के लिए और दस्तों के लिए। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और फिर बढ़ते हुए हम इसको जोड़ेंगे कि हर घर नल जल से कितना ईज ऑफ लिविंग हुई है, वो भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा।
1: मेरा अगला सवाल इसी पर होने वाला था, जल जीवन मिशन और स्वच्छता अभियान पे, दोनों की मेरा ख्याल से एक साथ बात हम कर सकते हैं, और वो इसलिए कि इसका सीधा सीधा असर स्वास्थ्य पे पड़ता है और दूसरा असर वुमेन एम्पावरमेंट पे पड़ता है। तो अगर हम जल जीवन मिशन की बात करें, हमारे देश का एक चित्र रहा है जहां हम एक महिला को दूर जाते हुए देखते हैं मटका लेके पानी लेकर आने के लिए, और शायद ये जो काम था, ये जो कार्य था, वो उसे पढ़ाई से, रोजगार से दूर रखता था, और दूसरा इसका असर जो पड़ता था वो महिलाओं के स्वास्थ्य पे पड़ता था। तो जल जीवन मिशन आने से क्या ये चित्र बदलने लगा है थोड़ा सा?
2: कल्पना कीजिए, सुबह सुबह के 6 बजे हैं और गांव की महिलाएं 2 बाल्टी हाथ में लिए हुए, या पानी का कोई बर्तन जो जिसके बगल के जलाशय में गए, कुएं पे गए, या कोई और पानी का जो दूसरा स्रोत है उसके पास गए और लेके आए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर वहां से लौट के आना। ऐसा नहीं है कि कोई ये चीज हमने किताबें पढ़ी, बाद में हमने पत्रकारिता की तो हमने देश के अलग अलग इलाकों में देखा, राज्य का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे सीन बहुत सारे इलाकों में थे। वो जाती थी तो क्या करती थी, वो जाती थी तो बेटी उसके साथ जाती थी, पति नहीं जाता था। पानी लाने में पुरुष का रोल नहीं होता था, पानी लाने में महिला का ही रोल होता था, वो लेके जाती थी, बेटी जाती थी उसके साथ, और वो पूरे 3 घंटे की यात्रा होती थी, निहार का जाना आना और तैयारी, ये वक्त ज्यादा लगता था, एनर्जी जाता था। इकोनॉमिक्स में बोलते ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट,
1: बिल्कुल।
2: तो आप देखिए कि क्या हालत क्या थी, वो सीन नहीं है जैसे बुंदेलखंड के इलाके में, मध्य प्रदेश के बाकी और इलाके में। यूपी गवर्नमेंट ने इस पे बहुत काम किया जल जीवन मिशन पे। ये जल जीवन मिशन, इसमें जो सफरिंग कम्युनिटी थी वो महिलाएं थी, पुरुष नहीं था,
1: बिल्कुल,
2: टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मैं ये कहूंगा टू अ ग्रेट एक्सटेंट। महिलाओं के लिए टाइम खराब होता था, एनर्जी जाती थी, घर में बच्चों को पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता था, ये सब समय की बचत हुई। तो आप देखेंगे जल जीवन मिशन से न केवल क्वालिटी ऑफ वाटर अवेलेबल है, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज बिकम मच बेटर,
1: और शायद इसका जो प्रभाव है आगे आने वाली कई पीढ़ियों तक नजर आएगा, इसका पीढ़ीगत प्रभाव शायद ज्यादा होगा, शायद हमें इमीडिएट इफेक्ट देखने को इतना ना मिले, लेकिन आगे जाकर जैसे आपने शुरू में कहा था कि हर पॉलिसी का मूल्यांकन करने के लिए कुछ वक्त हमें देना पड़ता है,
0: इतना प्रभाव तो जिस दिन पानी आ गया
2: उस
0: घर की तो दशा उसी दिन बदल गई,
1: उसी दिन बदल गई।
0: अब देखिए मैं इसके एक आंकड़े से जोड़ता हूँ, पवन जी आपने जो बातें कही है, एक स्टेज पे इसका जो स्पीड एंड स्केल है ना इस काम का, मैं थोड़ा सा उभारना चाहूंगा, उसका मतलब कि स्पीड एंड स्केल सिर्फ प्रोजेक्ट का नहीं है, काम का नहीं है, जो चेंज हो रहा है। अब स्पीड की बात करो, एक स्टेज पे पवन जी जब पीक पर चल रहा था, उस टाइम पे एवरी सेकंड एक नया टैप वाटर नए हाउस होल्ड में पहुंच रहा था, एवरी सेकंड। इसका थोड़ा सा अगर

0: आज करते हैं, मल्टीप्लाई करिए, तो 86,000 टैप कनेक्शन एक दिन में लग रहे थे, 86,000 घरों में पानी लग रहा था। मैं चाहिए जी रिफ्लेक्ट कर, आप सोचिए लाइफ कितनी बदल रही थी। 86 घरों के साथ में एस्टीमेट है कि 3.5 लाख लोग उसमें रह रहे होंगे, 3 से 4 से मल्टीप्लाई करिए आप। आप सोचो आज ये 3.5 लाख लोग पानी ला रहे हैं
1: जी,
0: जिंदगी और है, कल बदल गया, ये स्पीड है। तो इसके लिए वेट करने की और जरूरत नहीं है,
2: नहीं है।
0: ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका स्केल देखिए, स्केल ये है कि जब शुरुआत हुई थी तो 19 करोड़ या 19.4 करोड़ रूरल हाउस होल्ड में से सिर्फ 3.23 करोड़ 17% घरों में टैप का पानी आ रहा था। आज हम ये बात ऑलमोस्ट 13 करोड़ तक पहुंच गए हैं, और वो 17% था और आज हमें 79% 80%। 17 से 80 की जर्नी, और रोज बदलाव हुआ होगा उस घर में एक दिन के अंदर छोटे ड्यूरेशन में, ये सोचने वाली बात। जब ये मिशन पूरा हो जाएगा तो हमने लगभग 16 करोड़ घरों में पानी की सुविधा कर दी होगी। इसको अगर मैं देखूं कि इसका मतलब क्या है, 70 करोड़ लोगों की जिंदगी बदली, मल्टीप्लाई करिए आप। और वो पता है कितनी पॉपुलेशन है, आप अमेरिका की पॉपुलेशन लो, उसके साथ में जोड़ो आप ब्राजील की 21 करोड़, अमेरिका 33, ब्राजील 21, और फिर जोड़ो इंग्लैंड की पॉपुलेशन 6 करोड़। आप ये सोचिए कि 5, 6, 7 साल के अंतर अमेरिका, इंग्लैंड, ब्राजील उतने बड़े हाउस होल्ड में, उतनी बड़ी पॉपुलेशन को आपने पानी की, ये सर खास बात है जिस सरकार में, जो आप शुरू में बात करी ना कि अधूरे छूट जाते थे वो, तो इस स्केल पे ये काम हुआ है। और हेल्थ से जोड़ू अगर तो बिल्कुल क्लियर है कि साफ पानी आएगा, वाटर, सेफ वाटर एंड सैनिटेशन फंडामेंटल एसेट्स हैं पब्लिक हेल्थ के। पब्लिक हेल्थ शुरू ही वहां से होता है
2: जी,
0: सफाई हाइजीन पानी से ही शुरू होता है, पर्सनल हाइजीन से, इसी से शुरू होता है। तो उसमें 4 लाख बच्चों की डेथ, अगेन बच्चों पे प्रभाव ज्यादा पड़ता है, 4 लाख डेथ जो है वो 5 साल के दायरे में कम होंगी और हुई है। तो अगर हम इसको इस तरह से देखें तो ये जो बुनियादी बदलाव है, उस घर की दशा बदल गई और उस घर के बच्चों की दिशा बदल गई
2: जी,
0: और उस घर के में एक माहौल की दिशा बदल गई, ये दो मिशन को हम इस स्वरूप में भी सर देख सकते हैं।
2: मेरा ख्याल है हमारी परिचर्चा में अब स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करने का वक्त आ गया है। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू किया गया था, इसको शुरू करने के पीछे का कारण और उससे आने वाले बदलावों के बारे में अब मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी।
0: स्वच्छ हो भारत, गांव स्वच्छ हो, हमारा आसपास स्वच्छ हो, तो ये तो हमारे पूज्य गांधी जी का एक सपना रहा है, और उन्होंने देश को दशकों तक उस तरफ ले जाने का एक एग्जाम्पल पैदा किया। जैसे सर ने फिर कहा, सबने कोशिशें करी, कुछ कुछ कर पाए, कुछ कुछ अच्छा किया, कुछ कुछ नहीं कर पाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने के बाद इसमें एक टारगेट बांधा गया, टारगेट के साथ साथ एक स्ट्रेटेजी बनाई गई, फंड्स उपलब्ध किए गए, पॉलिटिकल कमिटमेंट जोड़ी गई, एक कंसेंसस बनाई गई, और सबसे बड़ी बात इसको एक जन आंदोलन बनाया गया। तो जन आंदोलन जब बना तो असली चेंज जो है तभी होती है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जबकि जन आंदोलन होता है
2: जी,
0: ठीक है, आइडिया बन जाता है, वो रिफॉर्म हो गया, फिर परफॉर्म करना शुरू किया कि चलो पाइपें बिछाओ, चलो ये टॉयलेट बनाओ, पानी लाइए, लेकिन जब जनता जुड़ती है उस, तो वो हर घर नल जल में भी जरूरी है, पानी की समितियां हैं, वो क्वालिटी एश्योरेंस देखती हैं, उन्होंने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो इतने स्केल पे इस तरह से जो काम हुआ है तो वो काम अकम्प्लिश हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ बजट दिया गया, पॉलिटिकल कमिटमेंट स्टेट ने भी दिखाई, राज्यों ने भी दिखाई, और उसको करने के लिए जो शैली बनी उसको एक हम बिल्कुल वो सिग्नेचर शैली की तरह मैं तो कहूंगा फॉर सोशली रेलेवेंट ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैव हैपेंड इन आवर कंट्री रिसेंटली।
2: और यदि मैं आपसे अगर पीएम उज्ज्वला योजना का जिक्र करूं तो इस योजना की ग्रास रूट लेवल पर बदलाव लाने में क्या भूमिका रही है, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और आवश्यक स्कीम रही है भारत सरकार की सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना की क्या भूमिका रही है ग्रास रूट लेवल के जो घर हैं उन तक बिजली पहुंचाने में।
1: जैसे डॉक्टर साहब ने स्वच्छता पे बात की, अभी आप कहाँ बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए ऑल इंडिया रेडियो में, राइट
2: जी,
1: पर आरबीआई सामने बिल्डिंग है रिजर्व बैंक की, इस पूरे इलाके में अभी से 7-8 साल पहले, हो सकता है कि थोड़ा और पहले, लेकिन रफली 7 साल पहले, आप एक भी टॉयलेट इस आसपास में नहीं था, एक भी नहीं था। जब मैं कह रहा हूं, अगर कहीं मेरी याददाश्त धोखा दे रही तो अलग बात है, पर कहीं एक भी टॉयलेट नहीं था। अभी इस विसिनिटी में आपको ढेर सारे टॉयलेट अप एंड रनिंग, बढ़िया अच्छी क्वालिटी के, अच्छे स्टेटस में वो मिल जाएगा आपको कोने पे, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के सामने, आरबीआई के कोने पे, और थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको उद्योग भवन के कोने पे, फिर आगे जाएंगे तो आपको नेशनल मीडिया सेंटर

0: सिलेंडर के कोने पे वगैरह वगैरह, ये अपने आप नहीं आया है। सरकार आपको टॉयलेट बना के दे सकती है, सरकार आपको घर से उठा के टॉयलेट तक नहीं ले जा सकती। देखिए कुछ चीजें
1: बिल्कुल
0: समझने की, हर बात के लिए हम सरकार को बोलें कि साहब आप ही जिम्मेदार हैं, ये सही तरीका नहीं है। ये रिजल्ट अच्छे आउटकम पे नहीं ले जाएगा। सरकार टॉयलेट बना के हमको दे सकती है, सरकार टॉयलेट में जबरदस्ती पकड़ के हमको नहीं ले जा सकती,
1: बिल्कुल
0: राइट। मेरा ये मानना है कि स्वच्छता में कम से कम आधा हिस्सा हमारा होगा। सरकार
1: बिल्कुल
0: के पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार हमारा हैबिट्स नहीं चेंज कर सकती, सरकार हमारा बिहेवियर नहीं चेंज कर सकती। सरकार को हमारे लिए एक टॉयलेट का प्रमोशन या जो भी स्वच्छता अभियान उसका प्रमोशन कर सकती है, लेकिन हमें उसमें शरीक नहीं करा सकती,
1: बिल्कुल
0: वो उसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है। दूसरा, जो आप पॉलिसी जिसकी बात आप करें, जैसे फर्ज करिए कि आपने शुरुआत की घर से, घर में स्केलेटन नहीं है, घर बनाया आपने, उसके बाद उसमें इंसान रह रहा है, उसमें घर में 24 घंटे में ज्यादातर टाइम जो है वहां पे महिलाएं देती हैं। इस बात को हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं जब घर की बात कर रहे होते हैं तो,
1: जी
0: कि उसमें पुरुष नहीं है, उसमें महिलाएं दिन भर काम कर रही हैं। उसके लिए सबसे पहले तो उसके लिए इतना बड़ा वो इंश्योरेंस है। आप किसी पुरुष से पूछिए कि घर पे कितनी खुशी है आपको, और महिला से पूछिए घर की कितनी खुशी है, आप बिल्कुल आसमान जमीन का फर्क पाएंगे
1: दो
0: दोनों
1: अलग अलग
0: का,
1: नजरिए होंगे
0: दोनों के
1: आप
0: रिस्पॉन्स में,
1: जी।
0: क्योंकि घर में दिन भर वो रहती है। उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है, उसके लिए दिल की बात है, इज्जत की बात है, गरिमा की बात है, डिग्निटी की बात है, रिकॉग्निशन की बात है। अब घर है तो घर में साहब बिजली है, आधा काम आपका खत्म। घर पे बिजली है, दूसरे और काम कर सकते हैं आप, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, बिजली के और भी 10 उपयोग है। मिक्सी कैसे चलाएगा,
1: वाईफाई
0: मिक्सी से
1: आजकल
0: चलाएगा, पहले आप लगे रहते थे सिलबट्टे पे
1: जी
0: आधा घंटा, आपका हेल्थ खराब भी हो तो भी आप मसाला भी पीस सकते हैं, पहले वो काम नहीं कर सकते थे, सिलबट्टा उठाने में ही बहुत मेहनत
1: जी
0: लगती थी। तो बिजली आ गई, पानी आ गया आपके पास, अब जिस स्कीम की बात आपने की है, जैसे बिजली की बात हम लोगों ने की, आपके पास पूरा रसोई का जो पूरा नक्शा है, पूरा मैप है, पूरा रसोई का जो लैंडस्केप है वो पूरा बदला हुआ है अब। और जब पूरा रसोई का लैंडस्केप बदला हुआ है तो ये पूरी, आपको अगर इकोनॉमिक समझना हो तो किसी के रसोई में घुस जाइए, आपको समझ में आ जाएगा, और कोई तरीका दूसरा नहीं हो सकता। रसोई में घुस जाइए और इन सब पे प्रकाश डालिए, आप पानी है, रसोई है, बिजली है, घर में बिजली है, तो आखिर में जो सबसे बात, वो डॉक्टर साहब इस पे प्रकाश डालेंगे, इनसे सवाल पूछिएगा जरूर तैयारी करके, कि बीमारी से सुरक्षा, महिलाएं जलावन लाने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती थी, जलावन अगर मान लीजिए सिला हुआ है, धुआं निकलेगा अभी आधा घंटा, तब जाके जलावन थोड़ा कड़क होगा, तब जाके वो जलेगा, तब तक वो स्ट्रगल कर रही होगी, बेटी को पीट रही होगी, बेटी पे चिल्ला रही होगी, झुंझला
1: जी
0: रही होगी, उसके बाद उसकी आंखें खराब होगी, अगर उसका लंग खराब है मैं तो उसका विशेषज्ञ हूं, मैं केवल आपको इंडिकेटिव बता सकता
1: जी
0: हूँ,
1: जी
0: फिर वो खांसते खांसते तैयार करेगी खाना, टाइम उसका जाएगा, उसका मेंटल पीस लूज होगा वगैरह वगैरह। उस सूरत में रसोई में अब उसके लिए कोई दिक्कत नहीं बची है, तो ये सामाजिक सुरक्षा से बढ़ के आप उसके देखियो बीमारी से उसकी सुरक्षा है। स्वच्छता अभियान में थोड़ी और सख्ती की जरूरत है, उसमें ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हम जैसे लोगों को करने की जरूरत है जो
1: आगे आकर
0: सामान्य जनता
1: पार्टिसिपेट
0: की
1: करने
0: कैटेगरी
1: की
0: में। जी,
1: जरूरत है।
0: तो ये फर्क दिख रहा है साथ में जमीन पे मेरे ख्याल से।
1: डॉक्टर पॉल, हमारी इस परिचर्चा में स्वास्थ्य का बार बार जिक्र होता है, स्वास्थ्य का बार बार मेंशन होता है, और स्वास्थ्य से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस स्कीम ने ग्रास रूट लेवल पर क्या चेंज इंट्रोड्यूस किया है, और आरोग्य मंदिर का इसमें क्या रोल रहा है?
2: आयुष्मान भारत में दो मेजर प्रोग्राम लॉन्च हुए थे 2018 में और फिर दो उसके बाद आए। पहले जो आपने बात कही वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दूसरा आपने मेंशन फिर किया आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो कि कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर है, उसको थोड़ा बाद में लाते हैं। हम पीएमजे की बात, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हम ये अटेम्प्ट कर रहे हैं कि जब अस्पताल में जाने की जरूरत पड़े, अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत पड़े, या सेकेंड उसको हम कहें और तरह से तो सेकेंडरी टर्शरी केयर में हमें एक्सेस करनी है केयर, दाखिल होकर इलाज होना है, इन पेशेंट इलाज होना है, आउट पेशेंट वाला प्राइमरी केयर में जाता है, तो वहाँ जो सुविधाएं हेल्थ केयर की मिले पहली बात एक्सेस हो, दूसरा है कि एक्सेस के साथ साथ मेरी जेब पे, मेरे अपने रिसोर्स पे, मेरी बचत पे बोझ ना पड़े,
1: जी
2: ये उसका मेन पर्पस है। अब सोचे कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2004 के एस्टिमेट या 2014 के एस्टिमेट हम लेते हैं, आपको हैरानी होगी कि तरह तरह के एस्टिमेट कहते थे कि हमारे देश में 4 करोड़ से 7 करोड़ लोग, 9 करोड़ लोग, डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं, बीमारी की वजह से जो गरीबी की रेखा उसके नीचे गिरते थे,
1: जी
2: इतने लोग, और वो किस तरह से इंडिविजुअल

0: पे जाइए कि वो वुमन अकेली है, उसके बच्चा बीमार है, राइट, कैंसर हो गया मान लीजिए, भयानक बीमारी, घर में कोई नहीं है, तो क्या होगा? या तो हम जाएंगे ही नहीं, बताइए कितनी दर्दनाक बात है वो, और
1: जी
0: गए तो घर बेच के जाएंगे, जमीन बेच के जाएंगे, गहना। तो ये सच्चाई है, सच्चाई रही है ये, कि हमें हेल्थ केयर का खर्चा इतना बोझ पड़ता रहा है, जितनी भी कोशिशें हुई उसके बावजूद भी इतना बोझ पड़ता था कि हमारे जेब से खर्च करके हम बर्बाद हो गए, इन पेशेंट केयर हम लेते थे। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने क्या किया कि 60 करोड़ लोगों के लिए, 15 करोड़ के ऊपर हाउस होल्ड्स को लेके ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि उनके लिए हर परिवार को हर साल 5 लाख का जो खर्चा है उसके बराबर जो हेल्थ केयर मिलनी है, उसके एवज में जो मिलनी है, वो 5 लाख का कवरेज हर फैमिली को, उन फैमिलीज को सुनिश्चित कर दिया गया है। तो एक परिवार को स्वास्थ्य के लिए, इन पेशेंट केयर के लिए 5 लाख का जो खर्चा है वो एंटाइटलमेंट की तरह उन बेनिफिशरीज को मिलेगा। अब ये बदलाव है और बहुत बड़ा बदलाव है, इसमें मैं सिक्योर होता हूं। और ये जब बीमारियां कवर हो रही है ना, उसमें कोई भी छूटी नहीं है। 1900 से ज्यादा प्रोसीजर्स, चाहे वो इंटेंसिव केयर है, चाहे क्रिटिकल केयर है, चाहे कैंसर केयर है, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट है, या चोट लग गई है उसका इलाज है, या नी रिप्लेसमेंट होना है वो है, या स्टेंट डलनी, ये सारे उसमें शामिल है। और किस व्यक्तियों के लिए, जो हमारे बॉटम के 40% लोग हैं, ये वो 15, इनको हम उस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, इन परिवारों को।
1: जी
0: तो इतना ये बदलाव है, उसकी वजह से लोगों के, एक तो उन्होंने जाना शुरू कर दिया, और अभी जो NSSO का साइकिल आया उसमें दिखाया गया है कि अब लोग छुपाते नहीं है, वो जाने शुरू हो गए। ये बिल्कुल कैशलेस है, आपको वहां पे एक पैसा ही नहीं देना है। और आप अगर इसको आंकड़ों में फिर एक बार कोशिश करो डालने की, तो हर रोज लगभग 90,000 से 1 लाख लोग, व्यक्ति हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है इस कार्यक्रम के अंदर आजकल। अभी तक 12 करोड़ व्यक्तियों को इसका फायदा हुआ है। और उसमें मैं कहना चाहूंगा, मेल फीमेल का प्रपोर्शन पवन जी एग्जैक्ट,
2: जी
0: जितने व्यक्ति मेल गए दाखिल हुए या जितने कार्ड मेल्स के बने, उतने ही फीमेल्स के बने हैं, उनकी एक्सेस बढ़ी है। और अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि जो लगभग 2 लाख करोड़ का जो खर्चा इस स्कीम ने उठाया है, वो बोझ अदरवाइज जनता के ऊपर था, इन 40% लोगों पे था, और अब जो है 70 और 70 से ऊपर के लिए एडिशनल, अब किसी भी तबके से हो उनके लिए भी 5 लाख का कवरेज उपलब्ध कर दिया गया है, चाहे अमीर गरीब कोई भी है, और उसके बियॉन्ड है ये, मतलब जो शुरुआत हुई थी उसके बियॉन्ड है, और उस 60 करोड़ नंबर के अंतर्गत है। लेकिन ये वो जो लोअर सोशो इकोनॉमिक वाले हैं, डिप्राइव्ड हैं, उनके लिए नहीं है, ये सबके लिए है। तो एक ये ऐसा कार्यक्रम है, और ऐसे ही एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ एक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है, जो कि आम जिंदगी को बहुत बेहतर करता है, और लाइफ बचती है और खर्चा बचता है।
1: और शायद पब्लिक हेल्थ पर जो तनाव रहा है इतने सालों से, शायद वो भी काफी कम हो जाएगा इन कदमों की वजह से, इन स्कीम्स की वजह से।
0: इन स्कीमों से, ये दोनों स्कीम अगर हम जोड़ें
1: जी
0: कि यहाँ तो सेकेंडरी टर्शरी अंदर, फिर प्राइमरी केयर वाली आयुष्मान आरोग्य मंदिर की हम स्कीम को जोड़ें, जिसमें कि एक नया, एक जो हमारा सब सेंटर लेवल है, 6,000 की पॉपुलेशन के लिए उनकी जो दवाइयाँ जो बढ़ गई हैं वहाँ पे, डायग्नोस्टिक टेस्ट बढ़ गए हैं, और इसी तरह से जो एक्स्ट्रा वहाँ पे व्यक्ति हमारे लिए उपलब्ध हो गया है, उन सब के वजह से हेल्थ केयर जो है वो लोगों के पास, क्या ये काम पूरा हो गया है? नहीं। क्या ये काम पूरा परफेक्ट करना है? हाँ। लेकिन इन सालों में व्यवस्था बन गई है, और इसको सक्सेस करना, जैसे पवन जी ने कहा, सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, जनता को भी जुड़ना है। वो इन सुविधाओं का फैसला लें, वहां जाके बोलें कि मेरा ब्लड प्रेशर चेक करिए, मेरा ब्रेस्ट कैंसर चेक करिए, मेरे 3 साल हो गए, या पिछली बार आपने देखा मेरा डायबिटीज मैंडेटेड है हर साल चेक होना, जाइए वहां पे, जाके लाइन में लगिए, आप भीड़ करो, उसका इस्तेमाल करिए,
1: जी
0: वहां टेलीमेडिसिन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दृष्टि से अगर हम देखें, तो एक्सेस बढ़ना एक फर्ज है उसमें, और एक्सेस हेल्थ का बढ़ने के साथ साथ

0: इसमें केवल ग्रुप बदला है निहारी का आप, मतलब बाकी चीजें तो सबके लिए है, ये केवल आदिवासी इलाकों में है जिसमें सरकार ने आइडेंटिफाई किया था मेरे ख्याल से 72 या 75 कुछ जनजातीय ग्रुप थे जिनके लिए ये लॉन्च किया था वो, इसलिए क्योंकि वो और उनकी स्थिति और थोड़ी ज्यादा विकट है। तो ये बहुत नया इस्टेब्लिश किया है, इस पॉलिसी को थोड़ा सा और आपको टाइम देना पड़ेगा असेस करने के लिए, लेकिन सरकार का इंटेंशन वही है, सरकार की ऑनेस्टी वही है, सरकार का ऑब्जेक्टिव वही है, केवल ग्रुप लोगों का डिफरेंट है। कुल मिला के इस पे बात करिए कि देखिए जन सेवा की कसौटी, जो सरकार काम करे, जो पब्लिक सर्विस सरकार कर रही है, उसका क्या पैमाना है? उसका पैमाना है कि आम आदमी की जिंदगी में ये कितना बदलाव आया। इसमें ये भी आम आदमी है,
1: जी
0: जो अभी तक जो बात डॉक्टर साहब कह रहे थे, जो बात हम कहते हैं, वो सब भी आम ही आदमी के लिए है, राइट। इसमें ग्रुप केवल चेंज हुआ पड़ा है, पर ये सब आम आदमी, वो पूरा भीड़ जो है वो आम आदमी का है। तो आम आदमी की जिंदगी में कितना बदलाव आया है, आपकी बातचीत का आज का जो है केंद्रीय तत्व तो ये है,
1: जी
0: और आम आदमी कि जिंदगी में कितना बदलाव आया है और महिलाओं की जिंदगी में कितना बदलाव आया है। मैं आपसे थोड़ी देर पहले ही बात कह रहा था कि जो सोसाइटी अपने 50% पॉपुलेशन को एक्सक्लूड कर दे, उसकी चिंता नहीं करे, उसको छोड़ दे अपने हाल पे, वो सोसाइटी कभी तरक्की नहीं कर सकती। इस सरकार ने आके वापस ये केंद्र में इस डिमांड को, इस अटेंशन को वापस लाया है कि इस देश में महिलाओं की स्थिति जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे, तब तक आप किसी अच्छे सोसाइटी की कल्पना नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल
0: कवरेज क्या है? नंबर एक देखिए, आपको पता चलेगा उसको कवरेज का, उसका यूसेज क्या है, कितना लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं मेजरमेंट और अल्टीमेटली टेस्ट करने की बात कर रहा हूं कि सरकार जब टेस्ट करेगी अब से 5 साल बाद तो क्या होगा, कवरेज कितना है, यूसेज कितना है, इसका आउटकम क्या रहा है, और अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कल को जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो कल को ये नहीं कहेंगे साहब कि मैं ओपन डिफेकेशन में जाऊंगा, वो पूछेंगे कि हमारे घर में टॉयलेट क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। उसको पता है कि साहब ये दिस इज द न्यू नॉर्मल, घर में टॉयलेट चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं इसको नापने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।
1: जी
0: इसीलिए बदलाव है, सरकार की सीरियस एफर्ट्स हैं, अलग अलग राज्य में उसके अलग अलग इंपैक्ट हो सकते हैं। मेरे ख्याल से आम आदमी की जिंदगी में ढेर सारे बदलाव हैं, पॉजिटिव हैं, मेरे ख्याल से इसमें और बेहतर हो सकता है, इससे कोई इनकार करेगा क्या है? कोई नहीं।
1: कोई नहीं,
0: बहुत
1: बहुत
0: अच्छे,
1: खूब।
0: बहुत
1: मेरा
0: अच्छे,
1: ख्याल है इसी विचार के साथ हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। और धन्यवाद आपका, आप दोनों हमारे
0: बहुत बहुत
1: साथ इस
0: शुक्रिया
1: एपिसोड में
0: आपका,
1: जुड़े और हमारे स्टूडियो आए। थैंक यू सो मच।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 22वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा हर घर बेहतर जीवन। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य वीके पॉल और वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित जनसेवा से देश सेवा का ये अगला श्रृंखला। आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए हिंदी फिल्मी गीतों का आनंद लेते हैं। सबसे पहले इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिल्म का, अलका याग्निक, सोनू निगम की आवाजों में, संगीतकार हैं जतिन ललित।

दोस्तों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं अकेले हम अकेले तुम फिल्म से ये बेहद खूबसूरत गीत अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाजों में।

दोस्तों, इसी गीत के साथ हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विभाग से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान

0: केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके साथ ही बेहतर कार्य प्रणालियों को साझा करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान तलाशने और सुशासन तथा सेवा वितरण में सुधार के लिए समयबद्ध कार्रवाई पर सहमति बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद के नए कर सुधारों का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधान हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा तय कर दी है। यह अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को इस कदम से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आने की संभावना है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना जारी है। इनमें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर, तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीटों के साथ असम की नगांव लोकसभा सीट भी शामिल है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कल विस्फोटक निष्क्रिय करते समय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 4 जवान घायल हो गए। एक रिपोर्ट।
2: सुकमा जिले के भेजी थाना क्षेत्र के एलआर मडगू कैंप के पास भोतराज पदर नाले के करीब एम्यूनेशन टेक्नीशियन टीम और सीआरपीएफ जवान बारूदी सुरंगों को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय करने की प्रक्रिया में लगे हुए थे। इसी दौरान एक विस्फोटक का अंश पास में आकर गिरकर फट गया। हादसे में 4 जवान घायल हो गए, इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जाती है। सभी घायल जवानों को हैदराबाद रेफर किया गया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: केरलम में भारतीय डाक विभाग बहादुरी का परिचय देने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर के सम्मान में एक विशेष समारोह आयोजित कर विशेष आवरण जारी करेगा। कैप्टन ने पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तल अवीब जा रही फ्लाई दुबई विमान में सवार 174 लोगों की जान बचाई थी। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में कल रात पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैच की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। उत्तराखंड में देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। राज्य के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi will participate in the valedictory session of Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi this evening. The two-day Departmental Summit, which began yesterday, is witnessing participation of political leadership and officials dealing with the women and child development sector from all states. It is the second in the series of Departmental Summits envisioned by the Prime Minister to strengthen cooperative federalism, foster collective ownership of national priorities and accelerate outcomes through closer center-state collaboration.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए संगीत की इस ऐसी महफिल के लिए जहां गाने हमारे पसंद से नहीं बल्कि आपकी फरमाइश से बजते हैं। जी हां, शुरू हो चुका है आपका अपना आपका प्यारा रेडियो ऑन डिमांड। दोस्तों, इस प्रोग्राम की सबसे खास बात यही है कि आपको आपकी आवाज हम तक पहुंचती है आपके टेक्स्ट मैसेज के जरिए। आपका एक छोटा सा मैसेज हमारे प्रोग्राम को और भी खास बना देता है। कभी किसी दोस्त के लिए गाना, कभी किसी अपने के नाम प्यार भरा पैगाम, तो कभी अपने पसंद की धुन के साथ पुरानी यादों को ताजा करना। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आइए लेते हैं आज का पहला मैसेज। और यह मैसेज हमें आया है डिस्ट्रिक्ट पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से हमारे रेगुलर लिसनर्स शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप। आप सभी का अरुण एफएम पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की पहली फरमाइश है 90s की एक यादगार फिल्म सरक के गाने रहने को घर नहीं की, जिसे अपनी आवाज दी है कुमार शानू और जुनैद अख्तर ने। नाम सुनते ही याद आ जाता है उस दौर का संगीत, फिल्म के जज्बात और वो गाने जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करते बल्कि जिंदगी के कुछ सच्चाइयों से भी रूबरू कराते हैं। तो गोप फैमिली जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, आज के रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं।

तो दोस्तों अब अगला मैसेज आया है असम से और ये प्यारी सी फरमाइश भेजी है हमारे लिस्नर सुनीता बसुमतारी ने। सुनीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुण FM 103.1 MHz के रेडियो ऑन डिमांड में। और दोस्तों आज सुनीता जी की पसंद एक बेहद रोमांटिक गाना प्यार तुझे है मुझसे, जिसे अपनी मधुर आवाज में गाया है हमारे चहेते उदित नारायण ने। और सुनीता जी इस खूबसूरत गाने को डेडिकेट किया है अपने प्यारे दोस्तों देवाशीष बाइकोन अमाल बिमल और रमेश, साथ ही लकी और हमारे सभी प्यारे आरजेस के नाम। सुनीता जी हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुनते हैं सुनीता जी के फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत को।

तो दोस्तों अब अगला मैसेज आया है लंकंग शाम करबे अंगलोंग असाम से और ये खूबसूरत फरमाइश भेजी है हमारे प्यारे लिस्नर टेंशन क्रो आतुर क्रो और सरलो क्रो ने। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है अरुण एफएम पर। और दोस्तों आज की इनकी फरमाइश है एक बेहद मेलोडियस और दिल को छू लेने वाला गीत हमराही मेरे हमराही फिल्म दो दिलों की दास्ता से, जिसे अपनी सुरीली आवाज दी है सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर ने। दोस्तों इस गाने के बोलों में ही एक खूबसूरती एहसास छुपा है, साथ चलने का, एक दूसरे का हमसफर बनने का और जिंदगी के सफर में हाथ थामे रहने का। तो लंकन काम से आए इस प्यारे फरमाइश के लिए टेंशन क्रो, आतुर क्रो, सरलो क्रो, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुनते हैं आप तीनों के फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत को।

0: दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। हम लौटेंगे अगला मैसेज के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।
1: अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम यानी कि ACWF अपना फर्स्ट एवर स्टेट लेवल सेमिनार आयोजित करने जा रहा है, जो होगा क्रिश्चियन रिवाइवल

0: Church, ESS Sector, Itanagar, near Government Higher Secondary School. Tarikh hai 16 October se 20 October 2026 tak. Is seminar ke resource persons honge Sri James Techi Tara, President Arunachal Christian Forum cum President NBCC, Evangelist Gumde Reba Songthing aur Advocate Nabam Rama, Guwahati High Court, Itanagar Bench. Arunachal Christian Women Forum, Arunachal Pradesh ke sabhi women heads of denominations, heads of district denominations aur women leaders ko is seminar mein sadar aamantrit karte hain. Yaad rakhe, jagah hai Christian Revival Church, ESS Sector, Itanagar, near Government Higher Secondary School. Tarikh hai 16th October se 20th October 2026 tak. Dhanyawad.
1: To dosto, ab agla message aaya hai Sariha Jan Karbi Anglong se. और ये खास फरमाइश भेजी है हमारे लिसनर जोगिंद्र रोंगपी, सोनाली इंतिफी और धर्मकिरी रोंगफी ने. आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है अरुण एफएम पर. दोस्तों, आज की इस फरमाइश की एक खास वजह है, आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के महान संगीतकार और गीतकार रविंद्र जैन जी को, जिनकी पुण्यतिथि पर उनके अमूल्य संगीत योगदान को दिल से नमन करते हैं. रविंद्र जैन जी ने अपने संगीत और गीतों से हिंदी फिल्म संगीत को कई ऐसे अनमोल नगमे दिए जो आज भी हमारे दिलों में बसे हुए हैं. उनकी धुनों में सादगी थी, मिठास थी और एक ऐसा अपनापन था जो सीधे दिल तक पहुंचता था. और आज जोगिंद्र रोंगपी, सोनाली इंतिफी और धर्मकिरी रोंगफी जी ने उन्हीं की याद में फरमाइश की है फिल्म राम तेरी गंगा मेले के सदाबहार गीत सुन साहिबा सुन, जिसे अपनी सुरीली आवाज दी है महान गायक की लता मंगेशकर ने.

तो दोस्तों अब अगला मैसेज आया है असम से और ये शानदार फरमाइश भेजी है हमारे लिसनर हितेंद्र दास जी ने। हितेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुण एफएम पर। और दोस्तों इस बार हितेंद्र जी की पसंद एक ऐसा गाना जिसकी धुन शुरू होते ही एनर्जी अपने आप बढ़ जाती है। जी हाँ, फरमाइश है फिल्म धूम 3 के धमाकेदार गाने मलंग की। दोस्तों जब बात हो एक्शन थ्रिल और शानदार बॉलीवुड म्यूजिक की तो धूम 3 का ये गाना अपना अलग ही अंदाज रखता है। तो हितेंद्र जी आपकी शानदार चॉइस को हम पूरे जोश के साथ शामिल करते हैं आज के रेडियो ऑन डिमांड पर।

तो दोस्तों अब अगला मैसेज आया है आसाम से ही और ये प्यारे से फरमाइश भेजी है हमारे लिसनर निशारानी पेगू ने। निशारानी जी आपकी बहुत बहुत स्वागत है रेडियो डिमांड पर। दोस्तों निशारानी जी की पसंद एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग सब तेरा फिल्म बागी से। दोस्तों कभी कभी दिल में किसी के लिए इतने सारे एहसास होते हैं कि उन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में एक प्यारा सा गाना ही दिल की बात कह देता है और सब तेरा भी उन्हीं खूबसूरत एहसासों से जुड़ा एक रोमांटिक गीत है।

तो दोस्तों, अब अगला मैसेज आया है असम से ही भेजने वाले हैं गीता जी ने। आपकी बहुत बहुत स्वागत है गीता जी अरुण एफएम पर। और गीता जी ने सॉन्ग फरमाइश की है द ब्रेकअप सॉन्ग फिल्म ए दिले मुश्किल से, और इसे आवाज दी है अरिजीत सिंह, बादशाह, जोनिता गांधी।

तो दोस्तों, अब अगला मैसेज आया है बीमारी असम से, और ये खूबसूरत मैसेज हमें भेजा है लक्की हेम्ब्रम जी ने। लक्की जी ने ये गाना डेडिकेट किया है मंशी, अविराम, मालोती, मार्शिला और अरुण एफएम के सभी प्यारे लिसनर्स को। तो लक्की जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने सम फरमाइश की है थाउजेंड द वंडर कार से दिल से जुदा गीत को सुनने का। तो लक्की जी, आपकी फरमाइश पर लीजिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

तो दोस्तों, आज का अगला और अंतिम मैसेज हमें आया है धरती की जन्नत कहे जाने वाले खूबसूरत कश्मीर के गुलमर्ग से। और हमारे लिसनर हैं रातर गुलजार जी। गुलजार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अरुण FM सुन रहे हैं। आपका ये प्यार और साथ हमारे लिए बेहद खास है, दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, रातर गुलजार जी की फरमाइश पर अब पेश है फिल्म सुर का बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला गीत कभी शाम दले। इस गाने की मधुर धुन और भावपूर्ण आवाज आपको प्यार, यादों और उन खास लम्हों की दुनिया में ले जाएगी जिन्हें दिल कभी भुला नहीं पाता।

तो दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आज का ये अंक आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम आज के पहली प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथी स्टूडियो तथा HPT में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पी दोले तथा तकनीकी अभियंता मार्दो जिरदो। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा अरुण FM 103.1 MHz पर, और आगे के सफर में आपके साथ होंगे RJ पूरा तुनिया जी। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। तब तक के लिए मुझे यानी अपने रेडियो साथी कारगर युवा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना में भाजपा उम्मीदवार आगे है। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर गिनती के दूसरे दौर के बाद ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक आनंद इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनगयम से 4000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा,

0: संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद के नए कर सुधारों का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री, सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। बातचीत मुख्य रूप से व्यापार, निवेश, डिजिटल फाइनेंस, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और कौशल विकास पर केंद्रित होगी। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को इस कदम से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आने की संभावना है। केरलम में भारतीय डाक विभाग बहादुरी का परिचय देने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार के सम्मान में एक विशेष समारोह आयोजित कर विशेष आवरण जारी करेगा। कैप्टन स्मिथ ने पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई विमान में सवार 174 लोगों की जान बचाई थी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने राष्ट्र के प्रति डाक की समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। श्री सिंधिया ने कहा कि डिजिटल संचार के इस युग में भारतीय डाक सेवा लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बदलाव का प्रयास कर रहा है। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाजी वाड़ी में कल रात पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरला, माही, दक्षिण आंध्र कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारिकाल और उत्तराखंड में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will participate in the valedictory session of the Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi this evening. The two-day event, which began yesterday, is witnessing the participation of political leadership and officials dealing with the women and child development sector from all states. It is the second in a series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen cooperative federalism, foster collective ownership of national priorities, and accelerate outcomes through closer centre-state collaboration. The counting of votes is underway for the by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal, and 1 Lok Sabha seat in Assam. The 5 assembly seats where polling was held on Tuesday are Madurantakam, Dharapuram in Tamil Nadu, Thattanchavadi in Puducherry and Rajinagar and Nandigram in West Bengal. The lone Lok Sabha seat that went to polls is Nagaon in Assam. After the second round of counting in the Thattanchavadi assembly constituency, All India NR Congress candidate Ashok Anand is leading by 4,558 votes over Indian National Congress candidate E. Vinayagam. Finance Minister Nirmala Sitharaman is on a three-day official visit to Singapore from today until the 11th of this month to strengthen bilateral economic ties and boost investment. During

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की दूसरी प्रसारण सभा में। अभी कुछ ही देर पहले पहली प्रसारण सभा में आप बने हुए थे RJ कारगर रूबा के साथ, उम्मीद करती हूँ RJ कारगर के साथ, और अब तक का सफर आपको बेहद पसंद आए होंगे। और अब आगे के सफर के लिए मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त RJ दुनिया। और साथ ही बता दूं दोस्तों, इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज

हमारे साथ है स्टूडियो तथा अचपित में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय और तकनीकी अभियंता एम विश्वजीत। तो दोस्तों, सफर वही है, बस आवाज बदल गई है और उम्मीद है कि आगे के ये पल भी आपके लिए उतने ही दिलचस्प और यादगार रहेंगे, क्योंकि इस दूसरी प्रसारण सभा में भी आपके लिए है संगीत, बातचीत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और मनोरंजन का सिलसिला। तो आप बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz के साथ, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। और दोस्तों, इस दूसरी प्रसारण सभा का पहला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे फिल्मी लहर। तो चलिए शुरू करते हैं फिल्मी लहर कार्यक्रम और सुनते हैं कुछ नए पुराने गीत जो आपके और हमारे दिल को खुश कर दे। और ऐसे ही एक खूबसूरत गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। पहला गाना आप सुन पाएंगे कुछ ना कहो फिल्म से अच्छी लगती हो, कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की आवाजों में।

0: इंडिजेनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश आयोजित कर रहा है रन फॉर आइडेंटिटी इस थीम के साथ एक मैराथन 11 अक्टूबर 2026 को। ये मैराथन न्योकुम निया ग्राउंड निर्जुली से आरंभ होकर न्योकुम लापांग ईटानगर तक होंगे, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के विजेताओं को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए और रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8837434121 पर।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: दोस्तों, छोटे से ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी लहर। तो आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं मिशन मजनू से रब्बा जानदा, जोबिन नोटियाल की मधुर आवाज में।

दोस्तों, इस खूबसूरत गीत के साथ ही फिल्म लहर कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब

0: दोस्तों आप सुन रहे थे पाश्चात्य संगीत पर आधारित वेस्टर्न मेलोडीज कार्यक्रम और एंजॉय कर रहे थे कुछ सूदिंग वेस्टर्न सॉन्ग्स। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 12 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल कर ली है। अशोक आनंद को 13,358 वोट मिले, जबकि उनके करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 4,876 वोट मिले। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे है, जबकि तमिलनाडु में सत्ताधारी मधुरांतकम में TVK और धारापुरम में ऑल इंडिया अन्ना DMK के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार आगे है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार तमिलनाडु विधानसभा के मधुरांतकम और दारापुरम उपचुनावों में सत्ताधारी TVK पार्टी दोनों सीटों पर आगे चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी इंश्योरेंस क्लेम पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। इन प्लेटफॉर्म में EDAR, वाहन सारथी और इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री सिंगापुर के राष्ट्रपति तरमन षणमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। बातचीत मुख्य रूप से व्यापार, निवेश, डिजिटल फाइनेंस, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और कौशल विकास पर केंद्रित होगी। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को इस कदम से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आने का अनुमान है। केरलम में भारतीय डाक विभाग बहादुरी का परिचय देने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्चार के सम्मान में एक विशेष समारोह आयोजित कर विशेष आवरण जारी करेगा। कैप्टन स्मिथ ने पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई विमान में सवार 174 लोगों की जान बचाई थी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने राष्ट्र के प्रति डाक की समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% से अधिक की तेजी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 787 अंक बढ़कर 72,381 पर, जबकि निफ्टी 254 अंक की बढ़त के साथ 22,486 पर था। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में कल रात पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, दक्षिण आंध्र कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारिकाल और उत्तराखंड में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi will participate in the valedictory session of the Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi this evening. The two-day event, which began yesterday, is witnessing the participation of political leadership and officials dealing with the women and child development sector from all states. It is the second in a series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen cooperative federalism, foster collective ownership of national priorities, and accelerate outcomes through closer center-state collaboration. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman today embarked on an official visit to Singapore. During the three-day visit, the finance minister will hold a series of high-level engagements with the leadership of Singapore, senior members of the business and investment community, and global institutional investors. During the visit, Ms. Sitharaman will call on President of Singapore Tharman Shanmugaratnam and Prime Minister of Singapore Lawrence Wong. She will also meet Deputy Prime Minister of Singapore Gan Kim Yong and Foreign Minister of Singapore Dr. Vivian Balakrishnan. Discussions will cover key areas of the India-Singapore Comprehensive Strategic Partnership and take forward the outcomes of the International Society for Molecular Recognition, including cooperation in trade and investment, digital financial connectivity, capital markets, taxation, semiconductors, advanced manufacturing, skilling and aviation. Counting of votes for the Thattanchavadi Assembly constituency by-election in Puducherry has been completed. All India NR Congress candidate Ashok Anand has secured a comfortable victory with a margin of 8,482 votes in the seat vacated by Puducherry Chief Minister N. Rangasamy. Ashok Anand secured 13,358 votes, while his nearest rival, Indian National Congress candidate E. Vinayakam, polled 4,876 votes. In Tamil Nadu Assembly by-elections at Madurantakam and Dharapuram, the ruling TVK has taken the lead in both the constituencies. The leading

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों अब वक्त है कार्यक्रम गजल का। जी हाँ दोस्तों, गजल जहां मोहब्बत की नरमी है, जुदाई का दर्द है, यादों की खुशबू है और जिंदगी को देखने का एक अलग ही नजरिया है। कभी एक शेर दिल की बात कह जाता है तो कभी एक गजल वो एहसास बयां कर देती है जिसे हम लफ्जों में कह नहीं पाते। तो आज के इस महफिल में आइए कुछ पल ठहरते हैं, सुकून से बैठते हैं और डूब जाते हैं गजलों की उस हसीन दुनिया में, जहां हर लफ्ज एक कहानी है और हर सुर एक एहसास है। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त RJ दुनिया। और दोस्तों अब वक्त है दिल से दिल तक पहुँचने का।

तो दोस्तों, इन खूबसूरत गजलों का लुत्फ़ उठाइए और पहला गजल सुनते हैं। छुपाए कैसे भला अपने प्यार दुनिया से, अनुराधा पौडवाल और चंदन दास की आवाजों में।

जहाँ दोस्तों आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी टनगर का और एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कुछ खूबसूरत गजलों का। तो चलिए अगला गजल सुनते हैं गुलाम अली की आवाज में। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है।

दोस्तों, गजलों के महफिल से आज बस इतना ही। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी टनगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब आप सुन पाएंगे हमारे फौजी भाई बहनों का दैनिक कार्यक्रम गीतमाला।

दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गीत माला कार्यक्रम में। ये खास कार्यक्रम समर्पित है उन वीर जवानों के नाम जो दिन रात हमारे सुरक्षा में तैनात रहते हैं, ताकि हम अपने घरों में सुकून से रह सके। वो सरहद पर खड़े हैं, तभी हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। उनका हौसला हमारी ताकत है, उनका बलिदान हमारा गर्व और तिरंगा के लिए उनका जज्बा हम सबके लिए प्रेरणा है। आज की सुरीला पेशकश उन वीर सैनिकों के नाम समर्पित है। तो आइए, देशभक्ति के जज्बे और संगीत की धुन के साथ शुरू करते हैं आज की गीतमाला सेगमेंट, हमारे देश के असली हीरोज के नाम।

इंडिजेनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश आयोजित कर रहा है रन फॉर आइडेंटिटी इस थीम के साथ एक मैराथन 11 अक्टूबर 2026 को। ये मैराथन न्योकुम निया ग्राउंड निर्जुली से आरंभ होकर न्योकुम लापांग ईटानगर तक होंगे।

दोस्त अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं गीत माला कार्यक्रम, जो सजाया गया है खास हमारे फौजी भाइयों और बहनों के नाम। तो चलिए गीत माला कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं, काफी राना फिल्म केदारनाथ का ये रोमांटिक सॉन्ग अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की मधुर आवाज में हमें ले जाता है मोहब्बत की एक ऐसी दुनिया में, जहाँ पहाड़ों की खूबसूरती है, हवाओं में सुकून है और दिल में प्यार का एक नया एहसास। तो आइए महसूस करते हैं इस प्यारे से नगमे को, काफी राना, सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: दोस्तों, कार्यक्रम का अंतिम गीत आपने सुना बेपराग की आवाज में तेरी मिट्टी केसरी फिल्म से। इसी के साथ ही गीतमाला कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी तनगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है बात दिल से दिल तक। और अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दिल्ली में दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर भारी यातायात की आशंका को देखते हुए लिया गया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
3: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
2: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है। यह निर्णय नई दिल्ली क्षेत्र में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात नियमों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया NR कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल कर ली है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 8,482 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे हैं। तमिलनाडु की मदुरांतकम और दारापुरम सीटों पर सत्तारूढ़ TVK के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत के दूर संचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को

चार हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी बीमा दावों पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट, EDAR, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 11 अक्टूबर तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और निवेश को बढ़ावा देना है। ब्रिटेन का प्रतिनिधिमंडल 12 से 16 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर रहेगा। इसमें उत्तरी इंग्लैंड के विभिन्न हिस्सों से करीब 200 प्रतिनिधि शामिल होंगे। ग्रेट नॉर्थ ट्रेड मिशन का उद्देश्य भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA के अंतर्गत व्यापार तथा निवेश के अवसर तलाशना है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय विदेश सेवा दिवस के अवसर पर विकसित भारत के संकल्प और देश तथा उसके नागरिकों की सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। घरेलू शेयर बाजार का संविदी सूचकांक आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 756 अंक बढ़कर 72,350 पर, जबकि निफ्टी 253 अंक बढ़कर 22,485 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, अब हमारा अगला कार्यक्रम सुन पाएंगे हिंदी क्लासिक म्यूजिक, जहां हम आपको सुनाते हैं 60s, 70s और 80s के कुछ यादगार गीतों को। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे गीत के साथ जिसमें मोहब्बत के साथ साथ जुदाई और त्याग का एहसास भी है। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे। फिल्म है दिल एक मंदिर। स्क्रीन पर मीना कुमारी के एक्सप्रेशंस और उनके हाथ में सितार ने इस गाने को और भी खूबसूरत बना दिया।

जी हाँ दोस्तों, अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं हिंदी क्लासिक म्यूजिक। और दोस्तों, अगर 60s, 70s और 80s के दशक की बात हो और इस दशक के रोमांस की बात हो और नाम ना आए चॉकलेट बॉय ऋषि कपूर का, तो कहानी थोड़ी अधूरी रह जाती है। कपूर खानदान के इस लाडले ने बचपन में ही स्क्रीन पर एंट्री ली थी फिल्म मेरा नाम जोकर में यंग रोल निभाया और उसके लिए नेशनल अवार्ड भी जीता, लेकिन असली धमाका हुआ 1973 में जब रिलीज हुई, वो भी ऑपोजिट डिंपल कपाड़िया। हम तुम एक कमरे में बंद हो बस फिर क्या था, ऋषि कपूर बन गए नई जनरेशन के हार्टथ्रॉब। स्वेटर्स, चार्मिंग स्माइल और रोमांटिक अंदाज उनकी स्टाइल ही अलग थी। 80s में उन्होंने एक से बढ़कर एक रोमांटिक हिट्स थी, कर्ज जिसका म्यूजिक आज भी कल्ट माना जाता है, चांदनी, प्रेम रोग और नगीना उनकी ऑन स्क्रीन पेयरिंग स्पेशली रोमांटिक सॉन्ग्स में आइकॉनिक मानी जाती थी। वो हीरो जो प्यार को इनोसेंस और चार्म के साथ दिखाता था। रोमांस का असली रंग, स्वेटर्स का असली स्वेग और कपूर लेगेसी का शाइनिंग स्टार, वो थे ऋषि कपूर। तो आइए उन्हीं को याद करते हुए सुनते हैं उन्हीं के फिल्म का

0: उम्र के नौजवानों जिसे गाया है किशोर कुमार ने और फिल्म है कर्ज।
1: तुमने कभी किसी से प्यार किया?
2: किया।
1: कभी किसी को

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: इंडिजेनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश आयोजित कर रहा है रन फॉर आइडेंटिटी इस थीम के साथ एक मैराथन 11 अक्टूबर 2026 को। ये मैराथन न्योकुम निया ग्राउंड निर्जुली से आरंभ होकर न्योकुम लापांग ईटानगर तक होंगे, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के विजेताओं को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए और रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8837434121 पर।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 MHz और आप सुन रहे हैं 60s, 70s और 80s के कुछ खूबसूरत नगमों को। दोस्तों हिंदी सिनेमा में कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्हें देखते ही एक पूरा दौर याद आ जाता है। खूबसूरती, ग्रेस, बेहतरीन एक्टिंग और क्लासिकल डांस का एक ऐसा संगम जिसने दर्शकों को दशकों तक अपने दीवाना बनाए रखा। बात कर रहे हैं बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की। हेमा मालिनी ने 1963 में तमिल फिल्म इधु सत्यम के साथ अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। हिंदी सिनेमा में उनकी पहचान बनी 1968 की फिल्म सपनों का सौदागर से, जिसमें वो राज कपूर के साथ नजर आए थे। लेकिन उनके करियर को एक नई ऊंचाई मिली 1970 में, जब उनकी फिल्म जोनी मेरा नाम रिलीज हुई। देवानंद के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया और हेमा मालिनी धीरे धीरे हिंदी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार होने लगी। और जब बात हो हेमा मालिनी की, तो धर्मेंद्र के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री का जिक्र कैसे ना हो। शोले, ड्रीम गर्ल और राजा जाने जैसी फिल्मों में दोनों की जोड़ी ने खूब धमाल मचाया। बाद में ये रियल लाइफ जोड़ी रियल लाइफ पार्टनर्स भी बनी और उनकी प्रेम कहानी हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित कहानियों में से एक बन गई। तो चलिए हेमा मालिनी की ऐसी खूबसूरत फिल्म सफर को याद करते हुए सुनते हैं उनकी एक यादगार फिल्म का नगमा ड्रीम गर्ल किशोर कुमार की आवाज में।
1: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।

बॉलीवुड में कई एक्टर्स आए, कई सितारों ने अपनी चमक बिखेरी, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो वक्त के साथ पुराने नहीं बल्कि और भी यादगार बन जाते हैं। ऐसे ये कलाकार थे देव आनंद, जिनकी या अदाएं उनका उनके बातें करने का अंदाज, गर्दन को थोड़ा तिरछा करके चलना और चेहरे पर हमेशा रहने वाली मुस्कुराहट उनकी पहचान बन गई। उन्हें प्यार से कहा जाता था एवरग्रीन सुपरस्टार। एक्टिंग का सपना लेकर वो मुंबई आए और 1946 में फिल्म हम एक है से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया 1948 में जब फिल्म जिद्दी रिलीज

इस फिल्म की सफलता ने उन्हें हिंदी सिनेमा में एक मजबूत पहचान दिलाई। फिर आया 1950 और 60 का वो दौर जब देव आनंद अपने रोमांटिक अंदाज और स्टाइलिश पर्सनैलिटी के लिए नौजवानों के फेवरेट बन गए थे। बाजी, टैक्सी ड्राइवर, ज्वेल थीफ और गाइड जैसे फिल्मों ने उनके करियर को नई ऊंचाई दी। खास तौर पर गाइड में उनका राजू का किरदार आज भी उनकी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंसेस में गिना जाता है। रोमांस से लेकर जिंदगी के गहरे सवालों तक इस फिल्म में देव आनंद ने अपनी एक्टिंग का एक अलग ही रूप दिखाया। तो आपको सुना रहे हैं गाइड फिल्म का गाता रहे मेरा मन।

0: दोस्तों इसी के साथ ही हिंदी क्लासिक म्यूजिक कार्यक्रम का ये अंक यही समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ कुछ पुराने गानों और पुराने यादों के साथ हमने आप सबका भरपूर मनोरंजन किए होंगे और आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर की अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों हम लौटेंगे ऐसे ही बेहतरीन गानों के साथ, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
2: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई, सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
1: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
2: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
1: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
2: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
1: इंडिजेनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश आयोजित कर रहा है रन फॉर आइडेंटिटी इस थीम के साथ एक मैराथन 11 अक्टूबर 2026 को। ये मैराथन न्योकुम निया ग्राउंड निर्जुली से आरंभ होकर न्योकुम लापांग ईटानगर तक होंगे, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के विजेताओं को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए और रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8837434121 पर।

तो चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम। और कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन पाएंगे धड़क तू फिल्म से प्रीत रे, दर्शन रावल, जोनिता गांधी और रोचक खौली की आवाजों में।

दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी फन सॉन्ग्स और आनंद ले रहे थे बैक टू बैक हिंदी सॉन्ग्स। और दोस्तों बता दो अब से थोड़ी ही देर बाद यानी ठीक 2 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित बारी बारी से मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार। आप सुनते रहे अरुण FM 103.1 MHz जहां होती है दिल से दिल की बात। हम लौटेंगे 2:30 पर कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s के साथ।

0: wins today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Delhi police declines permission for protest at Jantar Mantar tomorrow. 57 metro stations in Delhi may remain closed from 9 p.m. today till tomorrow. All mail and express trains scheduled to arrive at New Delhi and Hazrat Nizamuddin railway stations between 4 a.m. and 2 p.m. tomorrow stand cancelled at source stations. Prime Minister Narendra Modi to participate in valedictory session of Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi this evening. All India NR Congress wins the Tarn Chavadi Assembly constituency in Puducherry, counting on 4 Assembly seats and 1 Lok Sabha seat underway. Ministry of External Affairs clarifies US suspension of firm applications does not affect H-1B visas. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। विदेश मंत्रालय ने कहा अमेरिका के पीईआरएम आवेदनों पर लगाए गए प्रतिबंध से मौजूदा H-1B वीजा की वैधता प्रभावित नहीं होगी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
2: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
1: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने चेतावनी दी है कि कानून का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर आज रात 9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने का प्रस्ताव दिया है। पुलिस ने इस संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजा है। पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में संवेदनशील स्थानों की ओर भीड़ के अनियंत्रित रूप से बढ़ने की आशंका व्यक्त करते हुए मेट्रो ट्रेनों की संख्या और फेरों को कम करने का भी अनुरोध किया है। जिन मेट्रो स्टेशनों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव है उनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये प्रतिबंध आज से लागू करने का प्रस्ताव है और स्थिति सामान्य होने तक कल तक जारी रह सकते हैं। रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर यातायात की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। इस बीच विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान मध्य दिल्ली में यातायात प्रतिबंधों के चलते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़कें बंद होने से कल करीब 5,000 यात्री स्टेशन तक नहीं

0: पहुंच सके। प्रभावित यात्रियों में आईआईटी जोधपुर के 56 छात्र भी शामिल थे, जो शाम 4 बजे रवाना होने वाली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस नहीं ले सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कनॉट प्लेस के एक रेस्तरां में आयोजित दोपहर के भोज के बाद विपक्षी सांसद और कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए राजघाट पर एकत्र हुए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत के दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। उन्होंने बताया कि 1 GB डेटा की कीमत 268 रूपये से घटकर 8 रूपये से भी कम रह गई है।
3: 550 मिलियन यूजर्स। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। इसके बाद भारत पूरी तरह 5G तकनीक पर आधारित नेटवर्क की ओर बढ़ेगा। ये तकनीक 6G की शुरुआत का रास्ता तैयार करेगी। 6G के लिए भारत पहली बार वैश्विक स्तर पर तकनीकी मानक तय करने की प्रक्रिया में शामिल होगा। इंडिया हैज अराइव्ड ऑन द स्टैंडर्ड
0: सेटिंग टेबल। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज सूरत में वस्त्र उद्योग से जुड़े उद्यमियों के साथ बैठक की। इस दौरान स्थानीय उद्योगपतियों ने उन्हें विभिन्न मांगों और सुझावों से जुड़े ज्ञापन सौंपे। श्री सिंह ने देश के प्रमुख विस्कोस वितरकों और बाजार विकास से जुड़ी कंपनियों के निदेशकों से भी मुलाकात की। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल की है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 8,482 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे हैं। तमिलनाडु के वदुरांतकम और दारापुरम सीटों पर सत्तारूढ़ टीवीके के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी बीमा दावों पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। एक रिपोर्ट।
4: इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट, EDAR, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल हैं। इनके जोड़ने से दुर्घटना की रिपोर्ट, गाड़ी और बीमा के रिकॉर्ड और पहले के दावों के बारे में जानकारी को आसानी से साझा किया जा सकेगा। इसमें हिट एंड रन के मामले और प्रधानमंत्री राहत योजना भी शामिल होगी। न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे बिना देरी किए EDAR पोर्टल पर जरूरी डेटा अपलोड करें, क्योंकि अभी तक कुछ ही राज्यों ने ऐसा करना शुरू किया है। न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कुछ बीमा कंपनियों के प्रमुखों को न्यायालय के पिछले निर्देशों का पालन न करने के लिए अवमानना का नोटिस भी जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: सरकार ने डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं के विज्ञापनों पर नियंत्रण करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत अनुसूचित एच, HH1 और अनुसूचित X में शामिल दवाओं के विज्ञापन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व

0: अनुमति लेने की मौजूदा अनिवार्यता को दवाओं की बिक्री और वितरण का लाइसेंस रखने वाली संस्थाओं पर भी लागू करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करने तथा उन्हें समान अवसर देने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की थी। पिछले एक दशक में यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
1: भारत में लंबे समय तक कन्या भ्रूण हत्या, लिंग आधारित भेदभाव और बेटियों की शिक्षा में असमानता जैसी गंभीर सामाजिक चुनौतियां रही है। इनसे निपटने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया। इसका मूल मकसद केवल बेटी को बचाना नहीं बल्कि उसके जीवन, सुरक्षा, शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करना है। इसके तहत लिंग आधारित भ्रूण हत्या की रोकथाम, लिंगानुपात में सुधार, बेटियों के स्कूल में नामांकन और माध्यमिक स्तर और आगे की पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहित करना, सुरक्षित मातृत्व तथा मासिक धर्म, स्वच्छता के प्रति जागरूकता जैसे विषयों पर काम करना है। योजना में सरकार, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य कर्मी, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाओं और समुदाय को साथ लेकर व्यवहार एवं सामाजिक सोच में बदलाव पर जोर दिया जा रहा है। पिछले एक दशक में इस योजना से बेटियों के प्रति आम लोगों की सोच और उनके शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार देखने को मिला है। देश में जन्म के समय प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 2014-15 में 918 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 929 हो गई। वहीं माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 75.51% से बढ़कर 80.2% तक पहुंच गया है। संस्थागत प्रसव भी 61 से बढ़कर 98% से अधिक हो गया है। इस योजना में जन्म के समय लिंगानुपात 929 से बढ़कर बीते एक दशक में 941 हो गया है। राज्य में बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाकर समाज में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि बेटी बोझ नहीं बल्कि परिवार और समाज की ताकत है। 10 साल पहले शुरू हुआ यह अभियान आज केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि बेटियों के सम्मान और समान अवसर का सामाजिक संदेश बन चुका है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने दोहराया कि डाक सेवा जन सेवा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा कुछ कंपनियों के स्थायी श्रम प्रमाणन PERM कार्यक्रम पर लगाई गई रोक H-1B वीजा कार्यक्रम से पूरी तरह अलग है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि PERM आवेदनों पर रोक लगाने से मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि इससे प्रभावित कंपनियों के पात्र कर्मचारियों को ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया पर कुछ असर पड़ सकता है। इस मामले में अमेरिका के उपराष्ट्रपति की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी अनुचित है। भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार को इसराइल के सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने घोषणा की कि कैप्टन मच्छार के स्वस्थ होने के बाद उन्हें नागरिक वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1.2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 878 अंक बढ़कर 72,471 पर, जबकि निफ्टी 282 अंक के उछाल के साथ 22,514 पर था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल तक तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। दक्षिण आंध्र कर्नाटका और उत्तराखंड में भी आज ऐसी स्थिति रह सकती है। इस बीच

0: कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टांचावडी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दोस्तों, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

दस्तारण एफ एम 3.1 मेगाहर्ट्ज पर अब वक्त है कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s का। जी दोस्तों, 90s सिर्फ एक डेकेड नहीं था बल्कि एक इमोशन था, एक ऐसी वाइब जो हर मेमोरी के साथ जुड़ी हुई है। पहला प्यार हो, दिल टूटने का दर्द हो या शादी में कजिन्स के साथ डांस, हर मोमेंट का एक स्पेशल 90s सॉन्ग जरूर हुआ करते थे और शायद इसीलिए 90s के गाने आज भी दिल के इतने करीब है। सिंपल मेलोडीज, हार्ट पेड लिरिक्स और वो इमोशंस जो सीधा दिल को छू जाते हैं। तो चलिए ऐसे ही खूबसूरत गीत के साथ आज का हिट ऑफ 90s कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला गाना आप सुन पाएंगे करण अर्जुन फिल्म से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में।

0: इंडिजेनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश आयोजित कर रहा है रन फॉर आइडेंटिटी इस थीम के साथ एक मैराथन 11 अक्टूबर 2026 को। ये मैराथन न्योकुम निया ग्राउंड निर्जुली से आरंभ होकर न्योकुम लापांग ईटानगर तक होंगे, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के विजेताओं को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए और रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8837434121 पर।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा।

0: का, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों 90s के गानों की बात हो और पहला प्यार, मासूमियत और वो खूबसूरत कॉलेज रोमांस याद ना आए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, है ना। 1991 में रिलीज हुई फिल्म सौदागर का गाना इलू इलू उस दौर के यूथ के बीच काफी पॉपुलर हुआ था। मनीषा कोयराला और विवेक मुसरन पर फिल्माया गया ये गाना अपने खिंची ट्यून और यूथफुल रोमांस के लिए आज भी याद किया जाता है। और गाने का टाइटल भी कितना इंटरेस्टिंग है ना, इलू इलू, यानी प्यार का इजहार करने के लिए एक क्यूट सा अंदाज। तो जानने के लिए कि इलू इलू आखिर क्या है, इसका मतलब क्या है, आप भी सुनिए ये गाना।

0: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
0: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
1: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
0: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
1: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी टनगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां बात होती है दिल से दिल तक। और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s। तो दोस्तों आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, हम साथ साथ हैं फिल्म से। मैया यशोदा, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ताई खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। आप बने हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आपके साथ में हूं आपकी रेडियो दोस्त RJ दुनिया। दोस्तों, अब वक्त है कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का।

तो चलिए दोस्तों, बॉलीवुड अपडेट के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और नाना पाटेकर के निधन के बाद फिल्म इंडस्ट्री से उनके लिए श्रद्धांजलियों का सिलसिला जारी है। अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति 18 पर उन्हें याद करते हुए उनकी कला को सलाम किया। वहीं शाहरुख खान ने भी नाना पाटेकर के साथ अपनी पुरानी मुलाकात और उनसे मिली एक खास सलाह को याद किया। शाहरुख खान ने बताया कि नाना पाटेकर ने उन्हें समझाया था कि सिर्फ हीरो बनने के चक्कर में एक्टर को नहीं खोना चाहिए। एक छोटी सी बात, लेकिन इसमें एक्टिंग और सिनेमा को लेकर गहरी सोच छुपी हुई है। और दोस्तों, नाना पाटेकर की जिंदगी का सफर भी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने फिल्म पोस्टर्स पेंट करके पैसे कमाए और काम के लिए लंबी दूरी तक पैदल चले। आगे चलकर उन्होंने अपनी मेहनत और जबरदस्त एक्टिंग के दम पर हिंदी सिनेमा में एक खास जगह बनाई। उनकी एक्टिंग की सबसे खास बात ये थी कि डायलॉग बोलने के तरीके, आंखों का एक्सप्रेशंस और वो तीखा लहजा जो उनके किरदार को यादगार बना देता है। और अब बात करते हैं आमिर खान की, जो अपने नए सॉल्ट एंड पेपर लुक को लेकर चर्चा में है। 61 ईयर्स के आमिर खान ने हाल ही में एक इवेंट के दौरान बताया कि उन्होंने अब बालों को डाई करना बंद कर दिया है। उनका कहना था कि अब वो अपने नेचुरल लुक के साथ कंफर्टेबल है। बॉलीवुड में जहां स्टार्स अपने लुक्स को लेकर काफी एक्सपेरिमेंट करते हैं, वही आमिर खान का यह फैसला नेचुरल एजिंग और अपनी असली पर्सनैलिटी को अपनाने की तरफ एक दिलचस्प कदम मानी जा रही है। और दोस्तों, अगर आप सेलिब्रिटी कन्वर्सेशंस और उनके बेबाक जवाबों का फैन हैं, तो आपके लिए एक अच्छी अपडेट है। करण जौहर ने कंफर्म कर दिया है कि कॉफी विद करण का सीजन 9 इस शो का आखिरी सीजन होगा। 2004 में शुरू हुआ ये सेलिब्रिटी चैट शो अपने कैंडिड सवालों, रैपिड फायर राउंड्स और स्टार्स के पर्सनल रिवलेशंस के लिए जाना जाता था। नए सीजन के प्रीमियर 14 अक्टूबर को होगा। अब देखना होगा कि इस आखिरी सीजन में कौन कौन से सेलिब्रिटीज काउच पर बैठकर अपनी जिंदगी के कुछ दिलचस्प राज खोलते हैं।

दोस्तों बॉलीवुड में इन दिनों सीक्वल, सस्पेंस और बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स की खूब चर्चा है, तो चलिए नजर डालते हैं एक ऐसे फिल्म पर जो इस वक्त सिनेमा लवर्स के बीच काफी हेडलाइंस में बनी हुई है। बात करते हैं अजय देवगन की फिल्म दृश्यम द कंक्लूजन की, जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अजय देवगन और ताबू के इस सस्पेंस थ्रिलर ने अपने पहले हफ्ते में इंडिया में लगभग 240 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी 4000 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच चुकी है। दृश्यम फ्रेंचाइज की सबसे बड़ी खासियत रही है इसका सस्पेंस, जहां हर छोटी डिटेल कहानी में एक नया मोड़ ला सकती है। विजय सालगांवकर के किरदार एक बार फिर दर्शकों को अपनी फैमिली को बचाने के लिए की गई उसकी कोशिशों की दुनिया में ले जाता है। अब देखना होगा कि फिल्म आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कितना आगे बढ़ पाती है।

फिलहाल इतना ही। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत धड़क दो फिल्म से बस एक धड़क, श्रेया घोषाल और जुबिन नौटियाल की आवाजों में।

दिलदोस्ती के साथ ही बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम का ये अंक यही समाप्त होते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे वांचो श्रोताओं का समाचार।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का समाचार। वांचो श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मृदु मुहिब 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और DRM 666 किलोहर्ट्ज पर, या फिर आप न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए भी हमारे आकाशवाणी ईटानगर के RUN FM और मृदु मुहिब के सारे कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का RUN FM 103.1 MHz पर, जहां होती है बात दिल से दिल तक। दोस्तों कहते हैं कि हर शाम अपने साथ एक नई कहानी लेकर आती है। कुछ कहानियां मुस्कुराहट बन जाती है, कुछ यादें बनकर दिल में रह जाती है और कुछ खूबसूरत गानों में बस जाती है। तो चलिए आज इस धरती शाम को थोड़ा और खूबसूरत बनाते हैं कुछ प्यार भरे नगमों के साथ, और शुरू करते हैं कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। और कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन पाएंगे लब आजकल फिल्म से दूरियां, मोहित चौहान की आवाज में।

0: इस खूबसूरत गीत के साथ ही दोस्तों हिंदीफम सॉन्ग्स कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 4 बजे आप सुन पाएंगे ईद मिशमी श्रोताओं का समाचार। समाचार के उस पार मिलेंगे और भी कुछ बेहतरीन गानों के साथ। फिलहाल आप सुनिए ईद मिशमी भाषा में समाचार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वांछित श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है और अब आप सुन पाएंगे ईद मिशमी श्रोताओं का कार्यक्रम।
2: ऐचा आकाशवाणी ईटानगर माचेला पुची हिखिनी मिट्टु बेलिनी एतनिसी ईद मिशमी आहोला किची दरगालंबो टेक्स पाऊं गावे आचू आज अपन बोगा ना बचा है प्रभुदा ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में लगाने अली आज अपन बोगा ना मने टेक्स पाऊं गावे मा पे आरे और शादा लगादा आहोगा जीएसटी टेक्स मने आमे पे एरोवे आई दो ने अतिकाची इमु आरोवे उताची ने टेक्स पाऊं गावे आचू आज अपन बोगा ना बदा ने प्राइम मिनिस्टर में लगादा आहोगा माऊ ताहो एक लिखिमा खादा ईस्यांग डिस्ट्रिक्ट पासीघाट अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी माचे आहिमो है अच्छा बाय अरुण दगा दान है यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू में बुनी आ यूनिवर्सिटी में वंदे मातरम एट माओ मंगाहो अमुमा ने प्रोग्राम अखागा माचे से अब माहो लगाने आ यूनिवर्सिटी के बने इलिखी इचिब लाते चावे अरुण दगा बुदा लाए बदा आहोगा

0: ama asaga gai go abo engo ya bu ijiga athu chito ga he wa HIV hembe yiji mi kaba asaga ala jiji sama ko agu tene athu suji icha HIV hembe chipu ma ichibu asawda woga ibuya he national AIDS helpline chi number kage 0 khini uma call eji icha ko ba he Arunachal Pradesh State AIDS Control Society Department of Health Services Nahalagan Machime Lahega.
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे इदुमिश्मी श्रोताओं का समाचार. दोस्तों आप सबको एक बार फिर से बता दूं, अगर आप इदुमिश्मी श्रोताओं के आगे के कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं तो आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर का मीडियम में 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और DRM 666 किलोहर्ट्ज पर. इस वक्त दोस्तों आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है बात दिल से दिल तक.

0: संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

दोस्तों चलिए बेहतरीन हिंदी फिल्म में गानों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हैं और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गीत के साथ। ओम शांति ओम फिल्म से मैं अगर कहूँ सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में।

इंडिजेनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश आयोजित कर रहा है रन फॉर आइडेंटिटी इस थीम के साथ एक मैराथन 11 अक्टूबर 2026 को। ये मैराथन न्योकुम निया ग्राउंड निर्जुली से आरंभ होकर न्योकुम लापांग ईटानगर तक होंगे, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के विजेताओं को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए और रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8837434121 पर।

दोस्तों, इस खूबसूरत गीत के साथ ही हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी टनगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 4:20 पर आप सुन पाएंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार। साथ ही बता दो दोस्तों, इसी के साथ ही हम आज की दूसरी प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद करती हूँ इस सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रम आपको रोजाना की तरह बेहद पसंद आए होंगे। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचाने में आज हमारे साथ थे स्टूडियो तथा अजमेर में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय और तकनीकी अभियंता M. विश्वजीत। और इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा अरुण FM 103.1 MHz पर आज की तीसरी प्रसारण सभा में। और तीसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाएंगे आपकी अपनी RJ सुलोकना। तो दोस्तों, अब मुझे यानी आपकी रेडियो दोस्त RJ दुनिया को दीजिए इजाजत और आप बने रहे अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: nang captain Shreyas Iyer ro century bokro India ro cheitungo fan de rungrang itana thumro
1: machau namlo HIV rak kamungnang areng rungrang ta chen HIV rak asa kamungnang ahma tagro jua dai maipa akawong jangro maiyum hanwang HIV rak manai maijam ma tongu rau kaumara parma HIV rakun mai bochim aking strings kaum rak po reling renang ma arau maiyum hanwang rak po nausa hanata reling rakchi parma taipo jachie po maijam ma tongang rau nai jap lalu rau ra rakui pam rau nai adam ma faksa rau HIV rak po reling mu parma sudong lo kawroman po HIV rak po reling mu HIV rak po homoinang karai rau re kuthang ma acha tongbai rakchi arau HIV rak ma hadrang jamu arau doktor ma karai rang rar rasan pan rang jamu parma ere rak kam nang nari ma taghai ma national helpline number 1097 nang phone rang rar Iraman po singmung wang may ma ahu rangtaan mong warau Arunachal Pradesh State AIDS Control Society ra guda.
2: श्रोता दोस्तों अभी आप सुन रहे थे तांगसा श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से। इस कार्यक्रम को आगे पूरा सुनने के लिए आप अभी ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडिया वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

हर शाम सिर्फ दिन का अंत नहीं होती, कभी कभी नए हौसलों की शुरुआत भी होती है। नमस्कार डियर लिसनर्स, इन्हीं नए एहसासों और ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप सभी का आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम में तहे दिल से स्वागत है। इससे पहले यानी कि दूसरी प्रसारण सभा में आप सुन रहे थे आरजे दुनिया को, और अब से लेकर रात्रि के 9:30 तक मैं यही बनी रहूंगी आपके साथ, आपके मेरे दोस्त सुलोकना।

दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इस तीसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे हैं तमाम एफएम ट्रांसमीटर के सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गए रहते तथा तकनीकी अभियंता होलीराम ब्रह्मा।

तो चलिए इस तीसरी प्रसारण सभा का शुभारंभ करते हैं ज्ञान और मनोरंजन के सेगमेंट गुड इवनिंग ईटानगर के साथ अब से कुछ ही क्षणों में।

0: इंडिजेनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश आयोजित कर रहा है रन फॉर आइडेंटिटी इस थीम के साथ एक मैराथन 11 अक्टूबर 2026 को। ये मैराथन न्योकुम निया ग्राउंड निर्जुली से आरंभ होकर न्योकुम लापांग ईटानगर तक होंगे, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के विजेताओं को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए और रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8837434121 पर।
1: गुड इवनिंग ईटानगर।

जिंदगी हो या शाम ढलती जरूर है, उम्मीद हो या सूरज उगता जरूर है। आप सभी का कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे थे तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू तुझ में। आशीष कौर की आवाज में फिल्म शादी में जरूर आना से। तो दोस्तों कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी बहुत गहरा संदेश और साथ ही आपके लिए महत्वपूर्ण हो।

एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, पास ही एक छोटी सी नदी है, वहां से पीने के लिए थोड़ा सा पानी ले आओ। शिष्य जब नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि ठीक उसी समय कुछ बैलगाड़ियां नदी पार कर रही थी। उनके पहियों की वजह से नदी की तलछट की मिट्टी ऊपर आ गई थी और पूरा पानी मटमैला व गंदा हो गया था। शिष्य खाली हाथ लौट आया और उसने भगवान बुद्ध से कहा, प्रभु, पानी बहुत गंदा है, पीने लायक नहीं है। ये सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और शांत होकर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। लगभग आधे घंटे बाद बुद्ध ने उसी शिष्य से दोबारा जाकर पानी लाने को कहा। शिष्य जब दोबारा नदी किनारे पहुंचा तो वो हैरान रह गया। सारा कचरा और मिट्टी नीचे बैठ चुकी थी और ऊपर का पानी शीशे की तरह साफ और निर्मल बह रहा था। और अब वो शिष्य बहता हुआ साफ पानी भरकर बुद्ध के पास ले आया। बुद्ध ने पानी पिया और शिष्य की ओर देखकर प्यार से बोले, तुमने देखा, तुमने पानी को साफ करने के लिए कुछ नहीं किया, तुमने सिर्फ थोड़ा इंतजार किया और मिट्टी अपने आप नीचे बैठ गई।

तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी, लेकिन ये कहानी हमें ये भी बताती है कि हमारा मन भी ठीक उस नदी के पानी जैसा ही है। जब दिन भर के तनाव, काम के बोझ या किसी बात से मन बेचैन हो जाए, तो उस पर जबरदस्ती दबाव मत डालिए। थोड़ा सा ठहर जाइए, धैर्य रखिए। जैसे जैसे वक्त बीतता है, चिंता की वो मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाती है और मन का पानी फिर से साफ और शांत हो जाता है।

0: तो दोस्तों, कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में आज के लिए बस इतना ही। 4:45 होते ही आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, अंग्रेजी में समाचार और उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे नौकरी श्रोताओं का समाचार। हम फिर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव शाम के 5:05 से। बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर। अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम यानी कि ACWF अपना फर्स्ट एवर स्टेट लेवल सेमिनार आयोजित करने जा रहा है, जो होगा क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। इस सेमिनार के रिसोर्स पर्सन होंगे श्री जेम्स टेची तारा, प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कम प्रेसिडेंट NBCC, एवांजेलिस्ट गुम्बे रिबा सोंगथिंग और एडवोकेट नाबम रामा गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर बेंच। अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम अरुणाचल प्रदेश के सभी विमेन हेड्स ऑफ डिनोमिनेशंस, हेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिनोमिनेशंस और विमेन लीडर्स को इस सेमिनार में सादर आमंत्रित करते हैं। याद रखें, जगह है क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। धन्यवाद।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत मुजाउद्दीन रेलवे स्टेशन पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिला स्थित गोल्डन पगोड़ा में आगामी 14 से 20 नवम्बर तक आयोजित होने वाले भगवान बौद्ध के पवित्र अवशेषों के प्रदर्शनी की तैयारियों के

0: की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंडिमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा है कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमानित और अनुमति देने से इनकार करने का फैसला लिया गया था। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने चेतावनी दी है कि कानून का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर 8 रात 9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने का प्रस्ताव रखा है। दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC के प्रबंधक निदेशक को पत्र भेजा। पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में संवेदनशील स्थानों की ओर भीड़ और अनियंत्रित रूप से बढ़ने की आशंका व्यक्त करते हुए मेट्रो ट्रेनों की संख्या और फेरों को कम करने का भी अनुरोध किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ये प्रतिबंध आज से लागू करने का प्रस्ताव है और स्थिति सामान्य होने तक कल तक जारी रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्य और राजनीतिक नेतृत्व एवं महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिला स्थित गोल्डन पगोरा में आगामी 14 से 20 नवंबर तक आयोजित होने वाले भगवान बुद्ध की पवित्र अवशेषों के प्रदर्शनी की तैयारियों के सिलसिले में हाल ही में एक बैठक आयोजित की गई। इनमें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC और नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय की अग्रिम सुरक्षा समन्वय टीम ASL द्वारा भाग लिया गया। बैठक में कला एवं संस्कृति विभाग के सचिव ममता रूपा, IBC के निदेशक यश सक्सेना, राष्ट्रीय संग्रहालय के अधिकारियों तथा नामसाई जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान आगामी आयोजन को सुचारू, सुरक्षित और गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न करने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इनमें सुरक्षा व्यवस्था, निर्धारित प्रोटोकॉल, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय, आगंतुकों का प्रबंधन, रसद एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं तथा आयोजन की समग्र तैयारियां शामिल रही। ASL टीम ने जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत भी की। इस दौरान गोल्डन पगोडा में आयोजित होने वाले इस पवित्र कार्यक्रम की तैयारियों का आकलन किया गया और आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए आवश्यक समन्वय व्यवस्था की समीक्षा भी की गई। केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि पासीघाट स्थित अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षण और सीखने के लिए आधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए तथा विश्वविद्यालय के मौजूदा 106 एकड़ परिसर का विस्तार भी किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आयोजित वंदे मातरम एट 150 के भव्य समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय को विकास के लिए पर्याप्त स्थान की आवश्यकता होती है। उन्होंने विश्वविद्यालय के विकास के लिए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। वंदे मातरम के महत्व पर बोलते हुए श्री रिजिजू ने कहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देश में देशभक्ति की भावना जगाने में राष्ट्रगीत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश से वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाया जाना एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाता है। पासीघाट स्थित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में प्रोफेसर व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ IQAC के सहयोग से किया। इस व्याख्यान श्रृंखला

0: में विद्यार्थियों, शोधार्थियों और संकाय सदस्यों को समकालीन हिंदी कविता से जुड़ने के लिए एक समृद्ध अकादमिक मंच प्रदान किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से समकालीन हिंदी कविता की उभरती प्रवृत्तियों, हाशिए की आवाजों और आलोचनात्मक दृष्टिकोणों पर भी चर्चा की गई। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत के दूरदर्शन संचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा है कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का पांचवा देश बन गया है। उन्होंने कहा है कि 1 GB डेटा की कीमत 268 रूपये से घटकर 8 रूपये से भी कम रह गई है। पुदुचेरी में टट्टाराचावड़ी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल की है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 8,482 सीटों से हराया है। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे हैं। तमिलनाडु की मंदुरातकम में धारापुर सीटों पर सत्तारूढ़ टी वेकी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा बढ़त बनाए हुए हैं। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़ें, जिससे फर्जी बीमा दावे पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके।
1: इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट, EDAR, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल हैं। इनके जोड़ने से दुर्घटना की रिपोर्ट, गाड़ी और बीमा के रिकॉर्ड और पहले के दावों के बारे में जानकारी को आसानी से साझा किया जा सकेगा। इसमें हिट एंड रन के मामले और प्रधानमंत्री राहत योजना भी शामिल होगी। न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे बिना देरी किए EDAR पोर्टल पर जरूरी डेटा अपलोड करें, क्योंकि अभी तक कुछ ही राज्यों ने ऐसा करना शुरू किया है। न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कुछ बीमा कंपनियों के प्रमुखों को न्यायालय के पिछले निर्देशों का पालन न करने के लिए अवमानना का नोटिस भी जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: सरकार ने डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं के विज्ञापनों पर नियंत्रण करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत अनुसूची H1 और अनुसूची X में शामिल दवाओं के विज्ञापन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेने की मौजूदा अनिवार्यता को दवाओं की बिक्री और वितरण का लाइसेंस रखने वाली संस्थाओं पर भी लागू करने का प्रस्ताव है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री सिंधिया ने दोहराया है कि डाक सेवा जनसेवा है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैच की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा कुछ कंपनियों के स्थायी श्रम प्रमाण PERM कार्यक्रम पर लगाई गई रोक H1B वीजा कार्यक्रम से पूरी तरह अलग है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि PERM आवेदकों पर रोक लगाने से मौजूदा H1B वीजा की वैधता या H1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: This is Akashwani, the news read by Morgan Bagra. Delhi police has denied permission for the proposed protest by the CJP at Jantar Mantar tomorrow. Addressing the media in New Delhi this morning, Delhi Police Joint Commissioner Nupur Prasad said that applications seeking permission to hold protest or other programs at Jantar Mantar must be submitted at least 10 days in advance. Ms. Prasad noted that the CJP had previously been given permission to hold a protest at the venue but failed to comply with the prescribed guidelines and the undertakings given by the party. The Joint Commissioner said the decision to deny permission was taken in view of the party's previous failure to adhere to Delhi Police guidelines and its own undertakings, as well as the prevailing law and order situation, public safety and traffic regulations in New Delhi area. All mail and express trains departing from their source stations after 2 p.m. today and scheduled to arrive at New Delhi and Hazrat Nizamuddin railway stations

0: Jako, nang state ba, cinto electrical division ahi nang dang ba. October member nga, tarik humbet ja, komin nang state ba, cinto electrical division ahi nang dang ba. October weningit, tarik budbet ja, komin nang state ba, cinto electrical division tonga ahi nang dang ba. Ade, October chivenit, tarik 2026, humbet ja, komin nang state ba, cinto electrical division tonga ahi nang dang min. Public hai rang ahan lamli ngin he dangka are rooftop solar system pu me charam unit to rang tha ho me ban tatu kan are system ko power pe net meter nang grid me kathukla me one bill pe adjust huan min central subsidy khan ko 1 kW rang rok ram hajer ram 2 kW rang rok ke rok hajer e rok mun adiko 3 kW rang dangke rok asat hajat banga chai set mun direct consumer bank account ko sakko minanga are system pe install le inspection when diko bank loan komin collateral free loan chumin lakni system thiak rang ko 5.75% interest chapmin adiko lakni madang la me lak rok system thiak rang ko 7.9% interest chapmin apadangke project thakowa vanishi person torang dangmin hanhan me apply tahone ya ahe dangke anga nga me jo tahone power department wa one line seat winte me ngale sup ba chat pe sandangmin smart meter system winte me lo lo tahona jinro apply huin mina apadangke khabang ko www.pmsurya.ghar.gov.in link ko get min ba pm surya gar apt ko min tahunan power department damwa registered mobile number puma adiko khabang ko rooftop solar pe apply huan mang min adiko wa ba registered vendor pe ran adiko wa re huan diko installation pe huan remin adikowa power department me inspection pe huan atwan ko subsidy pe bank account ko new area chini chini nyap lamina ahe dangke one bill number pe lamria mobile number pe aadhar le bank nya phe min lama registered vendor pe dangke national portal for installation ko khun rang ke arekwa lamin atwan apply huan tarik pe dangke 2027 March rok ram van the tarik pe aja je dhun madangan ko state health line number 9378193870 kota honan ba power department tang electrical division le sub division office kota chin huan
1: ar pa akashwani itanagar dibrugar ade se se program kane ma abang ko wangolong wa lunyin se bangchotan man
2: HIV pawan de khonchachi ara khonchat va perang asanta ma chojat pasan
3: HIV khonchat vingte he safety aho thama dihak damnam romjuk khonchat vingte nam sole va bg syringe sole le nyong va chana min tale min ja
2: hama arngin pa hunang thinan room tong dak pak min khit min jam room chala michik ko HIV khonchat pa nang jat ma
3: HIV khonchat pa sok thuk re min homai ko khonchat pa jat luti ko सोखथुक पमा रुंदंग लो ता हेंग मिंग जों एचआईवी खोंछत रान नक चेन अजा जा खबत बा जोनन खोंछत पा सोखथुक रेयन खोंछत जुन मा मी अनंग महोन मिंग जों अरे खोंछत खो को अजा जा ngin chojat rang national aids helpline number 1097 को फोन होन अरे खबत पा अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी डीएचएस नाहरलगुन नेवा पब्लिक हे हुबी दारंग जों लोसे देगा
4: तो श्रोता दोस्तों अभी आप सुन रहे थे नौकते श्रोताओं का समाचार। इस कार्यक्रम को आगे पूरा सुनने के लिए आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM है जिसे आप सुन रहे हैं FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और श्रोता दोस्तों अब प्रस्तुत है कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव।

समा है सुहाना सुहाना, हवाओं में मस्ती से छा जाना, आपके शाम के सफर को कर देने और भी खुशनुमा, लेकर आते हैं हर शाम इवनिंग ड्राइव।

0: तो सूर्य के घड़ी के अनुसार शाम के 5:17 हो रहे हैं और आपके सफर का हम सफर कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव शुरू हो चुका है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। कार्यक्रम की शुरुआत हुई फिल्म काल के सुपरहिट ट्रैक तौबा तौबा के साथ। तो दोस्तों, इस इवनिंग ड्राइव में ऐसे ही कई और चटपटे और धमाकेदार हिट्स आपके लिए लाइंड अप है। लेकिन कहते हैं ना कि चाहे गाड़ी हो या जिंदगी, सही वक्त पर एक छोटा सा ब्रेक बहुत जरूरी होता है। तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
1: इंडिजेनस फेट एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश आयोजित कर रहा है रन फॉर आइडेंटिटी इस थीम के साथ एक मैराथन 11 अक्टूबर 2026 को। ये मैराथन न्योकुम निया ग्राउंड निर्जुली से आरंभ होकर न्योकुम लापांग ईटानगर तक होंगे, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के विजेताओं को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए और रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8837434121 पर। अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम यानी कि ACWF अपना फर्स्ट एवर स्टेट लेवल सेमिनार आयोजित करने जा रहा है, जो होगा क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। इस सेमिनार के रिसोर्स पर्सन होंगे श्री जेम्स तेची तारा, प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कम प्रेसिडेंट NDCC, एवांजेलिस्ट गुमदे रिबा सोंगथिंग और एडवोकेट नाबम रामा गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर बेंच। अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम अरुणाचल प्रदेश के सभी विमेन हेड्स ऑफ डिनोमिनेशंस, हेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिनोमिनेशंस और विमेन लीडर्स को इस सेमिनार में सादर आमंत्रित करते हैं। याद रखें, जगह है क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। धन्यवाद।

और दोस्तों, फिल्म काल के तौबा तौबा के बाद अभी आप सुन रहे थे धमाकेदार पेशकश फिल्म बैड न्यूज से, विकी कौशल की वो किलर स्टेप्स और करण औजला की आवाज, बिल्कुल तौबा तौबा। तो ये कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर।

इंडिजेनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश आयोजित कर रहा है रन फॉर आइडेंटिटी इस थीम के साथ एक मैराथन 11 अक्टूबर 2026 को। ये मैराथन न्योकुम निया ग्राउंड निर्जुली से आरंभ होकर न्योकुम लापांग ईटानगर तक होंगे, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के विजेताओं को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए और रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8837434121 पर।

0: तो दोस्तों, फिल्म सूर्यवंशी के इसी धमाकेदार गीत के साथ ही वक्त हो चला है हमारे आज के कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव को यहीं पर समेटने का। लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि सफर खत्म हुआ है, शाम की महफिल नहीं। बस अब से कुछ ही क्षणों में शुरू होने जा रहा है एक ऐसा कार्यक्रम जो आपकी शाम को और भी हसीन बना देगा। जी हाँ, शुरू होने वाला है शाम की महफिल, जहां आपको मिलेंगे बेहद सोलफुल और सूदिंग बॉलीवुड नगमे अब से कुछ ही क्षणों में।
1: मारुति सुजुकी विक्टोरिस इज फाइनली हियर and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart powered tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
2: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.

0: नहीं सामने तू अलग बात है। इसी के साथ ही हमने शुरू कर लिया है कार्यक्रम शाम की महफिल। ये है आकाशवाणी ईटानगर करुण FM 103.1 MHz।
1: इंडिजेनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश आयोजित कर रहा है रन फॉर आइडेंटिटी। इस थीम के साथ एक मैराथन 11 अक्टूबर 2026 को। ये मैराथन न्योकुम निया ग्राउंड निर्जुली से आरंभ होकर न्योकुम लापांग ईटानगर तक होंगे, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के विजेताओं को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए और रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8837 43411 पर।

अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम यानी कि ACWF अपना फर्स्ट एवर स्टेट लेवल सेमिनार आयोजित करने जा रहा है, जो होगा क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। इस सेमिनार के रिसोर्स पर्सन होंगे श्री जेम्स तेची तारा, प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कम प्रेसिडेंट NBCC, एवेंजेलिस्ट गुमदे रिबा सोंगथिंग और एडवोकेट नाबम रामा गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर बेंच। अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम अरुणाचल प्रदेश के सभी विमेन हेड्स ऑफ डिनोमिनेशंस, हेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिनोमिनेशंस और विमेन लीडर्स को इस सेमिनार में सादर आमंत्रित करते हैं। याद रखें, जगह है क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। धन्यवाद। ब्रेक से पहले आप सुन रहे थे कितना प्यार करते फिल्म बवाल से अरिजीत सिंह की आवाज में। दोस्तों, यह है कार्यक्रम शाम की महफिल जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। कार्यक्रम में अगला गीत पेश करने से पहले अर्ज है, तुझ से शुरू और तुझ पे ही खत्म है दास्तां मेरी, कि तुझ से शुरू और तुझ पे ही है खत्म दास्तां मेरी, अब तू ही जमीन और तू ही आसमां मेरा।

इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश आयोजित कर रहा है रन फॉर आइडेंटिटी इस थीम के साथ एक मैराथन 11 अक्टूबर 2026 को। ये मैराथन न्योकुम निया ग्राउंड निर्जुली से आरंभ होकर न्योकुम लापांग ईटानगर तक होंगे, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के विजेताओं को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए और रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8837434121 पर।

0: तो दोस्तों, कार्यक्रम शाम के महफिल में आज के लिए बस इतना ही। फिर कहेंगे जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि सफर खत्म हुआ है हिंदी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम का नहीं। अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर।
1: इंडिजेनस फेट एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश आयोजित कर रहा है रन फॉर आइडेंटिटी। इस थीम के साथ एक मैराथन 11 अक्टूबर 2026 को। ये मैराथन न्योकुम निया ग्राउंड निर्जुली से आरंभ होकर न्योकुम लापांग ईटानगर तक होंगे, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के विजेताओं को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए और रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8837434121 पर।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
5: रुक जा बुद्धू।
6: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
4: तू समझ गई ना, रिलैक्स।
5: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
6: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
1: HIV के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
7: HIV संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
1: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता।
7: HIV की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा

0: सकता है।
1: HIV से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
0: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।

फिल्म गुंडाराज से अभी आप सुन रहे थे ये गीत, और इसी गीत के साथ ही हमने शुरू कर लिया है हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, जिसे आप सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 MHz पर। तो दोस्तों, बताना चाहेंगे कि इस अंक में है कुछ पुराने एवं नए हिंदी फिल्मी गीत। इन शॉर्ट कहे तो पुराने एवं नए हिंदी फिल्मी गीतों का पिटारा है ये अंक। इस अंक में है ढेर सारे ऐसे ही मजेदार नगमे, सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि इस अंक में पेश करेंगे बैक टू बैक हिंदी फिल्मी ट्रैक्स और कुछ ब्रेक्स के साथ। क्योंकि कहते हैं ना कि चाहे प्रोग्राम हो या जिंदगी, सही वक्त पर एक छोटा सा ब्रेक जरूरी होता है।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 litre dual jet, dual VVT engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए
5: इंडिजेनस फेट एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश आयोजित कर रहा है रन फॉर आइडेंटिटी इस थीम के साथ एक मैराथन 11 अक्टूबर 2026 को ये मैराथन न्योकुम निया ग्राउंड निर्जुली से आरंभ होकर न्योकुम लापांग ईटानगर तक होंगे जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के विजेताओं को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए और रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8837434121 पर

0: अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम यानी कि ACWF अपना फर्स्ट एवर स्टेट लेवल सेमिनार आयोजित करने जा रहा है, जो होगा क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। इस सेमिनार के रिसोर्स पर्सन होंगे श्री जेम्स तेची तारा, प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कम प्रेसिडेंट NDCC, एवेंजेलिस्ट गुंडे रिबा सोंगथिंग और एडवोकेट नाबम रामा गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर बेंच। अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम अरुणाचल प्रदेश के सभी विमेन हेड्स ऑफ डिनोमिनेशंस, हेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिनोमिनेशंस और विमेन लीडर्स को इस सेमिनार में सादर आमंत्रित करते हैं। याद रखें, जगह है क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। धन्यवाद।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: HIV के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
5: HIV संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
4: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता।
5: HIV की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
4: HIV से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
5: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।

दोस्तों कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों में आज के लिए बस इतना ही। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुन पाएंगे आदि श्रोताओं का समाचार। समाचार के उस पार हम फिर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम आज के कलाकार।

चलूंगा 100 गान 100 150 तक को हूँ एक भारत श्रेष्ठ भारत आयो लोक लो दुम बम दुम को लो तक सिन्नो लो आकाशवाणी ईटानगर लोक तत्पादुम इलेक्टोरल रोल लो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR इगबोरों एम बूथ बिला पेनासी संग्रिसा ना ओमे आओ इलागी साक्षिनाम कितिंग एम लेको दा इलेक्ट के बोतों कुफे तावंग डिस्ट्रिक्ट लो स्पेशल ड्राइव फॉर एनरोलमेंट फे वोको इगे बोतो पद्मश्री अमन पाना मंजुश्री विद्यापीठ लोक फाउंडर डायरेक्टर वेंट लामा थुपतेन फुनसोक भी मोनपा आगम लोक लुगे बोला सुपक पे वो इवो दुनाम सो दे पे कम बुद बिदिंग ना मिमोम्या में कितिंग ए आगे के आमन ओपन एम बुद बिलंग दो पे बुटालिस लो इलेक्सी इन लंका एम ना लुगे बोदो सुपक बुटालिस इलेक के बोनाम लेगंग पे स्पेशल ड्राइव पे वो इगे बोनाम से डिस्ट्रिक्ट आरंग लोक बुद बिलंग ना कितिंग एम इलागिसा कामादो पे इगे बोनाम को देलोक लगान पर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर देलो बूथ लेवल ऑफिसर किटिंग ए बुटालिक्स इलेक्सी मादाना निमुम्या में किटिंग एम आगे का आमिन ओपन एम लगान पर इलेक्सी गोलंग का एम ला रोबोटिंग आपना नवंबर पोलो एलो ग्लोइंग को लंग लो पी तारिक लो के लो इंग अन्य तारिक एलो फेनाम साई लो गोल्डन फोगो डालो लॉर्ड बुद्धा में कुम सिजोसी इदोलो इदोलो तेलोग बेलोग आदुम सिना अमीबा ने लगांग पे सिक्योरिटी आई असंग तुम को दा को दो नाम ती नाम देलो रूलिक नाम लोरुंग अरासो आई कंपो लगांग पे इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन IBC एलंग न्यू दिल्ली लोक नेशनल म्यूजियम लोक एडवांस सिक्योरिटी लाइसनिंग ASL टीम एलेको पे केबांग को दु बसितो केबांग सो आर्ट एंड कल्चर लोक सेक्रेटरी ममता रेबा IBC लोक डायरेक्टर या सेक्सेना नेशनल म्यूजियम लोक ऑफिसर ऑफिशियल देलोक नामसाई डिस्ट्रिक्ट लोक एडमिनिस्ट्रेशन कृतिंग ए कमले को पे दू मिन गतो पेबो सिम काम पो पे लो दुम बम पे नाम लेगांग पे ASL टीम ए लंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ए ले को दोला अगेर एम गेर गेर बोसितो फे एम ला भराव बोसितो ईटानगर कैपिटल रीजन सिम देनामा नाम काटो फे इगे लुगे बोना ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन IMC लोक सैनिटेशन वर्कर्स एकेमेलो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ अरुणाचल इंडिया अरुणाचल प्रदेश रीजनल सेंटर ए अमन एके बिलेन गे बतो FERC ऑफिस ऑफिसर इंचार्ज देलो साइंटिस्ट ई डॉक्टर एस डी गुरु मायुम ऑफिस चेम्बर आरंगलो अमन सिम बिलेन तो अमन बिनाम पेबोसी बुलुक मोले तकम एम देना मानम कदक फे इगे बोनम लेगंग फे स्वस्थ ही सेवा कैंपेन पेबो अमन नोक बिलन तो सेंट्रल हिंदी डायरेक्टोरेट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलंग पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी एंड इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल IQAC जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट एलेकोबो सिदोला प्रोफेसर लेक्चर सीरीज एम नाम पेबो कोमेलो पासीघाट लोक जवाहरलाल नेहरू कॉलेज लो इबोसितो पेबोसो केन्ना फाना स्कॉलर्स फैकल्टी मेंबर्स देलो पोरिको क्रिटिंग एम कंटेम्पोररी हिंदी पोएट्री लो कंपोना अगेर एम गेल लंदो फे इगे बताओ इरुम लंगी नपना इंद्रजीत नामसोंग अरुणाचल लीग MC लोक लोंगासो यूफिया लो गोल्डन जुबली स्टेडियम लो तुलंतो ओपनिंग मैच एम डिफेंडिंग चैंपियन कैपिटल कॉम्प्लेक्स FCA लंग FCC का ए युमाबाजी 4 PM दे लोग तुलें तो इनोग्रेशन पे वो सिम चीफ मिनिस्टर पेमा कांतु बुत्ताबाद के बोतो भारत एलंग वेस्ट इंडीज लोग इरुम लेमो कोपे T20 इंटरनेशनल सीरीज क्रिकेट के लिए मुन्हे नाम लोग लेंगे ना पना एम सीएम का युमाबाजी 7 PM लो इरोब लेंगे 5 मैच के लिए पेनाम सिम सुपाक भारत ए 1-0 लो इगुम लाये के दुंग एम लंकम लुकान दो सोग ले को ले को पे सिम के लुता दें सोलु इन दुंग लुकान अगम को तत पाए आगे के एकुम मिलों लो सोलार सिस्टम इलेक्ट्रो फे फॉलो आते लो इलेक्ट्रिसिटी एम 300 यूनिट को फे फ्री रूप फे फाला दो फे भारत सरकार ए PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना PMLC MBY एम नाम स्कीम आने को इलेन गे बोतुंग
सेवा संकल्प अभियान अरालोक डिपार्टमेंट ऑफ फॉरवर्ड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्कीम अनिशिम सेवा सेतु केम आयोग।

0: lo ibom instead of mo le takam lo gikana September follow de lo in kolang kanit tarik de lo ke yebom dunam polo sok lo in kolang kanit tarik lo pe ike potung. Kem pe bo ike pokolo scheme counseling dex, vendor dex, banking dex de lo em lenge potung de lo serang sim repe em la muna kitinge agike amun em reist. Register ilik sila ye telo bank loan lai la sang legang em kom it kitat kem ibo sila ye. Kem pe bo sim gikana September polo telo glowing anyi kolang kenit tarik telo siang distik polem lo iga boto 29 September 2026 telo istat sok distik headquarter takam lo iga boto 1 October telo istat sok electrical division takam lo iga boto 5 September telo kom elek
1: HIV kinam abalok menggap gabanam aro rupa moye hanam lagangko takamam lukan lan bitung.
2: HIV kina amilok iya lamulo kinam de ayon huyerung atirung kenno himapa mimamilo kadbohila amur abo himilo HIV kinam de ayon hidu. HIV kinam de bejuatel kung vidumanyam nengmilo ayon hiladung delok anade HIV gadung imilo polokom ayon hiladung.
1: Idokom menggap galangka, dobo dak bohikolok, ala korok hikolok, gomer hikolok, dobo te bohikolok, delo tarhungo bungkolok, HIV kinam he, biak gong madung.
2: HIV kinam, em itum hidope, potalo menape, kade hilangka, dem imulo, denam pe ye langolo, kampo pe ye namem ye ladu. HIV kinam em, pesope aimang, kinam hok legangem, kenpe pe aidung delo, Kinamum arorupa kangukpa aidung. Dalo SIV kina amiam luke loreng kapa aimang. SIV kinam hok legangam aipa kenpamena kedinga National AIDS Helpline 1097 lo irikhila legangam tamnom hilangka. Arunachal Pradesh State AIDS Control Society Director Health Service Naharlaguna bana legangam mungga bodola agamum bikanden botu.
1: श्रोता दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आदि श्रोताओं का समाचार। इस कार्यक्रम को आगे पूरा सुनने के लिए आप अभी ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर, या फिर आप न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी आकाशवाणी ईटानगर के सभी कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM है जिसे आप सुन रहे हैं FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब से कुछ ही पलों में हम लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार।

मात्र 8 साल की उम्र में उन्होंने एक गायन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता था। 9 साल की उम्र में उन्हें स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के साथ बांग्ला भाषा में गाना गाने को अवसर मिला था। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति की। कार्यक्रम आज के कलाकार में हमारे कलाकार हैं कविता कृष्णमूर्ति। क्या आप जानते हैं कि उनका वास्तविक नाम यानी कि उनका जन्म का नाम शारदा कृष्णमूर्ति था? आज इस अंक पे हम बातें करेंगे कविता कृष्णमूर्ति की और साथ ही पेश करेंगे उन्हीं के गाए हुए नगमे।

इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश आयोजित कर रहा है रन फॉर आइडेंटिटी इस थीम के साथ एक मैराथन 11 अक्टूबर 2026 को। ये मैराथन न्योकुम निया ग्राउंड निर्जुली से आरंभ होकर न्योकुम लापांग ईटानगर तक होंगे, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के विजेताओं को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए और रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8837434121 पर। अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम यानी कि ACWF अपना फर्स्ट एवर स्टेट लेवल सेमिनार आयोजित करने जा रहा है, जो होगा क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। इस सेमिनार के रिसोर्स पर्सन होंगे श्री जेम्स टेची तारा, प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कम प्रेसिडेंट NBCC, एवांजेलिस्ट गुमदे रिबा सोंगथिंग और एडवोकेट नाबम रामा गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर बेंच। अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम अरुणाचल प्रदेश के सभी विमेन हेड्स ऑफ डिनोमिनेशंस, हेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिनोमिनेशंस और विमेन लीडर्स को इस सेमिनार में सादर आमंत्रित करते हैं। याद रखें, जगह है क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। धन्यवाद।

0: ना मिलो हमसे ज्यादा कहीं प्यार हो ना जाए। सुन रहे थे आप ये गीत कविता कृष्णमूर्ति एवं सोनू निगम की आवाज में फिल्म बादल से, और यह है कार्यक्रम आज के कलाकार। हम बातें कर रहे थे कविता कृष्णमूर्ति की। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कविता कृष्णमूर्ति को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा 2005 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें 4 बार बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है। वैसे तो उन्होंने कई सारे हिट्स दिए हैं। 1980s के दशक में उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग शुरू किया। उन्हें फिल्म मिस्टर इंडिया के गाने, हवा हवाई और प्यार झुकता नहीं के गाने से बड़ी पहचान मिली। और दोस्तों, आज के इस अंक में यानी कि कार्यक्रम आज के कलाकार में अब हम आपके लिए पेश कर रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति का वो फेमस सॉन्ग हवा हवाई। छोड़े जा रहे हैं इसी मजेदार गीत के साथ। 7 बजते ही आप सुन पाएंगे निशी श्रोताओं का समाचार। तब तक के लिए आनंद लीजिए हवा हवाई का।
1: अभी भी।

0: hog laga bula aram so ga bon sam ni ga balok kam ke kel chetur dotur mih ma ho ga hanya bon ni hedam dok dak dak te ke hedam al jab ke is ko go nya gan ko bahal hog laga ASL team nga district administration am golden pagora alo koi ladar bo bon kan koi jab ni ek alo yo lu se chin do tu lor gar ni mat ko hana mih ma pa go goh chir ho kum gomin pamin so nya gan ko bahal puye bi pa do tanbo hudan dula akashwani itanagar ka arun fm sa ganis tu puyam tal do do mol al arunachal pradesh ge geological survey of india ge regional center tu lunga itanagar capital region nam dari pavya da be bon nil dogam ga itanagar municipal corporations ke sanitation workers hedam humle pali jilla ke kes gen ko bahal hoga so ga kisam aprc ge officer in charge la scientist e dr sd guru mayam me office ke chamber ho bulam go al kes gen ko bahal hog lagab so aksi so ge nitu ke ga da so ge swachhta hi seva ge gamle nitu hoga dari pavya bonam nile le nya bom kes de ko jinam help we have a pardon. Moy al pasigat ke Jawaharlal Nehru College ho professors lecture series go contemporary Hindi poetry pago ho faculty tu luga research scholars tu luga hoga ko pori dubo tu luga bonni agnyag nu kwahal hoga sog program sam government of india ga ministry of education uri log central hindi directorate ngala Jawaharlal Nehru College pasigat ke post graduate hindi department hoga internal quality assurance cell iqac tu luga nig agnyag nu kwahal puye ve pado फुटबॉल का सोका मीन्स को हो अरुणाचल प्रदेश के इंद्रजीत नमचुम अरुणाचल लीग 2026 सीजन टू हम सोलो ग सौरभ अपने स्वयं यूपिया गोल्डन जुबली आउटर स्टेडियम बोलो मोदी अपिंग हम कैपिटल कम्प्लेक्स एफ सी नला एफ सी सी का टीम अन्य सोका मीन्स सौरभ ताइकुन हल होगा सो ग आई एन ए लीग 2026 चीफ मिनिस्टर टू पेमा खांडू सौरभ गम दुकुब स्वयं गोलो ग मकोजिज ताइकुन हल पुए विपादो क्रिकेट का सोका मीन्स को हो इंडिया क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज लोग टी ट्वेंटी का मैच आंगो सोका मीन्स दोग सोलो रांची न्यूक आलो सुम ग मोद आहगन गम लुन दिन ग सोनम सौरभ गायकुन हल होगा सो तो सोलो सौरभ ग खोर इंडिया टीम ने सोया लाल वन बाय जीरो को पॉइंट मपुल अपा कुन हल होगा हो सौरभ गई खो स्कीपर तुप श्रेयस अयर सेंचुरी व जीलिन जिल टीम ग अतोरम कम कातम चिकनम हल पुए विपादो सुम ग निसी पुए हद को
1: Si tagap sa agam go, mula akas pani itanagar yurkum loke so puisam malinjiran. Mulu ni mulu tulu gab habna, nyam nyaga ko anyom ekshir gab. HIV la AIDS ke pago samning chendo HIV AIDS se alman bo HL. Hab si tulso ekchin bo sam ekchinam sam nula bos lubri ma pan ma. So ekchiam nyakam chida pahel so nying nyilab si tan hel do madne. नुले सम आल जब चैनल दो दुबरी पा सम चैनल दो दुबरी नाम सीएम यो कम नुले चैनल दो बोलो सो एच पागो सम नुले आयाब का आल चैनल बाल दो बोलो कम नुले सो एच वो गनिंग दो जा कम सो एच सम नुले अन्याब सुग दुब गिताल ने सी कोई को सुग दुब गितान ओगे एच आई बी ला एच सी ओगे का जीदन है बोलो कम सी नियम निगा दो बम कोलो ओगे सो उई ना को सुन दो कम ओगे सो सो बीजी पी नम पी को सुन नी एच वो गे पी कम हो सो एच सी दो दिन ओगे सो एच सी नुले एचसी उसी मादन नुलुक अला चिरु कोलो चेतिन मिसल दोकलो लकिंग ऑफ दवन दावन ला दोय कम नुले सी एचसी उमादन ओ गाव नुले एचसी दो नै दो मादन हम मोद मोदम काग द नुल मेडिकल हाला नुल एंगम का काकम द लिपाने ओ पिन कोलो मुलु निंग एचआईवी ला एड्स व गुतु गोरा लो निन दोद लो कम होनी तुलु हम कम नुले अन्या ब्या दोद लिदन साम नुले तिमपा द लिमादन साम या नुले से काद लिपने एम आरडी सी से काम अब अन्या मार तिंपा बनियो कम सोनी सी एच एफ ए दो तादना हो गए साम नुले चैनल दो तकल बाहरा नुले चिन्ह दलो कम नुले 1097 होस नंबर सो कॉल मग दो सम अन्या बत तका तका हो गए साम चैम दो साम आयार जिग मग दो साम नुलम एच एफ नुमा दो वेलकाल दो बोंग है और नचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी हो गए डीएचएस नहर लोगों लोग का जिलिन पनं कैसे तकब से पुए है तो को पाया लिंचो
2: अभी आप सुन रहे थे निशी श्रोताओं का समाचार इस कार्यक्रम को आगे पूरा सुनने के लिए आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर या फिर आप न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी आकाशवाणी ईटानगर के सभी कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है जिसे आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर

0: अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम यानी कि ACWF अपना फर्स्ट एवर स्टेट लेवल सेमिनार आयोजित करने जा रहा है, जो होगा क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। इस सेमिनार के रिसोर्स पर्सन होंगे श्री जेम्स तेची तारा, प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कम प्रेसिडेंट NDCC, एवांजेलिस्ट गुंडे रिबा सोंगथिंग और एडवोकेट नाबम रामा गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर बेंच। अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम अरुणाचल प्रदेश के सभी विमेन हेड्स ऑफ डिनोमिनेशंस, हेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिनोमिनेशंस और विमेन लीडर्स को इस सेमिनार में सादर आमंत्रित करते हैं। याद रखें, जगह है क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। धन्यवाद।
1: और श्रोताओ, अभी वक्त है एक विशेष प्रस्तुति का, जो समर्पित है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से ये विशेष श्रृंखला, अब से कुछ ही देरी में।
2: इंडिजेनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश आयोजित कर रहा है रन फॉर आइडेंटिटी। इस थीम के साथ एक मैराथन 11 अक्टूबर 2026 को। ये मैराथन न्योकुम निया ग्राउंड निर्जुली से आरंभ होकर न्योकुम लापांग ईटानगर तक होंगे, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के विजेताओं को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए और रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8834341 पर।
3: दुर्गा शंकर मिश्र और राजनीतिक विश्लेषक रवि पाराशर कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
4: कल्पना कीजिए, हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच चिनाब नदी के उफनते पानी से 359 मीटर ऊपर टिकी एक विशाल फौलादी मेहराब का, जहां कभी पहुंचना महज एक सपना था, वहां आज भारत की तरक्की की ट्रेन फर्राटा भर रही है। सोचिए पंबन के नीले समुद्र पर खड़े उस पुल के बारे में, जो जहाजों को रास्ता देने के लिए समुद्र के सीने पर किसी विशाल पंख की तरह हवा में ऊपर उठ जाता है, या कच्छ के रण से लेकर कन्याकुमारी तक फैले उन चमचमाते एक्सप्रेस वे का, जिन्होंने दूरियों को सिर्फ किलोमीटरों में नहीं वक्त के पैमाने में भी आधा कर दिया है। ये केवल कंक्रीट, क्रेन और स्टील की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस अदम्य इच्छा शक्ति की, जिसने चुनौतियों को संभावनाओं में बदला, जिसने भारत के भूगोल को एक नए भारत के भविष्य से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों पर आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आज हम रुख कर रहे हैं एक ऐसी ही बदलाव की कहानी की ओर। प्रस्तुत है विशेष अंक, बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार।
5: ये फ्रेट कॉरिडोर माल गाड़ियों के लिए बिछाई गई स्पेशल पटरियां है। इससे उत्तर भारत की बंगाल और गुजरात के समंदर से कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है, और दादरी वो स्थान है जहां ये दोनों कॉरिडोर आपस में मिलते हैं। यानी यहां किसान जो उगाते हैं, यहां उद्योग जो कुछ बनाते हैं, वो जमीन से, हवाई मार्ग से दुनिया के कोने कोने तक तेजी से जा पाएगा।
4: श्रोताओं, जब किसी राष्ट्र के महान बनने की गाथा लिखी जाती है तो उसकी नींव में उसकी रीढ़ यानी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है। पिछले वर्षों में भारत ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में जो गति, पैमाना और इंजीनियरिंग का चमत्कार देखा है, उसने न केवल देश की कनेक्टिविटी बदली है, बल्कि हर नागरिक की आकांक्षाओं को नए पंख दिए हैं। इसी अभूतपूर्व कायाकल्प और इसके दूरगामी प्रभावों को समझने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर नीति को दिशा देने वाले पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी और इस पूरे विजन के सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत प्रभावों के विश्लेषक, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार

0: रवि पाराशर जी, आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
2: धन्यवाद धन्यवाद आनंद जी।
0: मिश्रा जी, आपके साथ शुरू करते हैं। और पिछले करीब एक दशक में भारत ने सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स हर क्षेत्र में बड़े स्तर पर बदलाव देखा है। आपसे समझना चाहते हैं कि क्या ये बदलाव सिर्फ इतना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का स्केल बढ़ा है या प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का तरीका भी बदला है, खासकर पीएम गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के जरिए। क्या अब इन अलग अलग प्रोजेक्ट्स को एक दूसरे से जोड़कर एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क की तरह देखने की सोच बन रही है?
1: बिल्कुल आनंद जी, आपने सही कहा कि पहले हमारे लिए रोड रोड थी, रेल रेल थी, या हवाई अड्डे थे जहाँ पे कुछ पैसेंजर जाते थे, कुछ गाड़ियां चलती थी, कहीं पे अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध थी। लेकिन पिछले 10-12 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक नई सोच, जो शहरों को जोड़ करके, स्थानों को जोड़ करके, लोगों की मोबिलिटी को करके, फ्रीट के मूवमेंट को, अनेबल के मूवमेंट ही नहीं बल्कि उसको कितने सस्ते अफोर्डेबल तरीके से उसको कर सकते हैं, कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं, तो ये एक ऐसा नया व्यवस्था बनाया है पिछले 10-12 सालों में कि पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हमारी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो सारी सारी बुनियादी सुविधाएं एक नए स्वरूप ले रही हैं। और वो स्वरूप है हमारा विकसित भारत, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 आजादी का 100वीं सदी मना रहे होंगे, 100वीं वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हमारा देश जो विकसित होगा उसके लिए पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया। आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, एयरपोर्ट में ले लीजिए, जिस प्रकार से एयरपोर्ट की संख्या आज दूने से ज्यादा हो गई है, और केवल एयरपोर्ट की संख्या नहीं बढ़ी है बल्कि एयरपोर्ट पे चलने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। एक साधारण सा आदमी जो कि कभी सोच नहीं सकता था, वो उड़ान इस योजना के तहत अब उसको कहीं से कहीं, देश में लगभग 95 ऐसे एयरपोर्ट है जहां पे उड़ान योजना के अंतर्गत वो चल के जा सकता है। तो उसको एक नई चीज, आप कभी एयरपोर्ट पे जाइए तो देखिए, देख करके लगता है कि ये क्या है, ये नया भारत है। आप रेलवे को देख लीजिए, रेलवे में जिस प्रकार से न केवल हमारे जितने डबल ट्रैक उसको बनाया गया बल्कि लगभग 99% से ज्यादा, ऑलमोस्ट लाइक 100% ये सारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, और उसमें स्पीड पे ध्यान दिया गया। आज काफी करीब 80% ट्रैक हमारे ऐसे जिसके ऊपर 110 किलोमीटर की रफ्तार से रेल चल सकती है, तो स्पीड पे ध्यान दिया गया, सुरक्षा पे ध्यान दिया गया, पीपल्स कन्वीनियंस जो हम कभी सोचते नहीं थे, चाहे शौचालय से लेकर के आपको पावर पॉइंट प्लग जिससे कि आप अपना मोबाइल को चार्ज कर सके, आपके जो है खाने पीने की सुविधा हो सके, सारी की सारी हर तरह से, और स्पीड तो है ही, अफोर्डेबिलिटी, जैसे आनंद हमारी जो अमृत भारत ट्रेनें चली अफोर्डेबिलिटी के ऊपर उस पर ध्यान दिया गया, तो वंदे भारत ट्रेनें चली जिसको स्पीड के ऊपर ध्यान दिया गया, एक अमूल चूल परिवर्तन पूरा का पूरा, या फ्रीट कॉरिडोर में ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर, वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर, तो मुझे लगता है कि पूरी सोच में बदलाव आया। आप मेट्रो का नेटवर्क का देख लीजिए, जो मेट्रो कभी थोड़े से शहरों में हुआ करता था, हम इस पर बाद में विस्तार में बात करेंगे, तो एक छोटे शहर में जो करके आज हमारे लगभग 30 शहरों में मेट्रो चल रही है और तमाम सारे शहरों में चल रही है। पहले बार हमारे देश में रैपिड रीजनल ट्रेन की जो शुरुआत हुई है, जो नमो भारत के नाम से जो पहली शुरुआत हुई, तो ये एक नई सोच है कि कैसे हम व्यक्तियों को, जो व्यक्तियों के जो हमारे काम करने के, चाहे कारखाने से लेकर के उत्पादन के केंद्रों से लेकर के व्यवसायिक केंद्रों से लेकर के विदेशों तक, क्योंकि आज हम अपने देश के लिए ही नहीं बना रहे बल्कि हम दुनिया के लिए बना रहे, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे, तो उसको कैसे हम जहाज लाने के माध्यम से उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक नई आर्थिक सोच जो पिछले 10-12 साल में बढ़ी है, और मुझे लगता है कि ये विकसित भारत का बहुत बड़ा एक बुनियाद, उसको आगे रंग देने के लिए, उसको ताकत देने के लिए तैयार हुआ है।
0: रवि जी, अगर एक एक करके बिंदुओं पर आए और सबसे पहले शुरुआत सड़क से करते हैं, नेशनल हाईवे नेटवर्क जो 91,287 किलोमीटर था वो बढ़कर लगभग 1,46,572 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। फोर लेन हाईवेज की संख्या बढ़कर लगभग 45,000 किलोमीटर तक पहुंच गई है। आपसे ये समझना चाहते हैं कि 2014 के बाद से जो ये परिवर्तन हुआ है आम नागरिक के जीवन में, ये जो आंकड़े हैं बढ़े हुए, इनका वास्तविक मतलब क्या है और देश की प्रगति में इनके क्या मायने हैं?
3: आनंद जी, राष्ट्रीय राजमार्गों का जिस तरह से विकास हो रहा है, न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी, तो जाहिर है कि इससे आम आदमी के दैनिक रोजमर्रा के जनजीवन पर काफी सकारात्मक असर पड़ा है। दूरियां घटी हैं, कनेक्टिविटी बढ़ने से बहुत सारी चीजें हुई हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से फसल को अच्छी मंडियों तक लाना ले जाना, इलाज के लिए अच्छे अस्पतालों तक पहुंच बढ़ना, और बहुत सारे स्तरों पर अगर हम देखें तो जैसा आपने कहा कि देश में सड़कों का जाल एक तरह से बिछ रहा है, और जो आपने आंकड़ा बताया कि 2014 में जो भी प्रतिदिन सड़क निर्माण का आंकड़ा था वो अब बढ़कर 28 से 30 किलोमीटर रोज हो गया है, उल्लेखनीय वृद्धि।

0: है 2014 में राष्ट्रीय राजमार्ग थे देश में, उनकी कुल लंबाई 91,287 किलोमीटर थी। अभी 2025-26 में ये आंकड़ा 146,572 किलोमीटर तक पहुंच गया है। ये करीब परसेंटेज में देखें तो ये 61% बढ़ोतरी है।
1: जी
0: ये अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है किसी भी सरकार के लिए। गतिशक्ति मास्टर प्लान,
1: जी
0: इसका उल्लेख करना हमें यहाँ पर बहुत आवश्यक है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पीएम गतिशक्ति योजना में सड़क, रेल और दूसरे ट्रांसपोर्ट, जैसे दुर्गा शंकर जी ने कहा, साधनों को, सारे जो यातायात के साधन है उनको एकीकृत किया गया है, और इसका बहुत बड़ा फायदा अलग अलग सेक्टर्स को बिल्कुल मिला है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात आई है, देश के चारों कोनों में हर जगह एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, उनसे दूरियां बहुत घट गई हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है ये। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई 1,350 किलोमीटर है, और दिल्ली से मुंबई जाएं या मुंबई से दिल्ली के बीच हम एक्सप्रेसवे के जरिए सफर करें बाय रोड, तो 24 घंटे की बजाय 12 घंटे में ये सफर संभव है। अब ये कितना बड़ा अंतर है, जो यात्रा आप 24 घंटे में कर पाते थे वो अब करीब करीब आधे समय में आप कर सकते हैं। तो न केवल समय की बचत है बल्कि ऊर्जा की भी बचत है। इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो इंजीनियरिंग के, भारतीय इंजीनियरिंग के जो अद्भुत चमत्कार हैं वो भी आप देखेंगे। इसी दौरान कुछ प्रोजेक्ट जो है संभव हुए। तमिलनाडु के मंडपम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला एक ब्रिज है, जो अंग्रेजों के शासन काल में 1914 में शुरू हुआ था उसका बनना, और करीब करीब इसकी लंबाई 2.2 किलोमीटर है। जंग लगने की वजह से और कुछ पुराना पड़ने की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। अब जो नया पंबन ब्रिज बना है वो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। अटल सेतु की बात कर लें, इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है, और ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। दक्षिण मुंबई के सेवरी को नवी मुंबई से जोड़ता है ये। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। जो समुद्र पर इसका हिस्सा बना है उसकी लंबाई 16.5 किलोमीटर है, और जमीन पर इसकी लंबाई 5.5 किलोमीटर है। ये 6 लेन का अटल सेतु है। मुंबई से नवी मुंबई तक 20 मिनट में इसके जरिए जो यात्रा करते हैं इसके माध्यम से, उसमें केवल अब आजकल 20 मिनट लगते हैं, पहले घंटों लगते थे क्योंकि ट्रैफिक जैम बहुत लंबे लंबे लगते थे, और इसकी लागत थी 17,840 करोड़ रुपए। इसी तरह सुदर्शन सेतु को ले, भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है ये। गुजरात के द्वारका जिले में अरब सागर पर ये सुदर्शन सेतु स्थित है। ओखा को बेठ द्वारका से ये जोड़ता है। इसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर है। लागत आई थी करीब 979 करोड़ रुपए। ये 4 लेन का पुल है, और दोनों किनारों पर लोगों की सुविधा के लिए 2.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ है, जिस पर वो चहलकदमी भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में सड़क कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी पर बहुत ध्यान दिया गया है, और इसका लाभ बहुत सारे सेक्टरों को मिल रहा है।
1: मिश्रा जी, अगर सड़क से सफर को आगे बढ़ाएं और रेल की तरफ चलें, जैसा कि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जिक्र भी किया अमृत भारत स्टेशन का, तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 1300 से अधिक रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास हो रहा है। साथ ही साथ नमो भारत और वंदे भारत जो ट्रेनें चली हैं उससे यात्रा समय में तकरीबन 30-40% की समय की कमी आई है, जो आप स्पीड की भी बात कर रहे थे। सवाल यह है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने और देश की जीडीपी में इस आधुनिक कनेक्टिविटी का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, इसको आप कैसे देखते हैं?
2: आनंद जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन मैं इसके पहले इसको बात करूं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा जो पराशर जी बोल रहे थे। देखिये, पहले दिल्ली से मैं रहने वाला हूँ पूर्वांचल का। दिल्ली से अगर आपको बलिया या आजमगढ़ जाना हो तो बहुत टाइम लगता था। समझिए कि पूरा दिन भर आपको नहीं बल्कि ऑलमोस्ट 20-22 घंटे लग जाते थे। और आज आप दिल्ली से लेके लखनऊ तक एक्सप्रेसवे है, जो कि मुश्किल से 5 घंटे में आप लखनऊ पहुंच सकते हैं, और वहां से अगले 3-3.5 घंटे में, 4 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। जो दूरी हम लगाते थे 20-20 घंटे लगा देते थे, वो हम 9 घंटे के भीतर भीतर वहां पहुंच जाते हैं। उसका क्या नतीजा निकला? आज जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था, तो पहले पूर्वांचल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वहां कोई सामान ले जाना अपने आप में बहुत दूर हुआ करता था। आज पूर्वांचल में तमाम सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, बुंदेलखंड में काफी सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को इस प्रकार से कनेक्टिविटी जोड़ा है हाईवे के, नेशनल हाईवे के माध्यम से, एक्सप्रेसवे के माध्यम से, या तमाम सारे इंजीनियरिंग मॉडल जिसका भी जिक्र कर रहे थे, जैसे अटल सेतु की बात कर रहे थे, अटल सेतु में उसको सेतु नहीं लेता हूं मैं, उसको समझता हूं कि दो इकोनॉमिक सेंटर, दो ग्रोथ सेंटर, एक तरफ तो मुंबई है, दूसरा नवी मुंबई है।

0: आगे चलिए पूना का देख लीजिए, इन दोनों के बीच की दूरी को कम करके उसने एक बिल्कुल नया चीज ला दिया, माने आर्थिक विकास के लिए जो हम जब, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक हमारा ये पाई, इकोनॉमिक पाई बढ़ेगा नहीं, तब तक हमारे देश के लोगों की समृद्धि, लोगों के जीवन की जो स्तर में उसमें सुधार नहीं हो, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा काम हमारे एक्सप्रेसवे, हाईवेज और इसके माध्यम से भारत सरकार कर रही है, और भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से राज्य सरकार भी इसके ऊपर काफी सारा, आज महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमाम सारे जगह इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। अब आपका जहां तक रेल का सवाल है, रेल में देखिए कि पिछले 10-12 साल में टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक उनका एक संदेश है कि पहले चीजों को स्केल अप करिए, पहले चीजों को नई टेक्नोलॉजी को लाइए, फिर स्पीड अप करिए, और फिर स्केल, बड़े ऐसे स्केल जो कि संभव न हो, तो स्किल, स्पीड एंड देन स्केल। तो आज देखिए कि जिस प्रकार से रेलवे का ट्रैक हमारा लगभग 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया, रेलवे जो नए ट्रैक बने हैं, पिछले जो अगर हम देख रहे थे, जो डाटा देख रहा था, जो पिछले 10 साल में बना था उससे दूने से ज्यादा जो पिछले 10 साल में बना, यानी उस रफ्तार से बना, और उसमें रेल में वंदे भारत से जो था, वंदे भारत से इतना सारा सारा जो जुड़ रहा है, बहुत हाई स्पीड। और सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या है, ये हमारा आत्मनिर्भर भारत है, इसकी जो वंदे भारत की जो ट्रेन है, वो हम विदेशों से, पहले तुम इस तरह की चीजें विदेशों से लाते थे, कितना हमारा पैसा खर्च होता था, कितना हमारा फॉरन एक्सचेंज लगता था, आज सब कुछ चीजें हमारे देश बन रही है, न केवल हमारे जो कोचेज बन रहे हैं, बल्कि हमारी पूरी टेक्नोलॉजी, चाहे कम्युनिकेशन सिस्टम हो या सारा का सारा चीज हमारे यहाँ पे बन रहा है। अब एक तरफ तो हमने स्पीड लाई, दूसरे तरफ हमारे देश में इतने सारे लोग हैं जगह जगह अपनी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए एक अफोर्डेबल ट्रेन, अफोर्डेबल, कंफर्टेबल, स्पीड भी और सारी फैसिलिटीज भी, सिक्योरिटी के लिए जो कवच ऑटोमेटिक सिस्टम, जो हमारा जो कवच का जो सिस्टम है, आज तेजी से कवच का पूरा पूरा प्रसार हो रहा है
1: जी।
0: अब ट्रेन का तो एक तो डिस्टेंस हो रहा है, अगर आप देखेंगे शहरों के भीतर एक जो नेटवर्क होता है मेट्रो का, अब मेट्रो नेटवर्क हम 2014 में तकरीबन 5 शहर में 250 किलोमीटर भी नहीं था, आज करीब 1150 किलोमीटर मेट्रो हमारे 26 शहरों में चल रहा है, और जो काम चल रहा अनदर 1000 किलोमीटर पर काम चल रहा है, और लगभग हम पूरी तरह से इसमें आत्मनिर्भर हो चुके हैं। मैं तो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रहा हूं, जिस प्रकार से आज हम मेट्रो कोचेज जो ले रहे हैं, सारे के सारे हिंदुस्तान में बन रहे हैं, हम विदेशों में अपने कोचेज, यहाँ के हिंदुस्तान के बने कोचेज विदेशों में, मुझे बड़ी खुशी होती थी कि जब कोई हमारे पास एक ट्वीट करता था, ब्रिस्बेन से ट्वीट कर रहा है, कोई जोहान्सबर्ग से कर रहा है, कोई कनाडा के शहर से कर रहा है, कि हम आज मेड इन इंडिया कोच में बैठे हुए, तो हम पूरी टेक्नोलॉजी को आत्मनिर्भर कर रहे हैं। और जो पहला जो हमारा एक, पहले तो हम ये मेट्रो को लेकर के इतने सारे शहरों के भीतर कनेक्टिविटी किए, अब शहरों से शहरों के बीच में
1: जी,
0: जैसे दिल्ली से मेरठ के बीच में जो हमारा नमो भारत, अब 82-83 किलोमीटर की दूरी करीब 15 स्टेशनों पर रुकते हुए आप केवल 55 मिनट में कर लेते, कहां 3 घंटे पहले लगते थे, 55 मिनट में कर सकते हैं, और इसे उसका क्या फायदा हुआ, आज उसके बीच तमाम सारे ग्रोथ सेंटर बनने चालू हो गए, तमाम सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी पूरा का पूरा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, वो सोच कनेक्टिविटी तो एक बेसिस है, लेकिन कनेक्टिविटी के आधार पर आर्थिक उन्नयन
1: जी,
0: कैसे लोगों की, हम अपने बिजनेस की, मैन्युफैक्चरिंग की, लोगों की अदर एक्टिविटी को बढ़ा करके कैसे लोगों का जीवन का स्तर को सुधार करें।
1: बिल्कुल ठीक बात है। रेल की चर्चा को थोड़ा रवि जी आपकी तरफ मोड़ते हैं, और दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज की बात करें, या देश के पहले केबल स्टेड अंजी खड ब्रिज, और भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट न्यू पंबन ब्रिज का निर्माण की बात करें, यह सिविल इंजीनियरिंग की उपलब्धि तो है ही, साथ ही यह सामरिक और भौगोलिक दुर्गमताओं पर भारत की तकनीकी विजय है। आपसे समझना चाहते हैं कि ऐसे कठिन प्रोजेक्ट्स में इंजीनियरिंग विल पावर और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की गति को किस तरह साधा गया, और इसे देश में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिला।
2: देखिए आनंद जी, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी योजना परियोजना हो, इच्छा शक्ति अगर नहीं है तो वो पूरी नहीं हो सकती। अभी दुर्गा शंकर जी ने बताया कि दैनिक यात्रियों की रोजमर्रा की जीवन में मेट्रो रेल बहुत उपयोगी है, शहर टू शहर, छोटे शहर से छोटे शहर तक रैपिड रेल यानी नमो भारत जो सेवा शुरू की गई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और देश के दुरूह और दुर्गम क्षेत्रों में भी रेलवे ने, रेलवे के इंजीनियरों ने बहुत कमाल दिखाए हैं। आपने चिनाब रेलवे ब्रिज का उल्लेख किया, पहले कितने लंबी यात्रा होती होगी जब ये रेलवे ब्रिज नहीं रहा होगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बनाया गया है, ये इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। इसकी ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर है, और ये एफिल टावर जो पेरिस में है उससे भी 35 मीटर ऊंचा है। इसकी लंबाई 1315 मीटर है, लागत इसमें आई 1486 करोड़ रुपए की, और इसकी मजबूती इतनी है कि ये 200

0: 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आने वाली हवाओं और रिक्टर स्केल पर अगर कोई 8 की तीव्रता तक भूकंप आता है उसको भी ये सहज ही झेल सकता है। इसके अलावा आपने अंजी खड्ड ब्रिज का उल्लेख किया, इसकी विशेषता ये है कि ये भी जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर बना भारत का पहला केबल के सहारे लटका हुआ पुल है। कटरा और रियासी को ये पुल आपस में जोड़ता है। ये उधमपुर श्रीनगर बारापुला रेल लिंक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी लंबाई 725.5 मीटर है, ऊंचाई नदी तल से 331 मीटर है। इसमें 96 केबलों का इस्तेमाल किया गया है और मुख्य स्तंभ नींव से 193 मीटर ऊंचा है और इसकी क्षमता है कि 213 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली जो हवाएं हैं उनको ये झेल सकता है। वो इस रफ्तार से चलने वाली हवाएं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और इस पर रेलगाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर सकती हैं। एक और दक्षिण भारत के ऐसे ही अद्भुत पुल की बात कर लें, ये है पाम्बन ब्रिज जो तमिलनाडु में मंडपम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला है। मोदी सरकार के कार्यकाल में इसको नया स्वरूप दिया गया, नया बनाया गया। जो अब नया पुल बना है ये पाम्बन ब्रिज तमिलनाडु में, वो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। ये आधुनिक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक और ऑटोमेटेड सिस्टम पर काम करता है। डबल ट्रैक वाला ये ब्रिज, इस पर ट्रेनें 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुजर सकती हैं। जब आपने बताया, उल्लेख किया कि जब कोई जहाज निकलना होता है पुल के रास्ते से, तो ये अद्भुत तकनीकी क्षमता है इस पुल की कि 5 मिनट के अंदर पूरा पुल दो हिस्सों में विभाजित होकर ऊपर की ओर उठ जाता है। तो ऊंचे समुद्री जहाज हैं वो इसके रास्ते से निकल जाते हैं और फिर अगले 5 मिनट में इसको वापस पुल की शेप में लाया जा सकता है।
1: श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों पर आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में प्रस्तुत है विशेष अंक बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर नीति को दिशा देने वाले पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार रवि पाराशर जी। रेलवे के बाद अगर एयरपोर्ट की चर्चा करें मिश्रा जी, तो और हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि जो धौलेरा एक्सप्रेसवे बना या जो धौलेरा एयरपोर्ट बना, उसको भारत के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन के नजरिए से विकसित किया गया। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में, जो कुछ समय पहले तक अगर 2014 से पहले की बात करें तो सरकारी लाल फीताशाही बहुत ज्यादा चरम पर थी, तो गवर्नेंस रिफॉर्म्स किस तरीके से किए गए कि ये बड़े प्रोजेक्ट सफल हुए? साथ ही साथ ये जो धौलेरा एयरपोर्ट या फिर एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ी, इससे भारत का वैश्विक स्तर पर कितना समृद्ध प्रभाव पड़ा? और जो हम निवेश की बात करते हैं कि विदेश से निवेश आए, उसमें एयरपोर्ट्स ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई?
2: बिल्कुल ठीक आपने कहा, धौलेरा एयरपोर्ट जो अभी बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है
0: जी।
2: धौलेरा एक ऐतिहासिक स्थान है, लोथल का आपने नाम सुना होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जो है जुड़ा हुआ वो स्थान है। मुझे वहां भी जाने का सौभाग्य मिला। वहां किसी समय इतना बड़ा सी पोर्ट हुआ करता था, इतनी सारी समृद्धि उस जमाने में, बहुत सारे बीट्स के काम दुनिया भर से वहां का संबंध हुआ करते थे। आज वहां पहुंचना भी बड़ा मुश्किल था। तो जैसे मैंने बताया कि एक तो वहां पे जाने के लिए अहमदाबाद से डायरेक्ट वहां के सड़क धौलेरा के लिए बन गई है,
1: धौलेरा एक्सप्रेस वे।
2: अभी हाल में जो कैबिनेट के डिसीजन के साथ एक अप्रूवल किया गया, एक वहां पे भी रेल लिंक, भी फास्ट रेल लिंक भी जो है अहमदाबाद से डायरेक्टली वहां धौलेरा से जोड़ने के लिए एक रेल लिंक भी सैंक्शन कर दी और वहां पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है। अब धौलेरा जो है एक बहुत बड़ा स्पेशल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट सेंटर, जहां पे आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आ रही है, तमाम सारे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को मतलब के जुड़ने का मतलब बहुत सारी किस्म की इंडस्ट्रीज वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है
1: जी।
2: आज एक वो नया स्वरूप लेकर के आगे बढ़ रहा, और ये केवल धौलेरा की कहानी नहीं है बल्कि उसके जैसे आज देश में तमाम सारे जो नए नए एयरपोर्ट्स बने, जो 174 मैंने आपने बताया कि 64 से लेकर के 174 से बढ़कर के 160-170 के आसपास आज एयरपोर्ट बन गए हैं और सारे चालू हो गए हैं। उन एयरपोर्ट्स पे अब जैसे नवी मुंबई का एयरपोर्ट है
1: जी,
2: या गुवाहाटी का जो नया एयरपोर्ट बना है
1: जी,
2: जेवर का जो नया एयरपोर्ट बना है, आपका चित्तूर का वहां साउथ का जो एयरपोर्ट बना है, जो गोवा में एक अल्टरनेटिव एयरपोर्ट बना, मोपा का जो एयरपोर्ट बना
1: जी,
2: हाँ, मैंने इतने सारे देश में जो एयरपोर्ट्स बने, एयरपोर्ट से हमने दुनिया से कनेक्टिविटी, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है, तो दुनिया से अपने आप को जोड़ा हमने, लॉजिस्टिक्स को बहुत सारा, इससे हमारा काफी सारा जो है इससे जो व्यापार होगा, व्यापार हमारे इसमें काम आएगा। और एक आम आदमी के लिए जिस प्रकार का जो एक एयर फेयर हो गया है, आम आदमी को भी, क्योंकि समय बचाना उसको, उसके लिए भी उतना मत

0: पड़े, तो वो जो आपने जो बात कही, एक हवाई चप्पल में चलने वाला आदमी हवाई सफर पर कर रहा है, एक देश का एक नई तस्वीर उभर करके सामने आई है।
1: रवि जी, अगर इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, बतौर पत्रकार आप कितना बड़ा बदलाव देखते हैं? 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स इस देश में हैं और हम उड़ान योजना की बात कर रहे हैं, और अब उड़ान 2.0 की भी बात हो रही है जिसमें और सुविधाएं आम नागरिकों को मिले। हमने ये भी देखा कि सरकार ने एयरपोर्ट्स पर मिलने वाली सुविधाओं को भी आम नागरिक के ध्यान में रखकर बहुत बदलाव किए हैं, चाहे वो वहां पर फूड आइटम्स के प्राइस को कम करना हो या फिर पैसेंजर्स के लिए लाउंज की सुविधा उपलब्ध कराना हो। बतौर पत्रकार जमीनी स्तर पर कितना बदलाव देखते हैं आप?
2: आनंद जी, जमीनी स्तर पर एक पत्रकार के तौर पर जो मेरे अनुभव है, मेरा करियर 1988-89 में पत्रकार के तौर पर शुरू हुआ था, और उस समय मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि जो मेरा वेतन था उससे मैं हवाई यात्रा कर सकूंगा। और आज इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है और जो मेरी स्थिति है, आज मैं जब चाहूं समय बचाने के लिए हवाई यात्रा मेरी सीमा में, मेरी जेब की सीमा में, तो ये फर्क बहुत धीरे धीरे आया है और पिछले 10-12 साल से बहुत तेजी से हम देख रहे हैं। आपने बताया कि 2014 में हवाई अड्डे केवल 74 थे, अभी 165 हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए। पहले क्या होता था कि आप घर के पास हवाई यात्रा करने के लिए भी आपको सड़क से बहुत लंबी चौड़ी यात्राएं करनी पड़ती थी, जो स्थिति आज नहीं है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को किया गया, 15 जून 2026 से यहां से कमर्शियल उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। हिंडन एयरपोर्ट से छोटे छोटे शहरों की हवाई कनेक्टिविटी बनाई गई है, तो दिल्ली NCR के जो लोग हैं उनके लिए, और दूर दराज विदेश से आने वाले और दूर दराज के क्षेत्रों से राजधानी NCR क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए हवाई यात्रा की कितनी सुगमता हो गई है, कितनी सुलभता हो गई है, ये आज देखने को हमें मिलता है। और हवाई अड्डों, जो पुराने हवाई अड्डे थे, इस सरकार ने केवल उनकी क्षमता ही नहीं बढ़ाई, उनकी साज सज्जा, उन पर जैसे आपने कहा कि खान पान की सुविधाएं, उनका जो लुक भारतीय विरासत और भारतीय संस्कारों से जीवंत रहे, ऐसे प्रयास भी किए। हवाई अड्डों की क्षमता बढ़ाने के लिए नए टर्मिनल भवन बनाए गए हैं। तो एक पत्रकार के तौर पर पिछले 12 साल के अनुभव मैं ये कह सकता हूँ कि जो लोग पहले हवाई यात्रा की कल्पना नहीं कर सकते थे अपने बजट के हिसाब से, वो आज हवाई यात्रा की कल्पना, अगर उन्हें कहीं अपेक्षाकृत जल्दी पहुंचना है, तो कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। कार्यक्रम में अब चर्चा करते हैं सागरमाला की। श्रोताओं, सागरमाला के 5 प्रमुख पिलर्स हैं: पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, पोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट और कोस्टल शिपिंग। लेकिन मिश्रा जी, जो मेरा आपसे सवाल है वो वाटर मेट्रो को लेकर है। 2026 में, यानी इसी वर्ष, नेशनल वाटर मेट्रो पॉलिसी का ड्राफ्ट मसौदा पेश किया गया। सवाल ये है, और बहुत सारे श्रोता भी ये जानना चाहते हैं कि जो वाटर मेट्रो की पहल है, एक तो उससे भूमि अधिग्रहण की जो स्थिति है वो खत्म हो जाएगी, उसमें भी हम कई सारे पेंच देखते थे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना वाइबल है भारत जैसे देश में? क्या इसको एक शहर से दूसरे शहर तक जोड़ा जा सकता है? क्या है इसकी वर्तमान स्थिति और वास्तविक धरातल पर कब हम इसे देखने वाले हैं?
0: बहुत अच्छी बात कही आप आनंद जी आपने। ऐसा है, जैसे मेट्रो आया, मेट्रो का क्या मकसद है कि शहर में आप हर किलोमीटर पे आपके स्टेशन हो, 800 मीटर से लेकर के 1000 बाज हो, कि कहीं से कहीं पहुंचना तो आप जो है 10-12 मिनट में आप एक मेट्रो स्टेशन में पहुंच सकते हैं
1: जी।
0: उसे पूरा शहर, आज दिल्ली में 400 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो का नेटवर्क बना हुआ है, तो दिल्ली में कितना आसान हो गया, ट्रेवल कितना आसान हो गया, और भी बढ़ रहा है। अभी नए उसका जो फेज 5 का, उसके मेट्रो का काम चल रहा है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे शहर हमारे देश में है जहां पे या तो समुद्र या वहां पे पानी का नेटवर्क बना हुआ है
1: जी।
0: अब वहां पे पहले क्या होता था कि पुराने जमाने वाली जो बड़ी बड़ी बोट चलती थी और वो आराम से 3-4-5 किलोमीटर की रफ्तार से चली करती थी, आपको घंटों लग जाता था, कोई सुविधा नहीं होती थी धूप में और उसमें आप परेशान होते थे
1: जी।
0: मेट्रो ने क्या लाया? मेट्रो आपको कंफर्ट लाया, कनेक्टिविटी लाया, आपको जो पंक्चुअलिटी लाया
1: जी,
0: आपकी चीजों को आसान कर दिया, उसके पूरी तरह से जा सकते हैं। पहले जो इन शहरों में क्या होता था, कोची शहर में, क्योंकि मैं उस समय भारत सरकार का सेक्रेटरी था इसी मिनिस्ट्री का, और हमारी उसमें हमें सब सारा चीज डेवलपमेंट हो रहा था, तो आप कोची में अगर आप देखें तो वहां पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दूरी तो मुश्किल से 2 किलोमीटर की होगी, 1.5 किलोमीटर की होगी, लेकिन आपको 2500-3000 किलोमीटर जाना पड़ता था, उसका समुद्र का जो अंदर गया उसे 30 किलोमीटर जाकर के आपको घंटों लग जाते थे
1: जी।
0: अगर इसको ऐसा आपको महसूस हो जाए कि जो वहां पे स्टेशन बना हुआ वो स्टेशन मेट्रो स्टेशन टाइप का, एयर कंडीशन है, बैठने के लिए

0: की जगह सारी की सारी सुविधाएं हैं और आपको कंफर्ट है, अगर आप कुछ खाना पीना चाहे कुछ खरीदना चाहे सारी की सारी फैसिलिटीज है।
1: जी
0: ऐसा स्टेशन अगर आपको बन जाए तो आप कहीं से कहीं आप कनेक्ट कर सकते हैं।
1: जी
0: अब तो काफी कुछ चीजें हम आत्मनिर्भर भी हो चुके हैं। उस समय इस चीज को कोची में डेवलपमेंट शुरू किया गया और आज मुझे खुशी है कि वहां पे 20 स्टेशन में इस प्रकार के कंफर्टेबल बोर्ड्स और रेल मतलब स्टेशन वगैरह तमाम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। अब ये एक हमारे लिए नया अवसर पैदा हो गया और नया अवसर ये पैदा हो गया कि इसके हिसाब से अब आप हमारे देश में ऐसे बहुत सारे, क्योंकि हमारे देश में करीब 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है और उसमें कई सारे जगह पे इस प्रकार की चीजें हैं। तो अगर जहां पे है तो वहां पे ऐसे 18 शहर चुने गए हैं जहां पे इस प्रकार की वाटर मेट्रो की सुविधा हो सकती है। इसी में मैं आपको एक और चीज बताऊं कि केवल वाटर मेट्रो के अलावा अब एक नई चीज पहले बार देश में होने जा रहा है, उसमें अगेन मैं एज ए सचिव मुझे मौका मिला काम करने का। भारत में पहले बार हमको ट्रांसपोर्ट को एयर के माध्यम से यानी रोपवे, अभी तक हमारे देश में रोपवे का उपयोग होता था, वो कई कोई धार्मिक स्थान है वहां पे जाने के लिए लोगों को केवल टूरिस्ट पर्पज से, बकायदे आप अपना सामान लेकर के कहीं से कहीं आप जा सकते हैं। और बनारस में बहुत जल्दी मैं आशा करता हूं कि ये जो रोपवे जो बनेगा, ऐसे शहरों में बहुत कंजेशन आज लैटिन अमेरिका के कई सारे शहरों में, यूरोप के कई सारे शहरों में रोपवे का उपयोग करते हैं ट्रांसपोर्ट के तौर पर। ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने नया चीज और पहले बार उनके ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहला हमारा देश का जो ट्रांसपोर्ट रोपवे, बहुत जल्दी मैं आशा करता हूं कि शुरू होने जा रहा है।
1: कार्यक्रम में समय कम है, एक एक सवाल आप दोनों से बहुत संक्षेप में। रवि जी आपसे समझना चाहेंगे कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो बॉर्डर एरियाज हैं हमारे, चाहे वो लद्दाख हो, अरुणाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो या उत्तर पूर्व के सीमावर्ती क्षेत्र हो, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 2014 के बाद हमने देखा है कि वहां भी बहुत तेजी से विकास हो रहा है। किस तरह देखते हैं इस बदलाव को?
2: आनंद जी देखिए, पिछली सरकारों की जो नीति थी उस नीति को बिल्कुल मोदी सरकार ने उलट दिया है। मुझे याद है कि 2013 में तत्कालीन रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने पार्लियामेंट में बताया था कि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास इसलिए नहीं करती है केंद्र सरकार कि कहीं जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करें और उसका फायदा हमारे दुश्मन न उठा लें, इसलिए जैसा है दूभर को दूभर बना रहने दीजिए। लेकिन 2014 में अगले साल मोदी सरकार केंद्र में बनते ही ये नीति बिल्कुल आमूल चूल बदल दी गई और अब स्थिति ये है कि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। वहां सुरंगों का विकास, अटल टनल और बहुत सारी सुरंगें बनाई जा रही हैं जो आपातकाल में बिगड़े हुए मौसम में सेना के आवागमन को बहुत सुगम बनाती हैं। बहुत सारे बंकर सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिकों को जो बसे हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे स्थानीय स्तर पर काम किए जा रहे हैं। सड़कें बहुत मजबूत और पक्की बनाई जा रही हैं और इसके अलावा जो हमारे रोड कनेक्टिविटी की बात हम कर रहे थे, हम वहां भी देखते हैं कि उनको इतना मजबूत बनाया जा रहा है कि हमारे हवाई जो हमले करने में सक्षम जो विमान है, लड़ाकू विमान, उन पर टच लैंडिंग कर चुके हैं यानी उतर सके अगर ऐसी स्थिति हो तो। तो सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के मामले में मोदी सरकार बहुत प्राथमिकता दे रही है और पिछली सरकारों के तमाम नीतियों के उलट ये काम अब वहां हो रहा है।
1: मिश्रा जी, कार्यक्रम के समापन में बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की गति है इस देश में, उससे विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में कितना हमें आसानी होने वाली है।
0: मैं इसके पहले एक और चीज जोड़ना चाहूंगा जो फ्रीट कॉरिडोर, क्योंकि हमने अभी तक मोबिलिटी जो है पैसेंजर मोबिलिटी की ज्यादा बात की, जो हमारा डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर ईस्टर्न और वेस्टर्न बनकर के लगभग तैयार हुआ, 2,800 किलोमीटर से ज्यादा है। इससे पूरा का पूरा एक हमारा फ्रीट ईस्ट से लेकर वेस्ट, वेस्ट से लेकर के ये सारा इतना बड़ा ये फैसिलिटी बन गई है। और नया इसके बाद फिर से अभी सूरत से लेकर के दुला वो भी प्रारंभ किया गया, उसको शुरुआत का अनाउंस किया गया। तो देश में हमारा लॉजिस्टिक का मूवमेंट इतना आसान किया गया जिससे लॉजिस्टिक का कॉस्ट बहुत हमारा कम हो जाएगा। देखिये, कोई भी देश आगे बढ़ता है तब जबकि उसके लिए ऐसा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए जिससे लोगों का मूवमेंट आसान हो जाए, गुड्स का मूवमेंट आसान हो जाए, सारा का सारा प्रोसेसेस हमारे आसान हो जाए और वो सब कुछ बनकर के तैयार है या तैयार होता हुआ दिख रहा है। देखिए, हम बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि 100% हम वहां पहुंच चुके, तैयार होता हुआ दिख रहा है और ये सारा का सारा जो धरातल तैयार की जा रहा है ताकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 में भारत को विकसित बनाने का, वो हम विकसित होकर के रहेंगे। क्योंकि जब ये सब कुछ हो जाएगा तो एक तरफ हमारा मेक इन इंडिया हो रहा है, मेक फॉर द वर्ल्ड हो रहा है, एक तरफ हम जितनी सारी नई टेक्नोलॉजीज है, आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, सब में हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे ग्रीन एनर्जी हो, हर तरह की हर चीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम

0: ये इकोनॉमी को लुब्रिकेशन लुब्रिकेट कर रहा है। एक और भी बड़ा इसका इंपॉर्टेंट पहलू है, ये सारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर से इतना बड़े लेवल पे रोजगार क्रिएट हो रहा है
1: जी,
0: और उस रोजगार के क्रिएट होने से लोगों की इनकम बढ़ रही है।
1: जी
0: तो एक इनकम तो एक हमारे युवा ज्योति जो नए आजकल के बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं उनके लिए इतना बड़ा रोजगार का साधन भी इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उनको नए साधन क्रिएट कर रहा है। ये हमारे देश की बदलती हुई तस्वीर है। तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आपका जन सेवा से देश सेवा की बात है, वो इस प्रकार की चीज करके आज देश को हमारे एक नए लेवल पे, एक नए भारत को, आत्मनिर्भर भारत, एक विकसित भारत की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं।
2: बिल्कुल, जब बुनियादी ढांचे के पहिए तेजी से घूमते हैं तो पूरे देश की प्रगति को नई रफ्तार मिलती है। आज भारत सिर्फ रास्ते नहीं बना रहा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के समृद्ध भविष्य की नींव रख रहा है। डॉक्टर मिश्रा, आपका, रवि पाराशर आपका, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद। धन्यवाद आनंद जी।
2: ये थी बुनियादी ढांचे की वो नई रफ्तार जो आज भारत के हर कोने को एक दूसरे से जोड़ रही है और देश को आत्मनिर्भरता के साथ साथ समृद्धि के मार्ग पर आगे भी बढ़ा रही है। जनसेवा से देश सेवा की इस विशेष श्रृंखला के आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 23वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार। इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार के पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और राजनीतिक विश्लेषक रवि पाराशर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: और श्रोता दोस्तों, अब प्रस्तुत है हिंदी फिल्मी फरमाइशी गीतों पर आधारित फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश।
5: हेलो फरमाइश।
6: हेलो फरमाइश।
7: जी सर जी, जय श्री महाकाल।
6: जय श्री महाकाल।
7: सर जी, आपका निमिष श्रोता शिवा लोहट एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ सर।
6: जी शिवा जी, मैं चाहता हूँ कि कम से कम एक या दो हफ्ते लोग रुक के कॉल लगाए तो अच्छा रहता है।
7: जी सर जी, मैं इस बात का आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ सर
6: जी। जी, जी
7: इसमें क्या है और लोगों को भी मौका मिल जाता है, बोई बोई श्रोता आते हैं तो सर कार्यक्रम सुनने में मजा नहीं आता।
6: जी जी जी,
7: ये चीज है ना, नए लोग जुड़ते हैं तो कार्यक्रम में अच्छा लगता है सर।
6: जी जी जी जी, नई नई जानकारी मिलती है हमें नए श्रोताओं के जरिए।
7: और वो सर, मेरा आज मन नहीं था पर मेरे को आपको एक चीज बताना थी तो इसलिए मुझे कॉल करना पड़ा।
6: ओके, जी जी जी जी,
7: सर जी, हम मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि हमारे एक लिसनर थे और एक श्रोता थे बहुत ही अच्छे, शेख जफर हसन जी बिहार थे।
6: जी जी जी,
7: उनका निधन हो गया सर मंगलवार को।
6: ओहो जी, उनका कॉल बहुत आता था हमारे यहाँ पे।
7: जी बहुत अच्छी शेर और शायरी।
6: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल,
7: बादशाह थे वो।
6: जी जी जी,
7: तो मैंने कहा कि आपसे उनकी बातचीत होती रहती थी।
6: जी बिल्कुल बिल्कुल,
7: तो मैं आपको सूचित करूँ।
6: सही में सुन करके बहुत ही दुख लगा जी, काफी बार उनसे बात
7: हुई थी। एक और दुख की बात हुई कि नाना भाई भी आपको फिल्मी सितारे छोड़ के जा
6: जी
7: चुके हैं।
6: सिनेमा जगत के बहुत ही दिग्गज कलाकार नाना पाटेकर, उनका आज सुबह निधन हो गया।
7: बोलती थी सर जी। अब वो तो

0: जी, पूरन जी, गोल्डी जी और अमल जी, बिमल जी और जितने भी लिस्टर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सभी के लिए रहेगा और स्पेशली सर आपके लिए सर।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद, इस दुख की घड़ी में भी आपने हमें कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनते हैं शिवाजी, आपके पसंद का गाना।

0: हेलो फरमाइश,
1: मेरे प्यारे प्यारे सर को प्यार भरा नमस्कार।
0: प्यार भरा नमस्कार आपको भी हमारी ओर से। कैसी हो आप?
1: मैं बहुत सर बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं?
0: जी मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ।
1: मैं ग्राम गुनौरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सुरवे बात कर रही हूँ।
0: जी तनुश्री जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद मेरा कॉल रिसीव करने के लिए।
0: जी आप कॉल करेंगे और मैं रिसीव ना करूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
1: हाँ ये बात तो है, क्योंकि सर मुझे क्या, मुझे तो लगता है सभी श्रोताओं को आपसे बात करना, मतलब आप जैसे बात करते हैं ना सर, बहुत मन को सुकून मिलता है कि ईटानगर पर कॉल लगे और आपकी आवाज सुने तो दिल और पूरा दिन एकदम खुश हो जाता है।
0: क्या बात है, क्या बात है, इतनी तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी मधुर आवाज जब भी सुनने को मिलता है हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है।
1: जी सर, आप प्रस्तुति बढ़िया बढ़िया करते हैं ना, कॉलर से बातें भी बढ़िया करते हैं और हम जैसे श्रोताओं को भी आप जैसे आरजे हो ना तो बात करने में और भी खुशी होती है।
0: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: तो सर आपके यहाँ का मौसम कैसा है? जब सर आप बोले थे ना मैं आपके यहाँ बारिश भेजूंगा, सच में सर आपने वादा पूरा किया।
0: अच्छा बारिश हुई आपके वहाँ?
1: जी सर,
0: वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको जी।
1: बोला सर ईटानगर के सर बोले थे मैं आपके यहाँ पक्का बारिश भेजूंगा। हाँ
0: जी जी
1: ईटानगर
0: जी
1: वाले सर ने बारिश भेज दी हमारे यहाँ।
0: जी जी जी बहुत ही अच्छा लगा जानकर। अभी कैसा है मौसम आपके वहाँ?
1: अभी तो सर अभी तो धूप निकल आई है।
0: अच्छा अच्छा जी
1: जी जी नहीं हमारे यहाँ थोड़ी सी मतलब है गर्मी, दोपहर के टाइम पर गर्मी होती है पर फिर शाम जब होती है ना तो थोड़ी सी गर्मी कम हो जाती है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी, ये वैसे भी ठंडी का मौसम तो आ ही रहा है,
1: हाँ
0: उसी का
1: सर
0: असर है।
1: हमारे
0: हाँ
1: यहाँ
0: जी,
1: तो दिसंबर में ज्यादा सर ठंड पड़ती है
0: अच्छा
1: पड़ती है।
0: दिसंबर में, हमारे
1: हाँ
0: यहाँ तो शुरू हो ही गई है, सुबह शाम ठंडी होती है
1: जी
0: जी।
1: सर, तो सर मुझे गाना सुनना है, फिल्म का
0: हाँ
1: नाम
0: हाँ
1: तो सर
0: गाते
1: मुझे
0: हुए।
1: पता, हाँ गाती
0: हाँ
1: हुए पर फिल्म का नाम मुझे पता नहीं, मैं
0: अच्छा
1: गाना गा गाकर सुनाती
0: ओके
1: हूँ।
0: ओके, हाँ जी बिल्कुल।

0: ये गाना सर सुनना है।
1: ओके जी, बहुत ही प्यारा गाना है, मैं जरूर सुनाऊंगा आपको। और किन साथियों को सुनाना चाहोगे इस गीत को?
0: पहले तो आप है,
1: थैंक यू,
0: फिर मेरे पापा है, भगवान सिंह परमार जी है, अविनाश जी है, राकेश जी शिमला से, गंगाधर सावन को जय, रमेश प्रजापति जी है, राम बाबू शर्मा जी है, पुष्करनाथ शर्मा जी है, पंचराम शर्मा जी है, गोल्डी जी है, रिंकू दीदी है, दीपाली दीदी है, स्वाति दीदी है, आसाम से भाई अमोल भट्टाचार्य, रमेश पात्र और लाल सुंदर, सभी श्रोताओं के लिए।
1: ओके तनुश्री जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
0: बाय बाय।
1: ओके बाय बाय।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो जी भैया नमस्ते
0: जी नमस्ते। हेलो फरमाइश ईटानगर में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: जी भैया मैं रंजीता जांगरे बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी रंजीता जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे हो आप सुनाइए।
1: जी हम सब ठीक हैं भैया।
0: जी जी और आपने पहली बार हमें कॉल किया है।
1: जी
0: जी तो सबसे पहले तो मैं आपका आकाशवाणी ईटानगर के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ।
1: जी
0: और आशा करता हूँ आप आगे भी जुड़ते रहेंगे हमसे।
1: जी
0: जी जी तो चलिए कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं।
1: जी भैया फिल्म का नाम है करण अर्जुन और गीत के बोल है जय माँ काली।
0: जय माँ काली। ठीक है तो रंगीता जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आपके

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर
1: मैं असम से बात कर रहा हूँ।
0: जी, सुतापा जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बार।
1: आप कैसे हो?
0: जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हो।
1: मैं भी अच्छी हूँ, बढ़िया हो?
0: बढ़िया हो जी। आज
1: बढ़िया
0: कौन
1: हूँ।
0: सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे हेलो फरमाइश कार्यक्रम में।
1: आज गाना सुना दीजिए, गरम मसाला।
0: गरम मसाला।
1: पलक देखो जमी देखो,
0: पलक देखूं जमी देखूं। जी
1: जमी
0: जी
1: देखो।
0: तो सतापादी इस गीत को किन लोगों को।
1: करते हैं
0: हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी
1: पहले तो आपके लिए।
0: थैंक यू।
1: अनुपमा भट्टाचार्य, प्रमोदित चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती, श्रीकांत जोशी, लुगंदा वर्मा, विजय सिंह लकड़ा, पुरुषोत्तम कुमार, अमर सिंह साहू,
0: ओके, इन
1: सबके
0: साथियों के
1: लिए।
0: साथ आप सुनना चाहते हैं तो सुतापादी कॉल
1: बाबू
0: करने के लिए।
1: आचार्य सिंधुदास।
0: ओके, तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: थैंक यू।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी सर, नमस्कार सर।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: सर जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। सर
0: जी, हमारे नियमित श्रोता लोकेंद्र जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए, कैसे
1: धन्यवाद
0: हो
1: सर।
0: आप? आपके वहाँ का
1: बस
0: मौसम
1: बिल्कुल
0: कैसा?
1: सर जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं
0: रेडियो से
1: और
0: जुड़े रहते हैं।
1: रेडियो से जुड़े रहते हैं,
0: क्या
1: मस्त
0: बात
1: रहते हैं।
0: है, क्या बात है, क्या बात है।
1: और कार्यक्रम का प्रसारण तो कल होगा।
0: जी जी बिल्कुल।
1: आज 8 अक्टूबर है। 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं सर।
0: जी, हमारे सभी वायु वीरों को बहुत बहुत सलाम, दिल से हम नमन
1: बिल्कुल
0: करते हैं, उन्हें
1: सर,
0: सलाम करते हैं।
1: हमारे भारतीय सेनाओं को, जितने भी हमारे थल सेना, वायु सेना और जितने भी हमारे सैनिक भाई हैं, उन सब सैनिक भाइयों के वीरता को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनके कारण ही आज हम देश में सुरक्षित हैं।
0: बिल्कुल सही कहा जी, उन्हें प्रणाम
1: क्योंकि
0: करते हैं,
1: देश
0: नमन करते
1: के
0: हैं।
1: चारों सीमाओं पर हमारे सैनिक भाई तैनात हैं हमारी सुरक्षा के लिए, क्योंकि
0: जी।
1: वह बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, और तभी हम चैन की नींद सो पाते हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने जी, उनकी इस
1: तो
0: कठोर मेहनत के कारण ही हम आराम की नींद सो
1: जी
0: रहे हैं।
1: जी बिल्कुल सर जी। और भारतीय सपूत जितने भी हैं जो सेना पर काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो ये हम कार्यक्रम तो जैसे कल प्रसारण होगा, पर
0: जी
1: 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं, तो ऐसे में वायुसेना के जो जाबाज खिलाड़ी हैं, जो अपना कर्तव्य दिखाते हैं, और आपने देखा होगा कि एयर स्ट्राइक की

0: जी जी
1: भारत की
0: जी
1: तरफ से
0: हाँ जी हाँ जी
1: मात्र 40 मिनट 20 मिनट के अंदर उन्होंने पूरी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया और हमारी सुरक्षा, देश की सुरक्षा की उन्होंने।
0: जी ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन्होंने
1: जी,
0: जी
1: ऑपरेशन
0: हाँ जी
1: सिंदूर में उन्होंने, और जैसे तो भारतीय सेनाओं का परचम पूरे देश में हर जगह भारतीय सेनाओं का मान है,
0: जी
1: तो
0: पूरे विश्व में
1: सभी जगह तैनात रहते हैं वो।
0: जी जी जी सिर्फ हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में हमारी जो सेना है उनका परचम लहराता है हमेशा
1: जी सर जी,
0: जी
1: तो हमारे जितने भी भारतीय सैनिक भाई हैं उनके लिए, मतलब ये वायुसेना दिवस पर मेरा एक सॉन्ग बॉर्डर पिक्चर का है सर,
0: अच्छा जी
1: इसमें गाना है ना सर वो, हिंदुस्तान हिंदुस्तान मेरी जान,
0: हाँ जी हाँ जी जी है गाना जी ओके और किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को
1: हमारे साथी भाई हैं दिलीप आहूजा जी हैं, सुनील झा जी हैं भोपाल से, भगवान सिंह प्रेम सिंह सिसोदिया जी हैं, और गौतम राय बोले जी हैं, तुकाराम जाधव जी हैं, गंगाधर जी हैं, और हमारी हेलो फरमाइश एकता रेडियो श्रोता मित्रों के लिए रहेगा यह गीत,
0: जी
1: और आकाशवाणी ईटानगर के लिए भी यह गीत रहेगा, हिंदुस्तान मेरी जान।
0: और लोकेंद्र जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनते हैं आप

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति हो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश ईटानगर।
1: मैं दिनेश शर्मा कैसे
0: दिनेश शर्मा कॉल करा करने बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों पास अपने कॉल करी से।
1: फोन तो लाइन तो पुआ ना सी माने।
0: अच्छा अच्छा अच्छा होय होय। आरो केनो को आसे
1: आसे आसे काम दे आसु।
0: अच्छा ड्यूटी आसे क्या?
1: ड्यूटी छ
0: होय। ओके वाह वाह वाह ड्यूटी प्रो अपने कॉल करी से है करने बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज ही की गाना हुनिबो
1: मारे कुमार सानु गीत उदार लेबो।
0: अच्छा कुमार सानु जी कोने एता गीत আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বজাই দিম। আর কাকা শুনাব?
1: বনরী দত্ত, নিতান রেখা, দীপালেখা, মন্টু বরা, সহতরা।

0: हेलो फरमाइश
1: फरमाइश सर,
0: जी,
1: सर्दी को
0: नमस्कार।
1: राधे राधे।
0: हेलो फरमाइश ईटानगर।
1: हेलो फरमाइश ईटानगर, सर्दी को राधे राधे।
0: राधे राधे
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ, बैरसिया जिला भोपाल।
0: जी। केसरी सिंह जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए, कैसे हो आप?
1: बहुत बढ़िया सर, और आप कैसे हैं?
0: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
1: बढ़िया ही रहना चाहिए, जिंदगी में स्वस्थ हैं तो सब कुछ है।
0: जी, इसीलिए कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ।
1: बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल।
0: हाँ जी, हाँ जी। और आपके वहाँ मौसम कैसा है आज?
1: आज सर धूप खिली हुई है, अभी तो मौसम बढ़िया है।
0: अच्छा, आपके वहाँ सर्दी कब से शुरू होती है?
1: सर्दी बस यूं समझ लीजिए सर, रात में थोड़ी थोड़ी लगने लगी है, हल्की हल्की।
0: अच्छा, अभी से शुरू हो गई है।
1: हाँ अभी बस
0: ओके।
1: शुरुआत ही है।
0: जी, तो हमारे यहाँ पे भी वैसा ही है। सुबह शाम ठंडी होती है और
1: जी
0: दिन को अच्छा ही रहता है मौसम।
1: जी
0: जी,
1: जी जी
0: तो इस मौसम की जानकारी के बाद बताइए, आप कौन सा फिल्म का गाना सुनना पसंद करेंगे आज?
1: आज आप सर सुनवा दीजिएगा, मूवी का नाम है याद रखेगी दुनिया।
0: ओके, याद रखेगी दुनिया। हाँ जी
1: जी, और गाने के बोले तुझे तब ने बनाया किस लिए।
0: ओके जी, जरूर सुनाएंगे। और किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
1: ये हमारे रामबाबू शर्मा जी हैं, गजराज लोधी जी, मामीलाल चंदेल जी, और भगवान सिंह परमार जी हैं, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, लोकेन वर्मा जी, सुनील झा जी, गौतम राय भोले जी, राजू यादव जी, और राजन गंगवार।
0: ओके, इन साथियों के साथ सुनना चाहते हैं आप इस गीत को?
1: और इसमें आप भी शामिल रहेंगे।
0: जी मैं भी जरूर सुनूंगा आपके साथ। मुझे भी शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो केसरी जी, सुनते हैं आपके पसंद।

0: हेलो फरमाइश
1: परम आदरणीय बागरा साहब, सादर सप्रेम, प्यार है नमस्कार,
0: प्यार भरा नमस्कार हमारे नियमित श्रोता शारदा प्रसाद जी को।
1: जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना, निसंदेह मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति गोवर्धन रोड मथुरा से आज से वार्तालाप कर रहा हूँ आकाशवाणी ईटानगर के माध्यम से।
0: जी शारदा प्रसाद जी, आपके बोलने का जो अंदाज है वो सबसे जुदा है, इसलिए हम आपको पहचान ही जाते हैं।
1: आज कम से कम भीड़ चलने से पहले अपनी एक अलग छवि बना लेनी चाहिए, एक अलग पहचान बनानी चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जिससे हमारी जो छवि, हमारी पहचान है सबके दिल दिमाग में छाई रहे।
0: जी मेरी आवाज ही पहचान है घर याद रहे।
1: जी बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत है।
0: जी आपकी आवाज पहचानते हैं हम, आप और आपके बोलने के अंदाज से ही हम आपको पता चल जाता है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शारदा प्रसाद प्रजापति
1: मथुरा से।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: मानवर आप कैसे हैं?
0: जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ शारदा जी, आप सुनाइए आप कैसे हो?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और आपसे वार्तालाप करके बहुत ही आनंद की अनुभूति करता हूँ। मौसम भी खूबसूरत है, सुहाना है और ऐसे खूबसूरत सुहाने मौसम में बहुत सारे भक्त श्रद्धालु पर्यटक आते हैं मथुरा वृंदावन भ्रमण के लिए और अपने इष्ट देव के दर्शन करके अभिभूत हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और यहाँ का खुशनुमा वातावरण देखकर उनके आनंद की अनुभूति होती है।
0: क्या बात है क्या बात है। शारदा प्रसाद जी आपके वहाँ सर्दी कब से शुरू होती है, कौन से महीने से?
1: जी अब ये शरद ऋतु प्रारंभ ही होने वाली है, कहना चाहिए कि 10 तारीख के बाद शरद ऋतु प्रारंभ हो जाएगी।
0: ओके
1: 11 तारीख यानी संडे को, और शरद ऋतु से ही मान लीजिए कि ठंड का मौसम प्रारंभ होता है।
0: अच्छा अच्छा जी, हमारे यहाँ तो सितंबर से ही थोड़ी थोड़ी ठंड होना शुरू हो जाता है। जी
1: हाँ, अभी तो यहाँ गर्मी है, दिन में वातावरण गर्म रहता है।
0: अच्छा,
1: लेकिन रात में थोड़ा ठंडक महसूस होती है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी, तब तो बढ़िया मौसम है। तो इस बढ़िया मौसम में कौन सा गाना हम आपको सुनाए शारदा प्रसाद जी?
1: जी ऐसे खूबसूरत और सुहाने मौसम में आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है सावन को आने दो।
0: सावन को आने दो, क्या बात है।
1: यशोदास साहब ने गीत को गाया है।

0: ये गीत सुना
1: क्या दीजिए। बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गीत है यशोदास की आवाज में।
0: जी जी, जी। बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत है और जितनी बार सुनिए दिल नहीं भरता
1: जी,
0: है,
1: ऐसा दिल नहीं
0: भरता। सुनते जाइए सुनते जाइए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, यशोदास जी की आवाज ही कुछ ऐसी है।
0: जी जी, यशोदास साहब बहुत ही क्लासिकल गायक है
1: जी जी,
0: और इन्होंने इनकी तालीम भी जो हुई है, शिक्षा हुई है, जो क्लासिकल गीत होते हैं भारतीय है ना,
1: शास्त्रीय संगीत
0: है, और कर्नाटक शैली में भी इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गीत गाए हैं, क्योंकि इनके माता पिता भी बहुत अच्छे गायक और संगीतकार हुआ करते थे।
1: जी जी हाँ जी,
0: तो बचपन से इनको शिक्षा दीक्षा जो है और एटमॉस्फेयर वातावरण मिला हुआ है, तो बहुत अच्छे गीत गायक हैं ये।
1: जी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बहुत ही जानकार कलाकार।
0: जी जी
1: जी जी,
0: और आवाज भी देखिए तो इतनी मस्त है,
1: जी आवाज
0: प्यारी सी है
1: जी,
0: क्या कहिए, बस तारीफ के शब्द नहीं मिलते।
1: जी जी, जिस तरह से सारे श्रोताओं के मध्य में आपकी आवाज अलग है, उसी तरह से सारे सिंगर हैं उनके बीच में यशोदास जी की आवाज अलग है। जी, तो शारदा प्रसाद जी किन साथियों को सुनाना चाहेंगे इस गीत को?
0: इस गीत में सर्वप्रथम मैं याद करना चाहता हूँ ब्रज रेडियो श्रोता मित्र लोकेन्द्र वर्मा है, राजू यादव, राम संगीत शर्मा जी हैं, और राकेश कुमार जी हैं, पूरन वर्मा, पुष्कर नाथ जी हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, और इन सभी दोस्तों के साथ साथ में हमारे बहुत अच्छे प्यारे दोस्त हैं मांगीलाल चंदेल, हरविलास तोमर जी हैं, इन सभी दोस्तों के साथ साथ में हमारे प्यारे दोस्त परम मित्र ईटानगर से आदरणीय वाघरा साहब को गीत सादर समर्पित करता हूँ।
1: जी, मुझे भी शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शारदा प्रसाद जी सुनते

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में हम आपका स्वागत करते हैं।
1: नमस्ते सर, मैं जवाहरलाल बर्मन, मैं काछार जिला से बोल रहा हूँ सर।
0: जी जवाहरलाल जी, बहुत दिनों के बाद आपने हमें कॉल किया।
1: हाँ जी, मैं तो कोशिश करता हूँ लेकिन फोन तो नहीं लगता है सर।
0: अच्छा
1: इतना बिजी हो गया ना
0: जी,
1: आकाशवाणी ईटानगर,
0: ओके ओके जी,
1: क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं ने फोन करता है तो
0: जी हाँ जी, बहुत सारे श्रोता कॉल करते हैं
1: फोन नहीं लगने से भी
0: जी।
1: हमारा दिल में आपको हमेशा याद आते हैं सर,
0: क्या बात है, इसी तरह
1: हमेशा
0: से
1: याद आते।
0: जी हमेशा प्यार बनाए रखे हमारे साथ
1: हाँ सर, तो
0: जी।
1: आज तो फोन लग गया तो बहुत खुश हो गया
0: जी मुझे
1: मेरा
0: भी
1: मन।
0: बहुत जी मुझे भी बहुत खुशी हो रही है जवाहरलाल जी, बहुत दिनों के बाद
1: हाँ जी
0: आपने
1: तो
0: कॉल किया जी। और आप
1: आज
0: कैसे हो?
1: मुझे मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर,
0: ठीक
1: ऊपर
0: ठाक,
1: वाले के द्वार से।
0: ओके, हमेशा ऐसा ही ठीक ठाक, अच्छा
1: जी हाँ
0: रहिए
1: जी, प्रोग्राम तो
0: जी।
1: सुनता हूँ मैं।
0: अच्छा, ओके जी, कॉल नहीं लगने से भी आप सुनते हैं,
1: हाँ, प्रोग्राम सुनता
0: ओके
1: हूँ, हमेशा
0: जी।
1: प्रोग्राम सुनता हूँ।
0: अच्छा,
1: हेलो
0: थैंक यू
1: फरमाइश,
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज
1: मेरा
0: के
1: त्रिशूल फिल्म का गाना सुना दीजिए, नितिन मुकेश और लता जी के जुगल शर्मे, गापुची गापुची गम गम।
0: गापुची गापुची, ओके जी, जरूर सुनेंगे।
1: हाँ, अभिनेता सचिन पिलगांवकर और पूनम धीलन जी ने अभिनय किया है। इस गाने को लिखा है महान गीतकार शाहीन रुद्दनवी ने और सुर में सजा है खयाम जी ने।
0: ओके जी, हाँ
1: तो
0: जी,
1: ये गाना मुझे डेडिकेट करना चाहता हूँ, पहले तो आपके सर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: और त्रिपुरा से है आशुतोष देवनाथ, भाई प्रेमजीत चक्रवर्ती, भाई अविनाश जी, आज चुनने वाले सब लिस्टनर आपके लिए सर।
0: ओके, तो जवाहरलाल जी इसी तरह से कॉल करते रहिए, हमें अच्छा
1: हाँ जी
0: लगता
1: हाँ जी
0: है। तो सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: हाँ जी, थैंक यू।
0: ओके, थैंक यू।

0: हरे सनम हम दोनों साथ रहे जन्म जन्म।
1: हेलो फरमाइश।
2: हेलो
1: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश ईटानगर
2: जी। नमस्ते सर जी।
1: नमस्ते।
2: छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ सर
1: जी। सतीश जी कैसे हो आप?
2: बिल्कुल बढ़िया सर जी। और ऐसा लग रहा है कि आपसे मेरी 15 से 20 दिन बाद बात हो रही है सर।
1: अच्छा जी, आपने गैप रखा, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बिल्कुल सर जी। और मेरा मानना भी वही होता है कि यदि थोड़ा गैप भी करें तो सर, और हमारे आकाशवाणी केंद्र में भी कुछ नए श्रोता की आवाज भी गूंजती है तो हमको भी अच्छा लगता है, क्योंकि कि हम नियमित श्रोता हैं सर जी। हमारी आवाज तो आकाशवाणी में हम जब चाहें जब
1: जी,
2: हम शामिल हो सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो इस
2: तरह से कुछ इसमें नया भी हो जाता है सर जी, और कार्यक्रम से तो जुड़ते हैं, पर्दे के पीछे रह के एक दो हफ्ते सुन भी लेते हैं तो और भी अच्छा लगता है सर।
1: जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से प्यार बनाए रखिए। अगर कॉल ना भी करे तो भी प्लीज हमारा कार्यक्रम सुनते रहे।
2: बिल्कुल सर जी, सुनते हैं। अभी पिछली बार भी आपके ही कार्यक्रम सुने सर जी, हमने कॉल भी नहीं मिला है दो सप्ताह से। जी तीसरी सप्ताह का गैप है सर जी, आज चौथी बार लगा हमारा फोन।
1: अच्छा अच्छा अच्छा जी जी जी।
2: क्योंकि सर जी हमने गैप भी किए हैं, हमने कार्यक्रम से तो जुड़े हैं सर जी, मगर हमें ये सोच रहे थे कि नए श्रोताओं को भी चांस मिले, क्योंकि कि हमारी बात तो रेडियो पे आती रहती है। तो सर जी मैं भी यही विनती करना चाहता हूँ हमारे और भी श्रोताओं से कि कुछ गैप भी करें, एक ज्यादा नहीं एक सप्ताह का भी यदि अंतराल करें तो हमारे लिए कोई श्रोता हमारे आकाशवाणी ईटानगर पे यदि आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है सर।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, नए श्रोता आएंगे, नई नई जानकारी मिलेगी हमें और उनसे बात करके हमें भी अच्छा लगेगा।
2: बिल्कुल सर जी, और बहुत ही अच्छा लगा सर जी आपसे हमारी बातें हुई है आज, बहुत ही अच्छा लगा। और आपकी प्रस्तुतिकरण तो सर जी जितनी तारीफ करो उतनी कम पड़ती है।
1: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से प्यार बनाए रखिए हमारे साथ और हमारे कार्यक्रम पर।
2: जी
1: तो आज कहिए कौन सा गाना हम आपको सुनाएं?
2: बिल्कुल सर जी, मैं आज सुनना चाहता हूँ, फिल्म का नाम रहेगा सर जी आशिकी।
1: आशिकी हाँ जी।
2: और गीत के बोल रहेंगे सर जी, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए।
1: जी बहुत ही बढ़िया गीत चुना है आपने, सांसों की जरूरत है जिंदगी के लिए।
2: बिल्कुल सर जी, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए।
1: आशिकी के लिए क्या बात है
2: सर जी। और हमारा प्यार जैसे गाने में सर स्टेप है, ऐसे हमारा प्यार आकाशवाणी के लिए कि हमको आकाशवाणी चाहिए जिंदगी के लिए और आगे
1: बात
2: के लिए भी।
1: क्या बात है क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
2: जी जी सर, सबसे पहले तो आपको
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और हमारे मित्र हैं सर जी, गौतम राय बोले जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी हैं, आत्मराम पाटिल जी हैं, राहुल पाल जी हैं, राजन गंगवार जी हैं, टेकचंद अग्रवाल जी हैं, सारू नूर अंसारी जी हैं, शारदा प्रसाद प्रजापति जी हैं, केसरी सिंह राजपूत जी हैं।
1: तो सतीश जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको और आपके सभी साथियों को आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं। इसी तरह से हमसे

देश आयोजित कर रहा है रन फॉर आइडेंटिटी इस थीम के साथ एक मैराथन 11 अक्टूबर 2026 को। ये मैराथन न्योकुम निया ग्राउंड निर्जुली से आरंभ होकर न्योकुम लापांग ईटानगर तक होंगे, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के विजेताओं को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए और रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8837434121 पर।

बिल्कुल, आप सुन रहे हैं सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कारवां, भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आप सुन रहे थे कभी अजनबी थे जमी आसमां ये, तेरा हाथ थामा तो हुए मेहरबान। लता मंगेशकर एवं सुरेश वाडकर की आवाज में फिल्म का नाम भी है कभी अजनबी थे। तो दोस्तों, आप सभी का सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में बहुत बहुत स्वागत है।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
1: बन गया बजट?
2: हाँ, 5,000 बच गया।

0: तो नई साड़ी ले ले
1: ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया, जाओ भाई।
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम यानी कि ACWF अपना फर्स्ट एवर स्टेट लेवल सेमिनार आयोजित करने जा रहा है, जो होगा क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। इस सेमिनार के रिसोर्स पर्सन होंगे श्री जेम्स टेची तारा, प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कम प्रेसिडेंट NBCC, एवांजेलिस्ट गुंडे रिबा सोंगथिंग और एडवोकेट नाबम रामा गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर बेंच। अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम अरुणाचल प्रदेश के सभी विमेन हेड्स ऑफ डिनोमिनेशंस, हेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिनोमिनेशंस और विमेन लीडर्स को इस सेमिनार में सादर आमंत्रित करते हैं। याद रखें, जगह है क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक। धन्यवाद।

0: इंडिजेनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश आयोजित कर रहा है रन फॉर आइडेंटिटी इस थीम के साथ एक मैराथन 11 अक्टूबर 2026 को। ये मैराथन न्योकुम निया ग्राउंड निर्जुली से आरंभ होकर न्योकुम लापांग ईटानगर तक होंगे, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग के विजेताओं को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए और रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8837434121 पर।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर,
4: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: डायनामिक परफॉर्मेंस, स्लीक डिजाइन, एक्सप्लोर मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 कम्स विद अ माइलेज ऑफ 24.90 किलोमीटर पर लीटर, स्मार्ट प्ले स्टूडियो, 15 प्लस सेफ्टी फीचर्स इंक्लूडिंग 6 एयरबैग्स, नेक्स्ट जेन के सीरीज 1.0 लीटर ड्यूल जेट, ड्यूल 50 इंजन एंड स्पेशियस इंटीरियर्स।
8: गेट अट्रैक्टिव ऑफर्स अप टू ₹67,500। ऑफर टिल स्टॉक लास्ट, विजिट योर नियरेस्ट मारुति डीलरशिप टुडे। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

श्रोता दोस्तों, ब्रेक से पहले आप सुन रहे थे खतूबा आशा भोसले के आवाज में फिल्म अलीबाबा और 40 चोर से। सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों के कारवां भूले विश्व गीत में चलिए बढ़ चलते हैं अगले नगमे किशोर कुमार की आवाज में।

कभी अलविदा ना कहना। फिल्म चलते चलते का टाइटल सॉन्ग आप सुन रहे हैं किशोर कुमार के आवाज में, और इसी गीत के साथ ही आज हम कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के समापन की ओर आ पहुंचे हैं, और साथ ही हम तीसरी प्रसारण सभा के समापन पर भी आ पहुंचे हैं। श्रोता दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस सभा के सभी कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे थे तमाम FM ट्रांसमीटर के सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गैरे थे, तकनीकी अभियंता होली राम ब्रह्मा और मैं आपकी रेडियो दोस्त सुलोकना। चलते चलते आपको बता दें कि अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे FM गोल से रिलेट कार्यक्रम, और हम आप सभी से सुबह के 5:48 से कल सुबह से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए

0: लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नागांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा एनडीए के सुशासन पर भरोसा है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। श्री मोदी ने पुदुचेरी के तट्टन चावड़ी में जीत के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी एआईएनआरसी को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जीत लोगों की भलाई और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करने में पार्टी को और मजबूती देगी। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इंकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नुपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। भारत ने कहा कि स्थायी श्रम प्रमाणन पर्म कार्यक्रम के संबंध में अमेरिका के फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रतिभाओं का आवागमन भारत और अमेरिका दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय पेशेवरों को अवसर मिलते ही हैं, साथ ही अमेरिकी कंपनियों को भी अत्याधुनिक प्रतिभा, नवाचार, अनुसंधान, उत्पादकता और रोजगार सृजन के माध्यम से समान रूप से लाभ मिलता है। श्री जायसवाल ने स्पष्ट किया कि पर्म कार्यक्रम H-1B वीजा से अलग है। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्ले को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्ले संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक वेस्टइंडीज ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 129 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 249 रन बनाए। संजू सैमसन ने 82 रन की पारी खेली। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. The BJP has registered massive victories in both assembly constituencies of West Bengal, Nandigram in East Mednipur district and Rajinagar in Murshidabad district, where by-elections were held. In Nandigram, BJP candidate Hasirani Rath defeated the nearest rival, Congress candidate मिलन प्रधान

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। मुख्य समाचार। भारत ने कहा स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कल हुए हमलों में 3 सऊदी नागरिक मारे गए।

0: और कई अन्य घायल हो गए। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर को 174 लोगों की जान बचाने के लिए इसराइल का सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान मिलेगा। और रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि स्थायी श्रम प्रमाणन परम कार्यक्रम के संबंध में अमेरिका के फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि प्रतिभाओं का आवागमन भारत और अमेरिका दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय पेशेवरों को अवसर मिलते ही हैं, साथ ही अमेरिकी कंपनियों को भी अत्याधुनिक प्रतिभा, नवाचार, अनुसंधान, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार सृजन के माध्यम से समान रूप से लाभ मिलता है। श्री जायसवाल ने स्पष्ट किया कि परम कार्यक्रम H-1B वीजा से अलग है।
1: यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि परम H-1B वीजा कार्यक्रम से अलग है। परम आवेदनों का निलंबन अपने आप में मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों डिपेंडेंट्स यानी की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है। हालांकि प्रभावित कंपनियां के योग्य कर्मचारियों की स्थायी निवास अथवा ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है।
0: श्री जायसवाल ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की गैर अमेरिकी कामगारों पर टिप्पणियों को अनुचित बताया।
1: हम मानते हैं कि इस तरह के वर्णन अवांछित हैं और उस तथ्य को नजरअंदाज करते हैं कि अमेरिका में भारतीय पेशेवर उच्च शिक्षित हैं। वास्तव में अमेरिका का अपना इतिहास पीढ़ियों से आए उन प्रवासियों द्वारा गढ़ा गया है जिनके श्रम, उद्यम और नवाचार ने उसकी वृद्धि और समृद्धि में योगदान दिया है। ऐसे शब्दावली का प्रयोग करना जिससे दुखद ऐतिहासिक और उपनिवेशिक विरासत के संदर्भ जुड़े हों अत्यंत आपत्तिजनक है।
0: भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर के बाद इसकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और इथियोपिया की रणनीतिक साझेदारी, साझा मूल्यों, समान आकांक्षाओं और विकासशील देशों के बीच ऐतिहासिक एकजुटता पर आधारित है। डॉक्टर जयशंकर ने आज अदिस अबाबा में इथियोपिया के विदेश मंत्री गेदियोन तिमोथेवोस हेसबोन के साथ बैठक की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान व्यापार, निवेश, विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने आज अदिस अबाबा स्थित नेशनल पैलेस और संग्रहालय का दौरा किया। सोशल मीडिया पर दौरे की झलकियां साझा करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संग्रहालय इथियोपिया की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व को बखूबी दर्शाता है। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने बताया है कि कल रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमलों में सऊदी अरब के 3 नागरिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। इन हमलों में एयरपोर्ट की सुविधाओं और सऊदी एयरलाइंस के एक विमान को निशाना बनाया गया। सऊदी एयरलाइंस ने बताया कि विमान में कोई यात्री सवार नहीं था, लेकिन चालक दल के सदस्य कैप्टन हमूद अली अल कलियथानी की मौत हो गई। इस बीच हुतियों द्वारा संचालित अल मसीराह टीवी ने सना और सदा में टेली कम्युनिकेशन सुविधाओं सहित कई जगहों पर हवाई हमलों की खबर दी। वहीं संयुक्त अरब अमीरात UAE में अमरीकी दूतावास ने नागरिकों से क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति को देखते हुए ज्यादा सतर्क रहने को कहा है और उड़ानों के रद्द होने, एयर स्पेस बंद होने और यात्रा में रुकावट की संभावना के बारे में चेतावनी दी है। दूतावास ने कहा कि इन हमलों के तेजी से बढ़ने की आशंका है। सऊदी अरब ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका सहित अन्य सहयोगियों से मदद मांगी है। अधिकारियों ने बताया कि इसमें खुफिया जानकारी साझा करना, लक्ष्यों की पहचान करना और परिचालन योजना बनाना शामिल है। हुतियों के खिलाफ कार्रवाई का उद्देश्य यमन के पश्चिमी लाल सागर तट और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बाब अल मंदब जल डमरू मध्य के पास हुतियों के कब्जे वाले

0: पर फिर से नियंत्रण स्थापित करना है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
1: पिल्ले संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंग भेद के दौर में अपना बचपन बिताया। इसके बाद उन्होंने रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। 1941 में डरबन में भारतीय तमिल मूल के माता पिता के घर जन्मी पिल्ले बाद में दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाली पहली अश्वेत महिला बनी। उन्होंने रवांडा के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण में न्यायाधीश और अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। इसके अलावा वे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की न्यायाधीश और 2008 से 2014 तक संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार उच्चायुक्त भी रही। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर को इसराइल के सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने घोषणा की है कि कैप्टन मच्छर के स्वस्थ होने के बाद उन्हें नागरिक वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात UAE के अधिकारियों के अनुसार विमान के सह पायलट ने कैप्टन मच्छर पर हमला किया और 170 से अधिक यात्रियों को ले जा रहे विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की कोशिश की। घायल होने के बावजूद भारतीय पायलट ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने में सफलता हासिल की, जिससे यात्रियों को हमलावर पर काबू पाने में मदद मिली। इस घटना के दौरान सह पायलट को काबू करने में मदद करने वाले इसराइल के 6 नागरिकों को भी उनके साहसिक कार्य के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तंजानिया में आज सुबह एक यात्री बस और लकड़ी से भरे ट्रक की टक्कर के बाद बस में आग लग गई। इस हादसे में लगभग 28 लोगों की मौत हो गई। मोरो गोरो क्षेत्र के अग्निशमन और बचाव दल के कार्यवाहक कमांडर के अनुसार यह हादसा मोरो गोरो दारस सलाम राजमार्ग पर हुआ, जब बस दारस सलाम से मवेया जा रही थी। ब्रिटेन का प्रतिनिधिमंडल 12 से 16 अक्टूबर तक भारत आएगा। इसमें उत्तरी इंग्लैंड के विभिन्न हिस्सों से करीब 200 प्रतिनिधि शामिल होंगे। ग्रेट नॉर्थ ट्रेड मिशन का उद्देश्य भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA के अंतर्गत व्यापार और निवेश के अवसर तलाशना है। रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक वेस्टइंडीज ने 14वीं ओवर में 3 विकेट पर 172 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 249 रन बनाए। संजू सैमसन ने 82 रन की पारी खेली। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कल हुए हमलों में 3 सऊदी नागरिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर को 174 लोगों की जान बचाने के लिए इसराइल का सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान मिलेगा। और रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I'm Saira Mujtaba with World News.